0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:05 हो चुके हैं और सुबह का ये वक्त हर धुन दिल को छू जाती है, हर सुर में एक अपना पन घुला होता है। ये वो एहसास होता है जो सिर्फ सुबह सुबह मिलता है, जब दिन नया होता है और दिल पुराने गीतों के लिए बेकरार होता है। आरएम टू रेडियो मस्ती पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम आ गए आपके पास राइज एंड शाइन आपका ही शो लेके। बस आपको इतना ही कहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, इंजॉय कीजिए अपना शो और मॉर्निंग।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
3: Unke zulfein

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:17 हो चुके हैं और दोस्तों मुझे एहसास है बहुत ज़्यादा कि इस टाइम है थोड़ी सी ठंड और दिल नहीं करता उठने का. ऐसा लगता है बस सोते रहें. अरे कोई ना उठाए पर क्या करें, गाड़ी हो या पैदल जाने वालों, काम पर तो जाना है, हॉस्पिटल, दुकान, ऑफिस, सब कुछ चलाना है. यही तो टाइम होता है जिस टाइम आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड से बाहर आते हैं और एहसास होता है नहीं भाई बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदगी में. उसी तरीके से हमारे लिए आपके मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं. तो आपको मैसेज करना है 5499124 पर और हमारे साथ जुड़ जाना है. सबसे पहले देखो भाई, पहले आपको उठाने से पहले मुझे खुद को भी उठाना पड़ता है. तो चलिए भाई उठाने, तो अब हमने उठा दिया, अब आपको बस उठ के डांस करना है, थोड़ी सी मस्ती करनी है, थोड़ी सी बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे लानी है.

0: करनी है, इंजॉय करना है इस गाने को, और साथ में रहिए हमारे साथ मैसेजेस के साथ भी और हमारे रेडियो स्टेशन के साथ भी।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:30 हो चुके हैं और आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में हमारा घर है भैया स्वर्ग से सुंदर, और हम भी यही चाहते हैं सबका घर स्वर्ग से सुंदर हो और इन्जॉय करते रहें। मॉर्निंग में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं करते, बट छोटी छोटी बातें हमारे गानों के थ्रू अब आपको ये इतना ही कहते हैं कि प्यार से उठे मॉर्निंग में, अपने इन्जॉय कीजिए और थोड़े से जो भी आपको सुबह सुबह के काम करने हैं, झाड़ू पोछा सफाई बर्तन, क्योंकि यही चीज़ें तो होती हैं सुबह सुबह। और क्या हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दें और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि काम पे भी जाना है, घर को भी देखना है और ज़िंदगी को भी देखनी है। तो बस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपके मैसेजेस बहुत हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं ललित जी USA से और साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं नाउ आई एम मिसिंग माई वाइफ एंड लवली सॉन्ग्स पर प्लीज़, कहते हैं कि सारे जो जितने भी मॉरिशस में लोग हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। आप कि हमें तो पता है कि आपके यहाँ पे नाइट हो रही है, तो हम आपको गुड नाइट नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे हमारे साथ ही रहिए। धनेश्वर जी अपनी प्यारी पत्नी सुनीता जी के साथ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सरोज राजन, मोनिका, विशाल, उमेश, विरेना, वेसन, बनिसा एंड सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारे को प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं प्यार से सबको गुड मॉर्निंग। सुरेश शर्मा, साजदा जी साथ जुड़े हैं, अपने पूरे परिवार के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। नसरीन आपके लिए प्यारा सा मैसेज, हमारे दो दोस्त अब्दुल एंड सायरा बानो के लिए, वो कह रहे हैं जो भी फिलिंग स्टेशन में काम कर रहे हैं या जो अभी तक किसी मॉल में पहुँच चुके हैं जहाँ जो भी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए इतना ही कहेंगे बकवास। क्या बात है। टोनी जी सभी को कह रहे हैं प्यार से सक्सेसफुल लाइफ को देखना है तो बस प्यार से उठो और अपने काम पे जाओ। क्या बात है सभी का, थैंक यू दिल से। एंजॉय कीजिए अपने गाने को।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: गुड मॉर्निंग, 5:45 हो चुके हैं दोस्तों. मैं हूं आपके साथ पूनम, और आज सुबह खुद से बस इतना कहिए, दिन मेरा है, इसे सबसे अच्छा बनाना मेरे हाथ में है. चलिए अब जानते हैं आपका राशि आज के लिए क्या कहती है. सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए. काम में कोई नया तरीका कमाल कर सकता है, दिल कहे कर लेते हैं तो क्यों डरना. लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 4.
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज थोड़ा काम और थोड़ा आराम दोनों रखिए. कोई छोटी सी तारीफ आपका मूड बना सकती है, अपनी पसंद के लिए भी वक्त निकालिए. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बातों में अलग ही स्पार्क रहेगा. किसी से हुई बातचीत नया आइडिया दे सकती है. खुलकर हंसिए, सुबह को और प्यारी लगेगी. और सुबह आप जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा पीसफुल कीजिएगा, बहुत भागा दौड़ी में कुछ काम मत कीजिएगा. लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3.
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज अपनों की एक प्यारी बात दिल छू सकती है. काम के बीच घर वालों का हाल भी पूछ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपकी केयर किसी के लिए बहुत मायने रखती है. लकी कलर बनेगा व्हाइट, लकी नंबर है 8.
2: लियो सिंह राशि,
1: आज थोड़ा स्पॉटलाइट आपका भी बनता है. अपने टैलेंट को पीछे मत रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए मैं तैयार हूँ और सभी काम कर लूंगा. लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1.
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज जो आपने अपनी लिस्ट बना रखी है बहुत सारे कामों को, उसको थोड़ी सी छोटी कर लीजिए. हर काम आज ही खत्म करना जरूरी नहीं है, आराम से चलेंगे तो दिन मजेदार रहेगा. लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 5.
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है. एक प्यारा मैसेज रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा. दिल की अच्छी बात आपको सुनने को मिल सकती है, और शायद आप भी किसी को अपने दिल की बात कह दें तो बिल्कुल झिझकिए मत. लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 7.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अपनी ताकत को कम मत आंकिए. मुश्किल काम भी आपके तरीके से आसान हो सकते हैं, बस फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए. लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 9.
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो जाइए. कोई अचानक बड़ा सा प्लान आपके सामने आ जाएगा और आपको करना पड़ जाएगा. दिन में कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी देता है. अगर आपको जिम पसंद है या कोई योगा पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, जिससे आपको थोड़ा सा मूड लाइट हो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहिए. लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 2.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज काम की तारीफ मिलने का मौका बन सकता है, लेकिन सारी एनर्जी ऑफिस में मत छोड़कर आइएगा. घर पर भी थोड़ी सी एनर्जी लेकर आइएगा. शाम अपने और अपनों के साथ रखिएगा. लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज आपका अलग आइडिया काम बना सकता है. जो लोग सोच रहे थे कि आपको ये समझ नहीं आ रही है चीज़, आज उनको भी एहसास होगा कि आपको सब कुछ समझ आता है, और आपने जो अपने अंदाजे लगाए थे काम को लेके बिल्कुल सही होंगे. लकी कलर बनेगा ब्लू, लकी नंबर है
2: 4.
1: आज खुद को भी थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, पसंदीदा गाने सुनिए, चाय पीजिए, आराम से कोई अच्छी सी कंपनी के साथ बैठिए. हो सकता है आप किसी पुराने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं. कोई अचानक से आपको आपका दोस्त

0: मिल सकता है और आपका मूड खुश हो सकता है, जिससे आपका अगला हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 5। तो दोस्तों आज काम भी कीजिए और खुद के लिए भी वक्त निकालिए और परिवार के लिए भी एनर्जी को फुल ऑन जिए। ये था आपका सुपर डुपर राशिफल।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: and Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से. करुणा जी आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है. इनमें एसबीएम सैलरी और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल हैं. कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल दो पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी. ये जांच मार्च 2024 में वालीदिपैत में एक निवासी के घर पर की गई. तलाशी से संबंधित दोनों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने के आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही. कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया. पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने कल पोटवी में अपनी पहली बैठक लगाई जिसमें कार्यनीति पर चर्चा की गई. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हैं जो फिलहाल 4.75% हैं. मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही. रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा. एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व पर खुलासा दिया. और विदेश में कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए उन लोगों को बचाने में जुटे हैं जो सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारतों और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. 180 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. और अब मौसम की रिपोर्ट. पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल घिरे रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर और जहां तहां बारिश हो सकती है. दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा लेकिन कुछ घरे के लिए पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू के कई हिस्से में बादल घने हो जाएंगे और जहां तहां कुछ बारिश हो सकती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं. दूर समंदर में आज सुबह न जाने की सलाह दी जाती है लेकिन दिन के दौरान मौसम की स्थिति में सुधार आएगा. अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि आज रात 7:34 से सूर्य ग्रहण लगेगा जो कि रात 11:59 पर खत्म होगा लेकिन ये मॉरिशस में दिखाई नहीं देगा. आज के लिए सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर. पूरा बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दे. नमस्कार.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो चुके हैं दोस्तों, और मुझे पता है ये जो गाने हैं ना, इनकी बात तो एक माननी पड़ेगी। दिमाग अलग ही तरीके से चलता है इन गानों का भी है, चाहे हमारा दिमाग हो, ऑफिस की टेंशनें हो, मीटिंग हो, प्रोजेक्ट्स हो, सब चीज़ें एकदम से जब सामने आती हैं तो ये गाने हमें रिलैक्स कर देते हैं और कहते हैं अरे इतना सोचने का नहीं है, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, इसको हंसते मुस्कुराते हुए जीना है और आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और ये गाने हमारे जब ओल्ड चलते हैं ना तो वो कहते हैं गोल्ड बन जाता है, गोल्ड की होती है वैल्यू। तो अगर आपकी मॉर्निंग में भी अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स आज हैं तो उसको बनाना है वैल्यूएबल, बट हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपके मैसेजेस के साथ। अगर आपको भी किसी को मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। गाने आपके हैं हमेशा सुबह जैसे आप बनाते हैं तो उसको ऐसे ही खूबसूरत रूप से देते रहिए, इंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गानों के साथ में। ये प्यारा सा गाना आप सुन पाएंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:25 हो चुके हैं और 6:30 आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार। फटाफट से दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि आपका प्यार ऐसे ही जैसे बहता है वैसे वहां तक पहुंचना भी तो चाहिए। किशन रघुनाथ जी साथ दे रहे हैं सुरीनाम से और अपनी वाइफ और डॉटर्स के लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत प्यार करता हूं, हमेशा खुश रहो और सभी पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ में और थॉट्स के साथ में। जयशन जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं मॉर्निंग बनाने के लिए थैंक यू, बट मैं तो आपको कहूंगी आप सभी का थैंक यू जो भी हमें मैसेज करते हैं और इतना प्यार देते हैं। दोतिका जी भी अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं। विमल किशन सुनीता आरती विश कर रहे हैं सभी को और बेस्ट विशेस के साथ बोल रहे हैं आगे बढ़ते चलो। साथ में विहान जुड़े हुए हैं, ये हमारे छोटे लिस्नर हैं, कह रहे हैं आज पहली बार मॉर्निंग में उठा हूं जल्दी कुछ काम के लिए पर आज एहसास हो रहा है मॉर्निंग कितनी सुंदर है। क्या बात है विहान, हमेशा साथ रहना, इंजॉय करना। साथ में प्रमिला रघुपत जी जुड़ी हुई हैं वाकवा से और आज उनका बर्थडे है, उनकी बेटी अंजू, उनके पापा देवराज और बच्चे दामाद ग्रैंड चिल्ड्रन सभी विश कर रहे हैं। पूरा लोहार फैमिली, सुखराम एंड गणपत फैमिली उन्हें विश कर रहा है और बोल रहे हैं विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, इंजॉय कीजिएगा अब अपना बर्थडे। इंदिरा हुसैनी जी साथ जुड़ी हुई हैं, अपने बेटे राजीव हुसैनी जी को उनके बर्थडे पर बहुत सारी विशेज दे रही हैं। उनकी पत्नी संजनी बहुत विश कर रही हैं। प्रदीप, प्रिया, प्रिशा, ईशा, कृष देवा सभी परिवार और फ्रेंड्स के तरफ से उनको विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलाएंगे अपना जिंगल जो हम हमेशा चलाते हैं आप सबके लिए जिनका भी बर्थडे। एंजॉय कीजिएगा अपना बर्थडे हमारे साथ।

0: बजे हैं, पेश हैं समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी, इनमें एसबीएम, सैन लुई और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल। कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल दो पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी, इन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोपों पर की जा रही पूछताछ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया, पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली आयोग ने पोर्टली में लगाई अपनी पहली बैठक जिसमें मुख्य रूप से कार्यनीति पर चर्चा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज पर टिकी, जो फिलहाल 4.75% है। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर दिया खुलासा। और विदेश में कोलंबिया में भूकंप के बाद नए झटके महसूस किए गए, आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या अभी 181 लेकिन असल में इससे ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। कल 3 मामले सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर किए गए, जबकि 3 अन्य महत्वपूर्ण मामलों को आगे की जांच के लिए एफसीसी को वापस भेज दिया गया। इनमें एसबीएम, सैन लुई और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले शामिल हैं। अधिकारी वाले विधिमा से बोले।
1: डीपीपी का मानना है कि 3 मामलों में जुटाए गए सबूत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें सजा मिलने की उचित संभावना है। पहला मामला लीलाराम डील से जुड़ा है, जिन पर मुख्य रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दूसरे मामले में राजाना दालिया, हरिदत्त रामनारायण और मनीष गोबीन भ्रष्टाचार के अपराधों से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। केनपुनुसामी पर भी आरोप के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। 3 मामलों को सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में दायर कर दिया गया है। दूसरी ओर डीपीपी 3 अन्य संवेदनशील मामलों एसबीएम, सैन लुई और रिवॉर्ड मनी में और अधिक साक्ष्यों की मांग कर रहा है। स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जांच के लिए इन्हें एफसीसी को वापस भेज दिया गया है। डीपीपी कार्यालय ने आयोग से अनुरोध किया है कि अंतिम निर्णय के लिए फाइलों को दोबारा सौंपने से पहले इन जांचों में यथासंभव तेजी लाई जाए।
0: कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कोह मॉडल के निवासी 47 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ऋषि गनावरी और फ्लोरियाल के रहने वाले 47 वर्षीय पुलिस सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंदराम शामिल हैं। कल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ताओं ने उनसे अंडर वार्निंग पूछताछ की। ये जांच मार्च 2024 में वालिदेपैत के एक निवासी के घर पर की गई तलाशी से संबंधित हैं। ये तलाशी स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स की एक टीम ने की थी। दोनों पुलिसकर्मी इस टीम का हिस्सा थे। उनसे विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने

0: के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने के आरोपों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने कल मंगलवार को पोर्टवी में अपनी पहली बैठक लगाई। बैठक में कार्यनीति और उन विषयों पर चर्चा हुई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल का गठन और नियमित रूप से नगरपालिका चुनाव कराना शामिल हैं। आयोग इस संभावना पर भी विचार करेगा कि बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें तैयार करने वाली एक समिति बनाई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अपील कोर्ट और एक संवैधानिक डिवीजन गठित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। आयोग की अगली बैठक 18 अगस्त को लगाई जाएगी। विनोद बुलेल से शैली निर्बन ने बातचीत की, विवरण विधि मासीबोरन का।
1: On a discuté un peu de la stratégie adoptée pour les travaux de la commission. Il était un petit peu discuté en priorité.
2: बैठक के दौरान विषयों पर चर्चा की गई जो पक्षपात के खिलाफ कदमों को मजबूत करता है। इसके अलावा एक आयोग की स्थापना शामिल है जिसमें पैरास्टेटल बॉडी के लिए एक अध्यक्ष का नामांकन होगा। नगर पालिका चुनावों को बिना स्थगित किए हुए चुनाव करने का प्रावधान हो वैसे ही आम चुनावों के लिए होगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। एक विज्ञप्ति भेजी जाएगी। आम जनता को समझना चाहिए कि संविधान उनका है और कि ये संविधान केवल उनका नहीं है बल्कि भविष्य की पीढ़ी का भी है।
0: आयोग ने ये भी कहा कि वो मॉरिशस के लोगों की राय जानना चाहता है। जल्द ही एक कम्युनिके के माध्यम से जनता को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नज़रें नीतिगत ब्याज पर टिकी हैं जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखुनी के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है। लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है। महंगाई अभी भी ऊंची बनी हुई है जबकि आर्थिक विकास की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। मैकामॉर्शिस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया। मनीषा दुखुनी का मानना है कि मौजूदा ब्याज दर पहले से ही आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल रही है। शैली नियाबन ने उनसे बात की, विवरण विधि मासिबोरन का।
3: Je pense que vu le taux d'inflation qui est toujours haut, il est fort probable que la décision va être plus une décision de
2: maintenir. मुझे लगता है कि जितना इन्फ्लेशन ऊंचा होगा तो उतना मौजूदा दर को बरकरार रखने का फैसला होगा। हमें ये भी मालूम है कि आर्थिक वृद्धि कम है जो 2.8% से 3% है। शायद कई ऐसे एजेंटों का भी मानना है कि संभवतः भविष्य में लोअर इनकम होगा।
0: एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारों पर इसका प्रभाव। मनीषा दुखुनी के अनुसार लंबी अवधि के कर्ज, खासकर आवास से जुड़े ऋण, परिवारों को ब्याज दरों के स्तर के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे में मासिक किस्तों में बढ़ोतरी का मतलब है कि अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध आय कम हो जाती है। परिवारों पर ये दबाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब महंगाई अभी भी ऊंची है और पिछले कुछ महीनों में कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ी है। एक बार फिर से उनको सुनते हैं, विवरण मनीषा बल्कि विधिमा से बोलन का।
3: pense qu'il s'agit des ménages. On sait aussi à Maurice que le plus grand composant...
2: जहाँ तक मॉरिशस में घरों का सवाल है, हमें पता है कि लंबी अवधि तक लोन होता है घरों के निर्माण के लिए, जो हर महीने एक परिवार चुकाता है, और इसका असर उसके वेतन पर भी पड़ता है।
3: Donc, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire en termes de différentes consommations, etc.
0: और जैसा कि कल से ही पता है, आत्मा शांतु ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। ये भूख हड़ताल 24 घंटे से कुछ अधिक समय तक चली। एफटीयू ट्रेड यूनियन के वार्ताकार आत्मा शांतु के लिए स्थिति उस समय बदल गई जब उन्होंने श्रम मंत्री रेजाओ टीम और उन तीन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू करने से पहले शिकायतें की थीं। दोनों पक्षों ने उनकी मांगों के अनुरूप कदम उठाने का आश्वासन दिया। आत्मा शांतो के साथ अन्य ट्रेड यूनियन नेता भी मौजूद थे और उन सभी ने नियोक्ता की कड़ी आलोचना की।
2: एफटीयू के अध्यक्ष ने भले ही अपनी हड़ताल का अध्याय बंद कर दिया हो, लेकिन आत्मा शांतो के लिए संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं होता है।
4: La lutte n'est pas finie avec la grève de la faim. Bien sûr, nous pouvons continuer à lutter pour qu'ils travaillent toujours sur l'intérêt primé.
2: क्योंकि मालिक यूनियनों के साथ बातचीत न करने के लिए टाल मटोल की रणनीतियों का सहारा लेते हैं।
5: Le problème c'est que la loi beaucoup clause de correct mais qui patron s'est habillé dans seul avantage, il fait dealing tactics.
2: CTSP की जेन रागू ने नियोक्ताओं के अहंकार पर खेद जताया है।
5: Il y a beaucoup de patrons étrangers qui peuvent venir, exercent pas contre la loi Maurice, et c'est nous une gamme de cas là, là. Bien avec une certaine arrogance, pour dire nous, ben dit comme ça, ben nous tu peux suivre la loi, nous peux. Mais de nous un simple exemple, camarade Chanteau fait une bizarre amène patron devant le IAT pour lui gagner access to worksite pour lui pas faire réunion. Et quand il gagne access to worksite, donne lui un parking qui pas couvert en plein air, il dit mon donne 16. Comment dire, il fait ce qu'il dit bizarre, mais c'est pas ça.
2: GWF के अश्विन गुडे के अनुसार ट्रेड यूनियनें श्रमिकों के लिए संघर्ष करती रहेंगी।
6: Ou pour gagner sa front comme un syndicat là où la route qui pour bosser mais parce que syndicat c'est dernier rempart face à dérive pouvoir et il y a un problème avec même patron. Je pensais je qu'à faire si que je tombe dans sa pays là.
2: ये ट्रेड यूनियन बिजनेस मोशन से अपने सदस्यों को निर्देश देने की मांग करती हैं ताकि कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके।
0: आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता, सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग सोच है। लेकिन आंकड़ों और भाषणों से परे मॉरिशस के युवा वास्तव में क्या चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उन्हें किन बातों की चिंता है और सबसे महत्वपूर्ण क्या वे अपना भविष्य यही मॉरिशस में बनते हुए देखते हैं, उनकी आवाज़, उनके सपनों और उनकी अपेक्षाओं को जानने के लिए जिन्हें येलाप्पा ने उनकी प्रतिक्रियाएँ ली उनको सुनते हैं।
7: Moi, mon rêve, c'est plutôt Vinen Mechatronics Engineer. On veut travailler avec Man Machine, côté robotique.
8: Moi, personnellement, je pense à Koula pour Vin Professor Travel. Et aussi, je pense à Maurice. Nous, on a le prochain, toi, qui parles jeune, mais je pense qu'il nous disait continuer à persévérer et tout. Et que faire ses efforts pour qu'il commence à nous rester avancé.
9: Alors, Gangel, moi, j'ai envie d'avoir un peu plus la monnaie pour me faire une certaine liberté dans mon avenir. Pour qu'après, je puisse construire un petit lac à essayer, un petit jardin, un petit ferme, un petit pour m'arrêter pour moi. Et ce qui me va inspirer pour faire, c'est soit bateau croisière, soit steward de l'avenir.
10: Mon rêve, c'est de devenir NRETS. C'est pour ça que je prends ça coup là. Pour travailler dur, pour voyager le monde en entier.
11: Plutôt, mon envie, c'est moi par en fier parce qu'ils ont fait beaucoup de services à elle. Pour l'instant, je vais trouver à Maurice, mais si je gagne l'opportunité à Déo, à Outekit, 100%. Et dans l'avenir, mais tout dépend de qui domaine nous parler. Côté accounting, Maurice est bien développé. Côté agriculture, là, je vais dire un peu improvement là. Mais côté digital phase, outils social media et all, ça peut prendre grand l'ampleur à Maurice.
0: अब ये खबर आज 12 अगस्त को इस साल का एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ये खगोलीय घटना शाम 7:34 पर शुरू होगी और रात 11:59 पर समाप्त होगी। मॉरिशस के समय अनुसार। अतः ये सूर्य ग्रहण मॉरिशस और रोड्रिक्स में

दिखाई नहीं देगा। रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। विस्तार अशिता रघु के साथ।

0: व्रत त्यौहार और सभी पूजा की तारीखें जो है काउंसिल ऑफ प्रीस्ट मॉरिशस जो है द्वारा तैयार की जाती है और फिर भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय से उनकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्हें तैयार की जाता है। रक्षाबंधन जो है फ्राइडे 28 अगस्त जो है फ्राइडे 28 अगस्त को हम सभी लोग मना रहे हैं।
1: महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस अवधि के ठीक बाद सूर्योदय होगा जो समय अमृत यानी शुभ माना जाता है, इसलिए रक्षाबंधन के उत्सव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2: भद्रा एक अशुभ समय में आपको कह सकता हूँ, भद्रा हमारे शास्त्रों में और पंचांगों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भद्रा को हमें छोड़ना चाहिए। 27 को गुरुवार के दिन 27 को सुबह से ही भद्रा है और पूरा दिन भर भद्रा है। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटा पहले उसका सूतक शुरू होता है अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र के हिसाब से। तो इसलिए उस दिन पूर्णिमासी का जो व्रत है, लोग व्रत करेंगे लेकिन पूर्णिमासी के चंद्रमा का पूजन नहीं करेंगे। चंद्रमा पर ग्रहण है मॉरिशस में सुबह 5:23-5:25 के आसपास थोड़ा सा दिखेगा। तो क्योंकि सूर्योदय होने के बाद हमारा दिन जो शुरू होता है वो सूर्योदय होने से शुरू होता है, तब भी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि ग्रहण में और रक्षाबंधन किया जाता है।
1: इसी अवसर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन अगले 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे गंगा तालाब की डिवाइन म्यूजियम के निकट 5 मुखी हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजा का आयोजन भी कर रहा है।
3: विदेशी स्तर पर कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए उन लोगों को बचाने में जुटे हैं जो सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारतों और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 180 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश मौतें काली और पेरेरा शहरों में हुई। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप पश्चिमी कोलंबिया के सैकड़ों मील तक फैले विशाल क्षेत्र में महसूस किया गया। मंगलवार को भी भूकंप के बाद के नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 181 है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों से जुटाए गए आंकड़ों को मिलाकर ये संख्या इससे अधिक बताई जा रही है, संभवतः 240 से भी ज़्यादा। राष्ट्रपति अबेलाडो डेला एस्पेरिया ने आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। मृतकों के अलावा लगभग 2,600 लोग घायल भी हुए हैं और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1,100 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए और 8,000 से अधिक घरों को नुकसान हुआ। सोमवार की रात से मंगलवार तक पेरेरा और काली जैसी शहरों में कई लोगों ने खुले में रात बिताई। कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए जबकि अन्य लोग इमारतों और ढहने की आशंका के कारण बाहर रहे। पूरे देश में दर्जनों बड़ी इमारतें ढह गई हैं। मौसम के रिपोर्ट्स। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। सुबह के समय अनुमान है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाइयों पर जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा लेकिन कुछ घरे के लिए बादल घेराएंगे पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो पर और थोड़ी बहुत पानी बरसने की संभावना है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। सुबह के वक्त दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा

0: आती हैं। इस बीच दिन के दौरान मौसम में बल्कि समंदर की स्थिति में सुधार आएगा। अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि आज बुधवार 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण मॉरिशस में दिखाई नहीं देगा। मॉरिशस समयानुसार ये रात 7:34 पर शुरू होगा और रात 11:59 पर खत्म होगा। आज सूर्योदय हुआ 6:33 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर। खबरों के अंत में सुर्खियां। एक बार फिर से, डीपीपी ने वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजे गए कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी। इनमें एसबीएम सैलवी और रिवॉर्ड मनी से जुड़े मामले भी शामिल। कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में कल 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी। इन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद के दुरुपयोग करने के आरोपों पर की जा रही पूछताछ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाली इस आयोग ने पोर्टली में लगाई गई पहली बैठक में मुख्य रूप से कार्यनीति पर चर्चा की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज पर टिकी, जो फिलहाल 4.75% है। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने की इसकी पुष्टि। विदेश में कोलंबिया में भूकंप के बाद नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या अभी 181, लेकिन असल में इससे ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। 6:52 हो चुके हैं। ये बुलेटिन अब तक पहुंचा जा रहा है कादिर के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: डोमेन डी रोजाली डेपिने में 74 साल की 74-year-old श्रीमती चंद्रावली बंधु, श्रीमती चंद्रावली बंधु पैदाशी नाम पति जमीला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 इनके मकान डोमेन डी रोजाली डेपिने से उठाकर दाह संस्कार के लिए गहन रोजाली की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ बॉस 2 PM। केवल नगर बेलगीव में 53 साल की 53-year-old श्रीमती गीता डामरी, श्रीमती गीता डामरी पैदाइशी नाम दुखवा जो सीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। ये पहले कम्युनिटी सेंटर रोड केवल नगर बेलगीव रहती थी। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके बेटे भवेश डामरी के मकान केवल नगर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोआजिलो ओलिविया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टू डेट 1:30 PM। बेहनौदे डे सेंट पियर स्ट्रीट वाली डिप्रेट में 86 साल की 86-year-old श्री छत्रपाल हुकुम जो मान मौशाफुई से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके मकान बेनौदे डे सेंट पियर स्ट्रीट वाली डिप्रेट से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिपाही बुगिले वाली डिप्रेट की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। नंबर 1 पोंट सेंट लुई पाई में 95 साल की 95-year-old श्रीमती परमावती तिलक पैदाइशी नाम पाराहो की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:00 इनके मकान नंबर 1 पोंट सेंट लुई पाई से उठाकर दाह संस्कार के लिए लेसालिन कासी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1 PM। ले उशे त्यागोज में 62 साल की 62-year-old श्री बसंत कुमार आलिया, श्री बसंत कुमार आलिया जो बाब से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है।

0: घर थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान ले उशे त्यागोज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआ मौशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नोन। बुढ़न लेन अपवेल में 75 साल के 75 ईयर ओल्ड श्री राम सिंह चोईटू की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान बुढ़न लेन अपवेल से उठाकर दाह संस्कार के लिए डाहोचे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सत्यम शर्मा रघु लेन बल्कि बनारस क्लूनी में 69 साल के 69 ईयर ओल्ड श्री देवानंद रघु जो राजन से जाने जाते थे और पहले आकिलचुआक्यूपिप में कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके बेटे सत्यम शर्मा रघु के मकान बनान क्लूनी से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्लूनी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू राजकुमौली ने बेटो काठोबोन में 79 साल की 79 ईयर ओल्ड श्रीमती चंद्रावती मेराई पैराशी नाम जियावक जो लोलो से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है आज दिन के 1:30 बजे इनके मकान राजकुमौली ने बेटो काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड मौदस्थलिया में 85 साल के 83 ईयर ओल्ड बल्कि 83 साल के 83 ईयर ओल्ड श्री महेंद्र सिंह भवानी पैक जो दामोदर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड मौदस्थलिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए मौदस्थलिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। टेंपल रोड ट्वाबुचिक में 52 साल की 52 ईयर ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी करुणदास अचामा पैदाशी नाम मूलिया जो प्रिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी माँ श्रीमती शीला मूलिया के मकान टेंपल रोड ट्वाबुचिक से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्रणमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। पिलखा रोड सेबास्तोपुल में 61 साल के 61 ईयर ओल्ड श्री ऋषि कुमार गोपुल जो ऋषि से जाने जाते थे और फिलिंग टोटल सेबास्तोपुल के मालिक थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी गुरुवार 13 अगस्त को दिन के 10 बजे इनके भाई श्री हरिदत्त गोपुल के मकान पिलखा रोड सेबास्तोपुल से उठाकर दाह संस्कार के लिए सेबास्तोपुल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। और नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन में 66 साल के 66 ईयर ओल्ड श्री विनोद कुमार बुलक जो विनोद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनके मकान नंबर 21 पालमा रोड काठोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9:30 AM। शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, subah ke 7 baj rahe hain.
1: Morning Beat

आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो आज उम्र का नंबर भूल जाइए। यंग वो नहीं जिसकी उम्र कम है, यंग वो है जिसका दिल जवान है। मैं थी आपके साथ पूनम, मैं लेती हूँ इजाजत, अब आपको मिलेगा साथ वेदिता का। एंजॉय कीजिएगा अपनी मॉर्निंग को।

Can you feel it? Yes! Then let's go for it.

0: थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।
1: RM2 रेडियो मस्ती, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
2: Béala, Wednesday Bazaar, Log et Cote Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
3: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes piment curry pour 29,95 €. 500 grammes mandarine pour 44,95 €. 500 grammes blanc, cuissec, aile de poulet frais pour 109,95 €.
2: Pan Prila, Bazaar, Moudirou. Rendez-vous Cote Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
4: On est tous winners.
1: RM2 Radio Musti.

चलिए इसी के साथ टाइम हो गया है आपका हम वेलकम करने के बाद ये बता दें कि जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर आप किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं नंबर है 5491294

0: 2. Radio Musti. A good beat for your morning show. RM2. Radio Musti.
1: चलो जी एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं हम ऑन रेडियो मस्ती. सुबह के 7:25 हुए हैं. टाइम फॉर अ गेम. वैसे आप लोगों ने अब तक अगर बर्थडे के लिए नहीं भेजा है नाम तो ज़रूर भेजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो गेम जहां पर आपको मौका मिलेगा इनाम जीतने का. जी हाँ, प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक की ओर से आपको मिल सकता है 40 मिनट हाइड्रा ग्लो फेशियल एंड आप ये जो डीप क्लेंजिंग जेंटल एक्सफोलिएटिंग हाइड्रेशन सीरम इन्फ्यूजन और जो हाइड्रा ग्लो मास्क है इसको आप एंजॉय कर सकते हैं. ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश स्मूथ ब्यूटीफुली रेडिएंट. और ये शुरू होता है एट प्राणा. तो करना क्या है, मेरे सवालों का जवाब आपको देना है. आपको मुझे ये बताना है, जी हाँ आपको मुझे ये बताना है कि प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ प्रियंका चोपड़ा ने किस बॉलीवुड मूवी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. वैसे वो 2003 में ही आई थी और उनके एक्चुअली दो मूवीज़ आए थे. चलो आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने किस मूवी बॉलीवुड मूवी के साथ, वैसे तो उन्होंने अपना एक्टिंग करियर जो है ना एक तमिल फिल्म के साथ किया था 2002 में, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था किस साल में, यानी कि उनकी पहली मूवी कौन सी थी. ऑन 5491294 क्या पता इस हाइड्रा ग्लो फेशियल का मौका मिल जाए आपको. तो ऑल द बेस्ट.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे पूछा था, सवाल किया था, प्रियंका चोपड़ा ने किस मूवी के साथ अपने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। वैसे उन्होंने डेब्यू किया था टबल फिल्म के साथ इन 2002, फिर उसके बाद मूवी आई द हीरो स्टोरी ऑफ अ स्पाई जो 2003 में आई थी, और उसी साल आई थी मूवी अंदाज जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट कर गई। और प्रियंका चोपड़ा की जो करियर है यहां से शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया है, जैसे कि मुझसे शादी करोगे, एतराज़ में जहाँ पे उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया था, वी हैव क्रिश, वी हैव डॉन, क्रिश 3, डॉन 2, फैशन, जी हाँ, जिसके लिए उन्होंने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और भी बहुत सारी फिल्में आई, जैसे बर्फी में उन्होंने बिल्कुल अपना किरदार चेंज कर दिया, मैरी कॉम जहाँ पे उन्होंने बॉक्सिंग सीखा, एंड सात खूत माफ में तो बस आपको बताएं कहानी, और बाजीराव मस्तानी हो या दिल धड़कने दो, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी फिल्मों के साथ उन्होंने हॉलीवुड में अपने करियर की वहाँ पर शुरुआत की एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो चलिए यहाँ पर सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं ये जान लेते हैं। सही जवाब दिया है और विनर बनी है धनवंती जग्गीवन जो कि अरमाटी से हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपने दो दो जवाब दिए, थैंक यू सो मच। आपको मिल रहा है 40 मिनट हाइड्रा ग्रो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक, जहां पर आप अपना ये जो एक्सफोलिएशन है, हाइड्रेशन है, सीरम कन्फ्यूजन करते हैं और साथ में बहुत ही डीप क्लेंजिंग जाता है इनका। एंड ये जो हाइड्रा ग्लो मास्क है, इससे आपके चेहरे पर जो चमक आती है ना, जो ग्लो आता है और जो रिफ्रेश आप फील करेंगे, ये तो शुरू होता है प्राणा के पास। तो आपको मौका मिल रहा है जाकर ये 40 मिनट का जो हाइड्रा ग्रो फेशियल है उसको एंजॉय करने के लिए। आपका जो वाउचर है उसे पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है थोड़ी देर में आपको कॉल करने वाली है सारी डिटेल्स देने के लिए और लेने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। और बाकी हमारे जितने भी दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया, दिल छोटा मत कीजिए, और भी गेम्स बाकी है अभी।
0: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, it's already 7:41 और हमारे स्टूडियो में आ गए हैं विकास रामधनी. A very good morning to you, Vikash.
4: Good morning, Verita. And a very good morning to all sports fans. आज विश्व भर में इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले आपको हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे.
3: थैंक यू, सेम टू यू.
4: और आपके जरिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं. सो सबसे पहले यूरोप में चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के तीसरे क्वालिफाइंग राउंड के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे सुनिए. कल कैरात की हार हुई हो मैदान पे, कैरात 0 लेव्स की 1. बोडोग्लिम्प ने यूनियन एसजी को 3-2 से परास्त कर अगले राउंड के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया एक्स्ट्रा टाइम के बाद. सबा 4 AGF 0, कोनो जालगिरिस 1 दिनामो जागरेब 2. NEC ने ओलंपियाकोस को 2-1 से परास्त किया. रेड स्टार की हार हुई हो मैदान पे, रेड स्टार 0 HBSheva 2, सेल्जे 2 अरारात आर्मेनिया 0. स्लोवान ने म्यालबी को 2-0 से हराया. तो स्टूम ग्रास की हार हुई हो मैदान पे, फेनेरबाचे ने एवे जाकर उसे 1-0 से परास्त किया. और अग्रीगेट ऑन अग्रीगेट फेनेरबाचे आगे बढ़ पाई 3-0 के साथ. तो ओलंपिक दे लियो ने अपने जेलों में कल स्पोर्टा प्राग को 3-0 से परास्त किया. कुल मिलाकर 4-2 से ओलंपिक दे लियो की जीत हुई. कल न्यूआमा के बाद मेटलन नाइल्स ने दूसरा गोल स्कोर किया और मार्टिन का तीसरा गोल फॉर ओलंपिक दे लियो. UEFA यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड में केवल एक मैच था, आइबेरिया 2 लाने 1. तो कॉन्फ्रेंस लीग में अपोलों की हार हुई, अपोलों 2 ब्रान 4. और CSK 1948 1 पनाथिनाइकोस 2. क्लब फ्रेंडलीज में यूवेंटुस ने कल पालेर्मो को 2-0 से हराया. यिल्डिज एंड मिलिक ऑन टारगेट फॉर यूवेंटुस. आज इन्हीं फ्रेंडलीज में 3 जबरदस्त मुकाबले रखे गए हैं. सबसे पहले रात 10:30 आर्सेनल का मुकाबला कोमो से है. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स यूनाइटेड. मेसन माउट घायल है, वो नहीं खेल पाएगा. बाकी सब खिलाड़ी एकदम तैयार. सो आज रात 10:30 भूलिएगा नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स यूनाइटेड. और रात 11 इज गोइंग टू बी डिपोचिवो वर्सेस रियल मड्रिड. किंतु आज रात 11 सुपर कप का सुपर फाइनल है बिटवीन पेरिस सेंट जर्मेन एंड एस्टन विला, यानी चैंपियंस लीग विनर वर्सेस यूरोपा लीग विनर. रात 11 साल्सबर्ग में ये फाइनल खेला जाएगा. मैच से पहले पेरिस सेंट जर्मेन ने प्री गेम सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है, इसलिए पारी के खिलाड़ियों एवं सभी स्क्वाड को एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा रूम दिया गया. किंतु एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि वे जीत गए, एक्स्ट्रा उनको मिल गया है क्योंकि एस्टन विला भी यहां पर खेलने आया है. 1983 में पिछली बार द विलेंस ने सुपर कप जीता था FC बार्सिलोना को हराकर. सो क्या आज रात पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच द विलेंस फिर से हीरो साबित होंगे? देखते रहिए और सुनते रहिए. ट्रांसफर बाजार में इस बीच

कि आजकल हल्का हल्का सा सुरूर है, किंतु खिलाड़ियों का आना जाना जरूर है। यान जोमांडे रियल मैड्रिड में चला गया है, तो उस्मान जोमांडे स्पोर्टिंग से नॉटिंगम फॉरेस्ट में आ गया है। आइवरी कोस्ट का केस 22 ईयर ओल्ड 22 वर्षीय डिफेंडर ने 34 मिलियन पाउंड और 4 साल का कंट्रैक्ट साइन किया है नॉटिंगम फॉरेस्ट के साथ। मुंडो डिपोचिवो अखबार के मुताबिक रोड्री और एफसी बार्सिलोना बात अभी तक पक्की नहीं हुई है, हालांकि रोड्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। एफसी बार्सिलोना का मानना है कि मैनचेस्टर सिटी

0: 19 वर्षीय 19 ईयर ओल्ड युवा खिलाड़ी राफेल जोरदार रातों रात एक सेंसेशन बन गया है। एकदम जोरदार तरीके से टॉप 10 में जगह बनाने की कगार पे है। कल रात जोरदार ने कैनेडियन ओपन के क्वार्टर फाइनल राउंड में फ्रांस के गायल मोफिस को 7-6 और 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में कदम रखा। अब यदि उसने यहां भी सेमीफाइनल में भी बाडोस नाकाशिमा को भी परास्त किया तो वो टॉप 10 में आ जाएगा इन जस्ट 140 डेज। इससे पहले 1985 में बोरिस बेकेयर वो आखिरी खिलाड़ी था जिसने टॉप 100 से टॉप 10 तक आने में 210 दिन लगाए थे। आज सुबह एलेना रायबाकिना की भी जीत हुई तो कैनेडियन ओपन में आज भी कई अन्य मैच रखे गए हैं। फाइनली क्रिकेट में श्रीलंका वर्सेस इंडिया इसी शनिवार को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इन दो देशों के बीच। सो भूलेगा नहीं आज रात 11 बजे सुपर कप का फाइनल शोडाउन बिटवीन पेरिस सेंट जर्मेन एंड एस्टन विला। इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच। आपको भी हमारी ओर से शुभ दिन।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas, 100 roupies. Des pieds pas, 4 pieds pas, 295 roupies.

0: वेल डियर फ्रेंड्स, बस अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 8 बजे की भोजपुरी समाचारों की ओर। फिर उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आप ही के अपने मॉर्निंग बीट में ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूं विनीता एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस। अगर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करें, किसी का डे स्पेशल हो या आप बनाना चाहते हैं।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

सब लोगन के नमस्ते। डीपीपी वित्तीय अपराध आयोग एफसीसी द्वारा भेजल गए कई गो मामला में कार्रवाई शुरू कर दिले बा। तीन गो मामला सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर करल गए, जिकर में तीन गो अन्य महत्वपूर्ण मामला के आगे की जांच खातिर एफसीसी के वापस भेज देवल गए। डीपीपी अमनलेबा के तीन गो मामला में जुटावल गए सबूत अभियोजन शुरू करे खातिर पर्याप्त बाती। पहला मामला लीलराम रियाल से संबंधित है, जिनकर पर खास रूप से अपन पद के इस्तेमाल करके

लाभ प्राप्त करे के और धन शोधन के आरोप बा। दूसर मामला में राजाना डालिया हरिदत्त रामनारायण और मनीष गोविंद पर भ्रष्टाचार से जुड़ल अपराध के आरोप बा। कैनपुन स्वामी पर भी आरोप बा कि उ अपन पद के दुरुपयोग कर ले रलन। तीन गो मामला के सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष दायर करल गल बा। होजे डीपीपी तीन गो दूसर संवेदनशील मामला एसबीएम सैन लुई और रिवॉर्ड मनी में और जस्टिस सबूत मंगले बाते। ये मामला के स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जांच खातिर एफसीसी के वापस भेज देवल गल। कथित भ्रष्टाचार के जांच के सिलसिला में काल दुगो पुलिसकर्मी के गिरफ्तार करल गल। इकर में कोहोमॉडल के निवासी 47 बरिस के पुलिस कांस्टेबल ऋषि गनावरी और फ्लोरियाल के रही होला 47 बरिस के पुलिस सर्जेंट रामकृष्ण सिंह नंदराम शामिल हवन। काल फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांचकर्ता उलोक संगे अंडर वार्निंग पूछताछ कर लग। ये जांच मार्च 2024 में वाली डिप्रेट के एगो निवासी के घर पर करल गल तलाशी से संबंधित था। ये तलाशी स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट के स्पेशल इंटेलिजेंस सेल के एगो टीम कर ले रहल। दोनों पुलिस कर्मी ये टीम के हिस्सा रहल। वो लोग से खास रूप से व्यक्तिगत लाभ खातिर अपन पद के दुरुपयोग करे के आरोप के संबंध में पूछताछ करल जानबा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपन काम शुरू कर दे लेबा। पूर्व जज विनोद बुलेल के अध्यक्षता होला ये आयोग काल मंगर के पोटली में अपन पहला बैठक लगेलक। इकर में कार्यनीति और उ विषय पर चर्चा करल गल जेकर पर प्राथमिकता के आधार पर काम करल जाए। इकर में मौलिक अधिकार के मजबूत करे के निजता और सूचना के अधिकार पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रपति के चुनाव खातिर एगो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल के गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराए के शामिल है। आयोग इस संभावना पर भी विचार करी कि बड़ा सार्वजनिक संस्था के प्रमुख के नियुक्ति खातिर सिफारिश तैयार करे होला एगो समिति बनावल जाए। इकर अलावा सुप्रीम कोर्ट के भीतर एगो अपील कोर्ट और एगो संवैधानिक विभाग गठित करे के प्रस्ताव पर भी विचार करल जाए। आयोग के आवत बैठक 18 अगस्त के लगावल जाए। आयोग ये भी बोलक कि मॉरिशस के लोगन के राय जाने खोजता जल्द ही एगो कम्युनिके के माध्यम से जनता के अपन सुझाव प्रस्तुत करे खातिर आमंत्रित करल जाए। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बैठक से कुछ घंटा अगते सब लोगन के नज़र नीतिगत ब्याज पर टिकल बा जिनकी फिलहाल 4.75% है। मई में 25 बेसिक पॉइंट के बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखोनी के अनुसार अब दर के मौजूदा स्तर पर बनाए रखे के संभावना सबसे अधिक नज़र आवत बा। बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF अब 2026 में मॉरिशस के वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहे के अनुमान लगाए बाते। खबर में आगे जैसे कि काल से पताबा आत्मा शांतु अपन भूख हड़ताल समाप्त कर दिले हमन। ये भूख हड़ताल 24 घंटा से कुछ जस्ती समय तक चलल। एफटीयू ट्रेड यूनियन के वार्ताकार आत्मा शांतु खातिर स्थिति उस समय बदल गल जब श्रम मंत्री रेजा उतिम और उ तीन गो कंपनी के प्रतिनिधि संगे मुलाकात करलन जिनकर खिलाफ वो अपन भूख हड़ताल शुरू करे से अगते शिकायत दर्ज कर ले रहलन। दोनों पक्ष उनकर मांग के अनुरूप कदम उठाए के आश्वासन दिले हवन। आज 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनावल जात बा। ई दिन युवा के आकांक्षा चुनौती और समाज में उनकर भूमिका के उभारेला। मॉरिशस में पढ़ाई रोजगार उद्यमिता सफलता हासिल करे के इच्छा और कबू कबू विदेश जाके अपन किस्मत आजमाए के चाहत के बीच युवा के पास भविष्य के लेके अपन एगो अलग ही सोच बाती।

0: रक्षाबंधन 28 अगस्त तक के ही मनावल जाए एगो प्रेस सम्मेलन बजी काल मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ई पर्व से जुड़ल भ्रांति पर स्पष्टीकरण देलन। आज 12 अगस्त के ई बरिस खातिर एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण होई ई घटना आज रात के 7:34 पर शुरू हुई और रात 11:59 पर समाप्त हुई। मॉरिशस और रोड्रिक्स में ई दिखाई नहीं देवी यूरोप के कई गो क्षेत्र में ई दिखल जा सकी। और कोलंबिया में राहत कर्मी समय के खिलाफ दौड़ लगा के उलोगन के बचाई में लगल हवन से जिनकी सोमवार के आल शक्तिशाली भूकंप के बाद इमारत और मलबा के नीचे फंस गल हवन जा 180 से जस्ती लोगन के मौत की पुष्टि करल गल बाते। बकिर इस संख्या और जस्ती हो सकी 240 से भी जस्ती लोगन के मारे जाए के आशंका बाते और 200 से जस्ती लोग लापता भी हवन जा 1100 से जस्ती लोग घायल होल हवन सा हो जाके राष्ट्रपति अल्बेलाडो डेला इस्प्रिया आपातकाल की घोषणा कर ली हवन जा। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: मॉर्निंग बीट अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो
2: जेम्स RM2, Radio Musty, in the mix.

0: वही इस गाने की जरूरत तो आज मॉर्निंग मॉर्निंग में हमको भी पड़ गई, पूरी एनर्जी पूरा कार्डियो हो गया हमारा।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। रेडियो बस्ती के साथ आप सुन रही हैं मॉर्निंग बीट विनीता आपके साथ, और अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वेलकम टू योर हैप्पी प्लेस। कैसे हैं सब? बढ़िया, सब ठीक? जी हाँ, मैं वही हूँ और मैं यही हूँ और मैं हर जगह हूँ, यानी कि रेडियो बस्ती के जरिए आप तक पहुँच रहे हैं हम, आप तक पहुँच रहे हैं हमारे गाने। जी हाँ, ट्रैफिक में हैं, ऑफिस में हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, घर पर है या तो फिर निगोशिएट कर

0: रहे हैं अपने कंबल से कि बाहर जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है. वेल डोंट वरी, हम हैं आपके साथ आपके हर सिचुएशन में. तो चलिए गीतों का खूबसूरत सफर लेकर आए हैं आपके लिए और बाकी हम संभाल लेंगे. डोंट वरी, बस आप अपने स्ट्रेस से कह दीजिए कि यहाँ पर तुम्हारा कोई जगह नहीं बना है, आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हम आते हैं गाने लेकर आते हैं सारे स्ट्रेस को दूर भगाने आते हैं. 8:16 टाइम हो गया है, ये भी जान लेते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है. चल मिलते हैं करुणा से.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे. अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में हल्के बादल घिरे रहेंगे जो कभी कभार घने हो जाएंगे, खासकर पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर, और जहां तहां बारिश हो सकती है. दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन कुछ घड़ी के लिए पश्चिम, उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू के कई हिस्से में बादल घने हो जाएंगे और जहां तहां कुछ बारिश हो सकती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा. पूर्व में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं. दूर समंदर में आज सुबह न जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन दिन के दौरान मौसम की स्थिति में सुधार आएगा. अतिरिक्त जानकारी में ये बताया जाता है कि आज रात 7:34 से सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि रात 11:59 पर खत्म होगा, लेकिन ये मॉरिशस में दिखाई नहीं देगा. आज के लिए सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त होगा 5:56 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion bidoun balle. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes piment curry pour 29,95 €. 500 grammes mandarine pour 44,95 €. 500 grammes blanc cuisse avec aile de poulet frais pour 109,95 €.
4: Panne Prila, Bazaar Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous Winners.
7: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Krusty, on fait quoi aujourd'hui?
3: On va à l'aventure!
2: À l'aventure?
3: Oui, Soso, à l'aventure du sucre!
4: Découvre l'histoire du sucre avec Soso et Krusty. En ce moment, dans ton Tiki Fun Meal, un ticket enfant pour l'aventure du sucre t'est offert. Profites-en vite!
0: Finger-licking good, KSC.
1: RM2 Radio Musty.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
5: चलिए जी, एक और गेम लेकर आए हैं आपके लिए. और अब की बारी हम आपको देने जा रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन ही, बल्कि चार टिकट्स से. जी हाँ, ये एंट्री टिकट्स हैं और साथ में एक फूड कूपन भी आपको मिल रहा है फॉर द जेंस लिटिल इंडिया शाही थालिया द उत्सव इंडिया मॉर्शल शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC जो कि शुरू हो रहा है आज. जी हाँ, आज शुरू हो रहा है और ये चलेगा 16 अगस्त तक एट SBI CC Pie एज फ्रॉम 10 AM टिल 9 PM. दिस गेम इज़ पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड. एंड मैं आपको बता दूं कि आपको मौका मिलेगा अभी जाकर शॉपिंग करने का. एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन होने वाली है इन 5 दिनों के दौरान और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, चाहे बड़े हो छोटे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल होम शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर होने वाले हैं एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, साथ में होगा लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, जिन्होंने इनका सिंगिंग देखा होगा, जाना होगा, जानते हैं कि आप उनका जो परफॉर्मेंस है देखने के लिए एकदम वेट कर रहे हैं. और वहीं पर सब थोड़े एक्साइटेड हैं, ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं. और ये एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड के जाने माने जो कोरियोग्राफर हैं धर्मेश सर, वो भी आ रहे हैं. उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है. साथ में भूलिएगा नहीं, कानमा का शो होने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है और फूड फेस्टिवल जिनको खाने पीने का शौक है जैसे कि हमारे. तो चलिए जी, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा. जीतना है आपको 4 एंट्री टिकट्स और एक फुट कूपन. एंड ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फैमिली फन, इट्स ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. तो चलिए, इसी के साथ मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ. आपको मुझे बताना है कि कृति सैनन को किस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था. जी हाँ, कृति सैनन को किस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था. आपके जवाब 5491294, पूरे नाम और पते के साथ.

0: हो जाता है लाइफ में कभी कोई बहुत ज्यादा जरूरी हो ही जाता है.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो हमने आपसे सवाल किया था और मैंने कोशिश यही की थी कि भाई हमारे जो सवाल है उसके जवाब आप आराम से दे दो, यानी कि बहुत ही आसान सा सवाल था. हमने आपसे पूछा था कि कृति सैनन को किस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, एंड एक्चुअली उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था वो बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस रोल, और वो है मिमी जो आई थी 2021 में. और मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो प्यारी सी लंबी सी एक्ट्रेस है वो पहले आज फैशन मॉडल काम भी कर चुकी हैं, और उन्होंने अपना जो करियर है उन्होंने एक्चुअली हीरोपंती फिल्म से किया था, एंड देन उसके बाद उनका जो करियर है वो रुका नहीं, एक के बाद एक अच्छी मूवी आती रही. बरेली की बर्फी हो, लुक्का छुपी हो, दिलवाले हो, हाउसफुल हो, और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी और फिल्मों में काम किया जहाँ पर वो रोबोट बनी थी. इन द मूवी तेरी बातों में, यू रिमेम्बर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, लेकिन मैंने उनको क्रू और तेरे इश्क में भी बहुत पसंद किया है ना. चलिए, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में वो नजर आई थी. अभी विनर कौन है ये जानने का समय आ गया है. जवाब तो मिल गया, विनर कौन है? सही जवाब देकर यहाँ पर विनर बनी है पूजा तोमा फ्रॉम पालमा. एकदम सही जवाब, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. आपको मिल रहा है राजस्थान वर्क्स और एमबीसी के साथ खेलने पर 4 एंट्री टिकट्स एंड व्हाट फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जो कि आप एंजॉय करेंगे एट उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. आज से शुरू हो रहा है, 16 अगस्त तक चलेगा. SBI CCPI में 10 बजे से रात के 9 बजे तक. तो अभी भी चाहे तो आप तैयार हो जाइए क्योंकि 10 बजे दरवाजे खुलने वाले हैं. तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको बता दूं वहां पर 5 दिनों का ये शॉपिंग एंटरटेनमेंट एंड फैमिली फन, जहां पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, और वहीं पे स्पेशल अपीयरेंस आपको मिलेगा ऑन संडे. वो होगा बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर धर्मेश सर का कानमा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप और फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट बुक्स लिमिटेड. चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपको आकर एमबीसी अपना ये जो वाउचर है ले जाना होगा सुबह 9:30 बजे से सफेद 9:30 बजे के बीच. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: दोस्तों, जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। किसी के पास खुशी होती है तो वो खुशी देता है, किसी के पास गम होता है तो वो गम, और किसी के पास गुस्सा होता है तो वो गुस्सा देता है। सोचो जरा, जब कोई आपसे प्यार से बात करता है तो शायद उसके अंदर भी प्यार ही भरा हुआ है। जब कोई बिना वजह किसी पर गुस्सा करता है तो हो सकता है वो खुद अंदर किसी न किसी पेन के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। हम अक्सर दूसरों के बिहेवियर को जज करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो इंसान अंदर से क्या कैरी कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम दूसरों के अंदर क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर चूज़ कर सकते हैं कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं। अगर कोई आपसे गुस्सा करता है, आपको गुस्सा दे रहा है, तो क्या आप गुस्सा ही रिटर्न करेंगे? अगर कोई निगेटिविटी फैला रहा है तो क्या आप उनको भी निगेटिविटी ही देंगे? या फिर आप कहेंगे, भाई तुम्हारे पास जो है तुम वो रख लो, मेरे पास जो है मैं वो ही दे देता हूँ तुमको। थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी पॉजिटिविटी, क्योंकि आपकी एक स्माइल किसी के पूरे दिन का मूड बदल सकती है। आपके दो काइंड वर्ड्स किसी का कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है, और आपका पेशेंस किसी के गुस्से को शांत कर सकता है। तो याद रखिए, ज़रूरी नहीं जो आपको जो दे रहा है वही आप वापस करें, एक्सेप्ट लव। बाकी आपके पास प्यार है तो बांटते चलिए।
1: RM2 Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Yes, हमारी मॉर्निंग तो कमाल की होती है जब हमारा घर बड़ा बड़ा सा होता है.
3: मॉर्निंग मॉर्निंग में बड़ा मजा आता है.
2: गुड
3: मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वैसे यहाँ पर मनीषमा भी पीछे से बैकग्राउंड में पूरी एनर्जी लेती हुई और ये कहती हुई कि बस थोड़ी देर में आ रही हूँ और गाने वाने तो ऑल सेट ही हैं. वेदा कैसी हो, क्या हाल चाल है?

0: हम तो यहाँ पर जैसे आते हैं माय कौन होता है तो पता नहीं, हम तो दूसरी दुनिया में खो जाते हैं. ये तो अलग दुनिया होती है भाई म्यूजिक की. और सुबह सुबह क्या गाने चले और मैं खुद के गाने पे स्टूडियो में इतना डांस कर रही थी. मेरा कार्डियो हो गया आज का. हाँ, मेरा कार्डियो हो गया.
1: अच्छा, तभी लग रहा है ये जो चेयर है इधर से उधर कहाँ पहुंच गई, टेबल उल्टी क्यों पड़ी हुई
0: है. मैं टेबल पे चढ़ के डांस रही थी.
1: क्या बात कर रही
0: है. चलो बता दो बाहर ट्रैफिक की हालत क्या है.
1: हाँ चलिए, वैसे स्टूडियो में टेबल तो वेजिटेबल बन गई है, लेकिन बाहर की रिपोर्ट ये है कि मौसम अच्छा है. ट्रैफिक थोड़ा जरूर है कि फ्लाईओवर पर रुक रुक कर आ रहा है, अदरवाइज थिंग्स आर प्रीटी फाइन.
0: आखिरी
1: हफ्ता है, मैं कह रहा हूँ आखिरी हफ्ता है, स्कूल हॉलीडे का मजे ले लो. हाँ, टाइम पे पहुंच जाओ और उसके बाद थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा. ऐसे मॉर्निंग में बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक के साथ उठना कुछ अलग ही मजा आता है. और इतने सारे गेम्स हो गए, सो इट्स ऑल ऑन. और अभी मनीषा आ गई, चलिए उनसे पूछ लेते हैं क्या लेकर आ रही है. गुड
0: मॉर्निंग.
2: मैं चाय कॉफी और ब्रेड ही लेकर आई हूँ. अच्छा, खा लो कुछ थोड़ा थोड़ा.
0: कुछ बचा होगा तो खा ही लेंगे.
2: बचाऊंगी.
0: अच्छा बचाऊंगी. ओके,
2: देखते अच्छे बच्चे. जैसे एक गाना मेरे दिमाग में अटक गया जो आपने चलाया, कैसे हुआ तुम इतना जरूरी, कैसे
0: बताओ कैसे हुआ.
2: ये टीम बहुत ही जरूरी होती है हमारी.
0: ऐसे हुआ
2: या

0: जी जला कर नहीं बल्कि प्यार से आरी आपके साथ देने के लिए मनीष माँ आपसे मुलाकात कल करते हैं बाय बाय टेक केयर
1: RM2 रेडियो मस्ती

नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन चर्चित मामलों में डीपीपी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इनमें रिवॉर्ड मनी मामला शामिल है, जिसमें पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लीलराम डियाल संलग्न हैं। इस ताकपाउटी मामला, जिसमें पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिंद के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जा रहा है। और तीसरा मामला इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ कैन पुनुस्वामी के खिलाफ हैं, जिन पर कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त करने का आरोप है। डीपीपी का मानना है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोष सिद्धि की उचित संभावना मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने कल मंगलवार को पोर्टली में अपनी पहली बैठक लगाई और कार्यनीति तथा

0: उन विषयों पर चर्चा की गई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल का गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराना शामिल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नज़रें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हुई हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा डुखनी के का मानना है कि अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है। बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% का रहने का अनुमान लगाया है। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता, सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग ही सोच है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इसकी पुष्टि की। सम्मेलन के दौरान इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण भी दिया गया और विदेश में कोलंबिया में भूकंप पश्चात नए झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या अभी 181 बताई गई, लेकिन मृतकों की संख्या इससे अधिक होने की आशंका है। संभवतः 200 से भी अधिक देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। लगभग 2600 लोग घायल रहे हैं और करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। 1100 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 8000 से अधिक घरों को नुकसान हुआ है। मलबों में फंसे लोगों की खोज के लिए राहत कर्मी समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: RM2 Radio Musti.

0: ऐसे गाते चलो, मुस्कुराते रहो, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हो या फिर घर पर बैठे हो या फिर ऑफिस में पहुंच भी गए हो या पर तुम हो तो सब अच्छा है. आपके मैसेजेस होते हैं, आपका साथ होता है तो सब ऐसे महसूस होता है कि सब ठीक ही है. वैसे हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर, वी हैव गॉट हियर योर कंपनी ऑन 5 to 9 and 1 to 9 पर. गुड मॉर्निंग, 9:10 हुए हैं. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड. वेडनेसडे का दिन है, बस बीचों बीच खड़े हैं हफ्ते के, और देन वी हैव गॉट थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाएगा एंड वीकेंड शुरू. क्या कहते हो आप?
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned.

0: चार सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, 9:13 हुए हैं। आपका चाहिए द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस आपके मूड को और भी रंगीन बनाने के लिए। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस ट्यूनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: कुछ अर्ली 2000 के गाने चुनकर लाए हैं आपके लिए, आपके खिदमत के लिए. और ऑफ कोर्स केके की आवाज में क्या मुझे प्यार है, वंडरफुल सॉन्ग आर टू ऑल दोस जो अभी तक काम कर रहे हैं. विरबो कुहार्ज गुजार टू यू, अभी तो दिन शुरू हुआ है. ऑल द बेस्ट थ्रू आउट द डे, गिविंग यू द राइट वाइब्स एंड द राइट बीट्स ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: 9 बजकर अभी 50 मिनट हुए हैं. Here we go, not to miss your राशिफल.
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
0: चलिए जीवी के लिए शुरुआत करते हैं with your मेष राशि.
2: एरीज मेष राशि.
0: वर्क में इनिशिएटिव लेने का दिन है. कलीग्स के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें. हेल्थ के लिए हाइड्रेशन और प्रॉपर रेस्ट पर फोकस करें जरूर.
2: टॉरस वृषभ राशि.
0: फाइनेंशियली या प्रोफेशनल मैटर्स में प्रैक्टिकल डिसीजंस लें. ओवर वर्किंग से बच के जरूर रहे. ओके जी. लाइट एक्सरसाइज और बैलेंस मील्स हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
0: कम्युनिकेशन आपकी तो बेस्ट स्ट्रेंथ है. मीटिंग्स और डिस्कशन में आपकी बात नोटिस होंगी. मेंटल टाइडनेस को अवॉइड करें और छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ना भूलें.
2: कैंसर कर्क राशि.
0: वर्क प्लेस पर इमोशंस को डिसीजन पर हावी ना होने दें. पेशेंस रखें और हेल्थ के लिए स्ट्रेस कम लेना शुरू कर लो और अच्छी स्लीप को प्रायोरिटी दें.
2: लियो सिंह राशि.
0: करियर में रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन मिल सकती है आपको. लीडरशिप रोल लेने का मौका मिलेगा. एनर्जी अच्छी रहेगी लेकिन रेस्ट को इग्नोर ना करें. ये बहुत ही जरूरी है.
2: वर्गो कन्या राशि.
0: पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए एक्सेलेंट डे है आज. डिटेल्स पर फोकस आपको एडवांटेज देगा. हेल्थ के लिए रूटीन और टाइमली मींस यानी कि खाने को ध्यान दें. ओके उसको मेंटेन करें. ये जो आपकी रूटीन है.
2: लीब्रा तुला राशि.
0: टीम वर्क से काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए. किसी कलीग की हेल्प आपके लिए यूजफुल हो सकती है. हेल्थ के लिए माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही जरूरी होता है.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
0: वर्क प्रेशर थोड़ा सा हाई हो सकता है आज. सो प्रायोरिटीज को सेट करें और हर बात को पर्सनली ना लें. फिजिकल एक्टिविटी और एडिक्वेट स्लीप आपको रिफ्रेश रखेगी.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
0: नए नए मौके न्यू अपॉर्चुनिटीज इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स सामने आ सकते हैं. कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसीड करें. हेल्थ वाइज आउटडोर एक्टिविटीज और फ्रेश एयर बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
0: कंसिस्टेंट हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको मिल सकता है जरूर. सीनियर से अप्रिसिएशन भी मिल सकती है. ये पॉसिबल है. अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करें और ब्रेक्स छोटे छोटे ब्रेक्स ब्रीथ यस वर्क अराउंड स्ट्रेचिंग करें और एक्सरसाइज ना भूलें.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
0: क्रिएटिव आइडियाज वर्क प्लेस पर आपको अलग आइडेंटिटी दे सकता है. न्यू मेथड्स आप ट्राई कर सकते हैं बेशक. हेल्थ के लिए आज थोड़ा सा स्क्रीन का इस्तेमाल मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं तो बेहतर होगा आपके दिमाग के लिए आपकी शांति के लिए भी.
2: पाइसेस मीन राशि.
0: सो वर्क में थोड़ा सा इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजंस फैक्ट्स चेक करके जरूर ले लीजिएगा. स्ट्रेस को कंट्रोल करें और पीसफुल इवनिंग और प्रॉपर स्लीप आपके लिए स्पेशल स्पेशल फायदा लेकर आ सकता है. ये थे आपके लिए हॉरोस्कोप.
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, it's 10 a.m. चलिए बिक्री सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ करुणा जी. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार. सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन चर्चित मामलों में डीपीपी की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. इनमें रिवॉर्ड मनी मामला शामिल है, जिसमें पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लीलराम डियाल संलग्न है. इस तक पहुंची मामला में, जिसमें पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिन के खिलाफ भी अभियोजन चलाया जा रहा है. और तीसरा मामला इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ केन पुनुसामी के खिलाफ हैं, जिन पर कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल कर लाभ प्राप्त करने का आरोप है. डीपीपी का मानना है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषी सिद्धि की उचित संभावना मौजूद है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले सभी की नजरें नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं. मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट मनीषा दुखोनी के अनुसार अब दर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है. लेकिन ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में हो रही है. बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया है. खगोल की बात करें तो आज 12 अगस्त 2026 को वर्ष का एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और दिन के समय कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाएगा. लेकिन मॉरिशस और रोड्रिक्स में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. स्थानीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 7:34 से रात 11:00

59 मिनट तक होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, जिसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। एशिया में लगातार तूफानों का कहर देखा जा रहा है। चीन, जापान और फिलीपींस लगातार 3 तूफानों की चपेट में रहे हैं। डॉल्फिन, चानहोम और पेलू ने क्षेत्र में एक साथ दस्तक दी है। चीन में डॉल्फिन तूफान का असर जारी है, कमजोर होकर आगे बढ़ रहा ये तूफान आज बीजिंग में मूसलाधार बारिश ला सकता है। वहीं जापान में ट्रॉपिकल स्टॉर्म चानहोम का कहर है। टोक्यो समेत कांटो क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद तूफान कमजोर पड़ा है। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से कम 26 लोगों की मौत हुई है। मानसून और लगातार आए तूफानों ने वहां मुश्किलें बढ़ाई हैं। प्रशांत महासागर में ट्रॉपिकल तूफान पेलू आगे बढ़ रहा है। फिलीपींस के पूर्वी तट से दूर होकर एशिया से दूर जा रहा है। वहीं जापान के दक्षिण में नया तूफान नांका बना है, इसके उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। नंबर 9 गुतबासें काठरबोन में 70 साल के 70-year-old श्री असन देव रानू जो देव से जाने जाते थे और पहले सैडल कॉलेज के प्रोफेसर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 1:30 बजे ला शापेल ऑडोट एलियनसंस रोटवायाल बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाएं ओही बल्कि सैंपियर बांबू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1:30 PM। आवेनी कनारी गुडलैंड में 46 साल के 46-year-old जनाब अहमद फयाज हाइसू जो फयाज से जाने जाते थे इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेगम अमीरा हाइसू के मकान अविनिका नागी गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टू डेथ 1:30 PM। अविनी क्रेसखेल मोचिदा में 76 साल की 76-year-old रोशनारा बीबी कोडाबुकस पैदाइश नाम इलाही जो फाजिला से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे परवेज कोडाबुकस के मकान अवेनी खैसखेल मोचिदा से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कोडेमास्का का कब्रिस्तान जाएगा। फिनरल टुडे 2:00 PM। और सोहन लेन ग्राउंड पॉइंट पीमा में 81 साल के 81-year-old श्री दुर्गा प्रसाद नौबत सिंह जो दुर्गा से जाने जाते थे और पहले सोलिट्यूड शुगर स्टेट में सियाडा काम करते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान सोहन लेन ग्राउंड पॉइंट पीमा से उठाकर दाह संस्कार के लिए पॉइंट बिश की स्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टू डी 2:00 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।
2: हमारा मन आपको क्यों चाहे। वैसे यहाँ पर इतने सारे प्यारी गाने हम जो चलाते हैं आप सभी के नाम। गुड मॉर्निंग अगेन, दूसरे आवर में, सेकंड आवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10:11 हुए हैं अब जो रहे आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ, तो मैसेजेस की बार इन दिस सेकंड आवर और थोड़ी देर में आप सभी को पहुंचा देंगे ऐसी पाई में जहाँ पर लग रहा है आज फर्स्ट डे। आज कौन सी तारीख है? 12 तारीख, आपको याद है ना। तो वहाँ पर हो रहा है उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI & LIC। वहाँ पर होंगे आपके लिए परी जो लेकर आ रहे हैं इतने सारे गर्मा गर्म खबर कि वहाँ पर क्या हो रहा है। शुरुआत कैसी हो रही है, कितने सारे लोग पहुँच गए हैं या फिर नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, आज है पहला दिन। यू कैन जस्ट मैनेज योर टाइम एंड मेक इट पॉसिबल। व्हाट यू से? ओके, अभी के लिए लेते छोटे से घंटे में चंदा है कोयला मूवी से। It's a beautiful track, especially for all those जो कि अभी घर पे हैं, बस सोच ही रहे हैं कि SBI से जाएं या ना जाएं, तो जाइए ना, हम हैं accompany करने के लिए।
0: RM2
1: Radio Musti।
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब

0: कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीस, सारीस, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हलकुरी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हलकुरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti.

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

0: हाय नमस्कार दिस इज अभिजीत भट्टाचार्य आप सुन रहे हैं मुझे इन एट ऑन रेडियो मस्ती मस्ती भरी मस्ती
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती
1: तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं जैसे कि हमने वादा किया है थोड़ी देर पहले कि we're gonna take you outside the studio वहां पर पहुंच गई है at SBICC Pi for the Utsav India Mauritius Shopping Carnival here we go let's talk with Paddy good morning Paddy
3: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने हम आ गए हैं एट SBICC पाए और जब यहाँ पर हम आते हैं सो सब जानते ही है कि क्या होती है डिटेल्स और क्या होती है मस्ती यहाँ पर सो लेट मी टेल ऑल माय लिसनर्स दैट अभी आप जो कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ सो हमारी जो टीम है वो आ गई है एट SBICC पाए जहाँ पर लगा है इंडिया का एक ऐसा इंडिया मॉरिशस का एक ऐसा शॉपिंग कार्निवल जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं सो द बिगेस्ट इंटरनेशनल होम शॉपिंग एक्सपो है होम एंड गार्डन एक्सपो है आज से शुरू हुआ है यानी कि ऑफिशियल जो ओपनिंग है वो आज दिन के 11 बजे से यहाँ पर होने वाली है और एवरीडे आप यहाँ पर आ सकते हैं टिल 16th ऑफ अगस्त सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक जहाँ पर आप एंजॉय कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें एंड मनीषमा लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट यहाँ पर घूमते फिरते हमने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें We know that soon we are going to celebrate रक्षाबंधन और हम जानते हैं कि बहने हो या फिर भाई हो सबको एक खास expectations होती है कि भाई इस दिन को हम अपने sisters के लिए या फिर brothers के लिए कुछ special करें तो यहाँ पर राखीज मिल रही है यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए अगर आपको gifts चाहिए ये भी मिल रहे हैं हमने देखे बहुत सारे bags जहाँ पर आपको तीन बैग लेट मी टेल यू तीन बैग आपको मिल रहे हैं फॉर ओनली 500 रुपीज़ और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्नीचर है यहाँ पर अगर आप घर डेकोरेशन की चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो है यहाँ पर मिरर्स हैं LED लाइट्स हैं यानी कि आप नाम लीजिए और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है और ये एक ऐसा शॉपिंग एक्सपो है जहाँ पर आप बच्चों के साथ भी आ सकते हैं अभी के लिए वी नो दैट बच्चे जो है हॉलीडेज एन्जॉय कर रहे हैं और हॉलीडेज एन्जॉय करते हुए वो अपने पेरेंट्स के साथ इस शॉपिंग फेस्टिवल को असिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर खूब सारी मस्ती कर सकते हैं एंड शॉपिंग की चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो शायद आपकी लाइफस्टाइल को और बेटर कर सकते हैं आपकी हेल्थ को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं सो वी हैव अ जेंटलमैन हमारे साथ आपका नाम सर
4: नमस्ते मेरा नाम नीरज है
3: ओके नीरज जी तो हमें बताइए कि एग्जैक्टली आपका जो स्टॉल है वो क्या है और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है
4: मैं अगर बताना चाहूँ जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग को लेके है जैसे हमारी कंपनी का नाम ही ऋषि लोक है और आयुर्वेद का कहीं ना कहीं जो उद्गम है जो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कहते हैं इट्स अ ऋषि साइंस दैट्स व्हाई जो हमारी कंपनी का नाम भी ऋषि लोक है और जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो चाहे हम कुछ खाना खा रहे हैं या हम जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट अपने स्किन पे या फिर हम योग की बात करते हैं सो हम जो यूज़ कर रहे हैं अगर वो प्रकृति से अलग है तो वो हमें हार्म करेगा कभी भी हमारे फायदा नहीं कर सकता है तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 100% नेचुरल हैं उसमें कोई भी केमिकल नहीं है नॉट अ सिंगल आयोटा ऑफ केमिकल इन इट और वो पेन रिलीफ के लिए है हमारी स्ट्रेस एंजाइटी

0: स्लीप के लिए है, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, एस्दम एस्मा है. और फिर मैं वापस जाना चाहूँगा कि इन सब के पीछे जो साइंस है वो ऋषि साइंस है. मैं छोटी सी बात अगर बताना चाहूँ कि एक साइंस है जो कि हम बाहर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जानते हैं कि उसका बेनिफिट क्या है, लेकिन हमारे ऋषिज जो हैं उन्होंने अपने आप को बहुत सटल किया, सूक्ष्म किया, एंड दे हैव गॉन इनसाइड, वो अंदर गए और वहाँ से जो उन्होंने पाया दे हैव गिवन इट टू द वर्ल्ड, और वहाँ वही वर्ल्ड को जो है ऋषि लोक देना चाहता है. और अगर मैं कहूँ तो हमारा स्टॉल जो है इट्स फॉर द मेंटल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग.
1: सो दैट्स वेरी नाइस. आपका स्टॉल नंबर क्या है एंड क्या नाम है आपके स्टॉल का?
0: मेरे स्टॉल का जो नाम है वो ऋषि लोक है, ऋषि लोक, लेकिन मैं स्टॉल नंबर मुझे
1: ओके, बट हम हमारे लिसनर्स को बता देंगे कि जैसे यहाँ पर नीरज जी ने हमें बताया कि ऋषि लोक आप इस स्टॉल को विजिट कर सकते हैं और एमबीसी का जो स्टॉल है बस उसके बिल्कुल सामने आप इसे जाकर आप इस पर चेक कर सकते हैं. और जैसे इन्होंने बताया कि आप बच्चों के साथ भी काम करते हैं, आप प्रिजन्स में भी जाते हैं एंड इट्स वेरी नाइस, क्योंकि आजकल मेंटल वेलबींग, हेल्थ की जो अगर हम बात करें, अगर ऐसा कोई ऑयल मिलता है जो किसी को रिलीफ दे रहा है, किसी को सुकून दे रहा है, सो व्हाई नॉट. सो थैंक यू सो मच मिस्टर नीरज, आपने इतना कुछ अच्छा हमसे शेयर किया.
0: मैं सिर्फ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो बात कही, हाँ अगर हम, हमारा एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस है, उसके माध्यम से हम पूरे मॉरिशस में, चाहे वो जेल हैं या जैसा कि आप बात कर रही थी जेल हैं, फिर हम ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम करते हैं, जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं उन स्कूल्स में भी हम जाते हैं, और जनरल मास के लिए भी अगर किसी तरह का एलिमेंट है, चाहे वो स्ट्रोक है, किसी को किसी तरह का भी एलिमेंट जो बॉडी में है उसके लिए भी हम योग के माध्यम से भी काम करते हैं, योग और आयुर्वेद दोनों के माध्यम से.
1: सो दैट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और एक बार फिर हमारे जो लिसनर्स हैं, हमें सुन रहे हैं, आप इनके स्टॉल को ज़रूर विजिट करें, आपको ज़रूर यहाँ पर कुछ खास और स्पेशल जानने को मिलेगा और आप कुछ ऑयल्स भी हैं जो आप ले सकते हैं फॉर योर वेल बींग. एंड वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये जो शॉपिंग फेस्टिवल है इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, आज से लेकर 16 अगस्त तक आप यहाँ पर आ सकते हैं एट SBICC पाए, सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक ये यहाँ पर चलने वाला है. एंड ऑल्सो आज यहाँ पर परिणय जैन, इंडियन आइडल जो सिंगर है, वो यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं. थोड़ी ही देर में वी आर गोइंग टू हैव द ऑफिशियल ओपनिंग यहाँ पर. सो बहुत कुछ खास एंटरटेनमेंट शोज हैं, फूड फेस्टिवल है यहाँ, यानी कि एक बड़ा सा फूड कोर्ट है जहाँ पर आप जाकर डिफरेंट खाने ट्राई कर सकते हैं. एंड ऑफकोर्स थोड़ी ही देर में कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे. बैक टू यू मनीषमा.
2: RM2 Radio Musti.

0: आवाज है। वैसे ऐसे गाने चल रहे हैं जहाँ पर आप गा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं हमारे साथ। हम रेडियो मस्ती, हियर वी गो फॉर योर फैशन टिप। अभी के लिए
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: चलिए आज का फैशन टिप है कलर्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आपको क्लासी और एलिगेंट लुक पसंद है तो ब्लैक, आइवरी या फिर नेवी ब्लू जैसे क्लासिक कलर्स आप चूज कर सकते हैं। बेशक अगर आप अपने आउटफिट में थोड़ा सा ग्लैमर और रिचनेस ऐड करना चाहती है तो एमराल्ड ग्रीन, बर्गंडी या फिर रॉयल ब्लू जो मेरे सबसे वेरी फेवरेट कलर्स है, आपके भी मैं तो जानती हूँ कभी कभी हम भूल ही जाते हैं। वैसे ये सारे कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइसेस होते हैं सॉफ्ट और फेमिनिन लुक के लिए। यू कैन जस्ट आप ब्लश पिंक, पेच या फिर लैवेंडर ट्राई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फैशन में वही कलर सबसे खूबसूरत लगता है जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करवाए। ये थी आपके लिए फैशन टिप।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2, Radio Musti.

में डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आपको देने के लिए यहाँ पर हम ठहरे हैं टू गिव यू 4 inch टिकट्स एंड 1 foot कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया. यहाँ पर उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI LICS फ्रॉम द 12th of August 2026 को शुरू हो रहा है आज से टिल द 16th of August 2026 एट SBICC 5. तो बताइएगा, सवाल ये रहा आप सभी के लिए कि वहां पर मिल रहा है आपके लिए जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, हाँ या ना में जवाब दीजिए. ओके जी, आपको मिल रहा है 1 foot कूपन एज गिफ्ट फॉर जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली, हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन दिस नंबर 5 4 9 and 1 2.

0: इन्फो पर और जीतिए ये गिफ्ट्स जो आपके नाम हो सकते हैं अगर आप हमें फुल नेम और एड्रेस के साथ सही जवाब भेजे तो. ओके जी, लेते हैं अभी के लिए छोटा सा ब्रेक, देन मेरे पायल हिच एंड खाई वाला सॉन्ग स्पेशली स्पेशली आप सभी के नाम.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans tout Ban Winners.
3: Et promotion, bidoune balle. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes piment curry pour 29,95 €. 500 grammes mandarine pour 44,95 €. 500 grammes blanc, bisec, aile de poulet frais pour 109,95 €.
1: Ban Prila, Bazaar Moudiarou. Rendez-vous Gekot Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
4: On est tous Winners.
1: RM2
2: Radio Mustang.

0: जवाब देकर आपको मिल रहा है क्या ये फूड कूपन फॉर जैन सेंट्रल इंडिया शाही थाली आपको आया ना जवाब देना था. एंड यहाँ पर हमारे साथ हमारे लकी विनर है, उनका नाम है रोशन अजगोबी, जिन्होंने सही जवाब एंड द राइट आंसर यस ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग वन फूड कूपन ऑफर टू यू बाय जैन सेंट्रल इंडिया और मिल रहा है आपको फूड कूपन के लिए फॉर द शाही थाली. कंग्रेचुलेशंस के साथ सी यू अजगोबी जी.
1: RM2 Radio Musti.
2: Jumbo, quality déco, fin lot sur extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, 10 pieds par 10 pieds pour 100 roupies. 10 pieds par 4 pieds pour 295 roupies.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ करुणा जी। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन आजकल मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और गहरा करने के भारत के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अपनी यात्रा के दौरान एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन मॉरिशस सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण तथा सैन्य सहयोग सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज भी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने मॉरिशस में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। पूर्व जज विनोद बुलेल की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने मंगलवार को पोर्टवी में अपनी पहली बैठक लगाई, जिसमें कार्य नीति और उन विषयों पर चर्चा की गई जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना है। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, निजता और सूचना के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन और नियमित रूप से नगर पालिका चुनाव कराना शामिल हैं। रक्षाबंधन 28 अगस्त तक को ही मनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने इस पर्व को लेकर जुड़ी भ्रांतियों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन युवाओं की आकांक्षाओं, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को उभारता है। मॉरिशस में पढ़ाई, रोजगार, उद्यमिता, सफलता हासिल करने की इच्छा और कभी कभी विदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने की चाहत के बीच युवाओं के पास भविष्य को लेकर अपनी एक अलग सोच है। विदेश में जिम्बाब्वे के लेक करिबा में एक यात्री नौका के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक 77 लोगों को बचा लिया गया जिन्होंने झील के एक छोटे से द्वीप पर शरण ली। बचाव और तलाश अभियान जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नौका की क्षमता 90 यात्रियों की थी, लेकिन उस पर कम से कम 119 लोग सवार थी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। इडिसिलेन कुंगुआ में 60 साल के

0: स्थियो ओल श्री सत्यानंद गोकुल श्री सत्यानंद गोकुल जो बिज्यानंद से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे यानी कि इसी समय उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रावती गोकुल के मकान इडिसलेन कोंगुमा से उठाई जा रही हैं और दाह संस्कार के लिए बुआ मौसों की स्मशान भूमि ली जाई जा रही है। नंबर 113 सितिला ग्रिमों सैपिया में 73 साल की 73 ओल्ड श्री एलाना अपाडू जो दास से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे इनके मकान नंबर 113 सितिला ग्रिमों सैपिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंपिया की स्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। भानुलेन नोत्रडाम में 69 साल के 69 ओल्ड श्री लेखराज हरभंस जो रमेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती विंती हरभंस के मकान भानुलेन नोत्रडाम से उठाकर दाह संस्कार के लिए नोत्रडाम की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। और अविनिकानागी गुडलैंड में 46 साल के 46 ओल्ड जनाब अहमद फयाज हरसू जो फयाज से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। जनाजा आज दिन के 2:30 बजे इनकी बेगम अमीरा हरसू के मकान अविनिकानागी गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टू डेथ 2:30 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: यहाँ पर 11:12 हुए हैं, हम संपर्क में थे विद आवर लिटिल ब्यूटीफुल परी और वहाँ पर पहुँची गई है. जैसे कि आप सही सुन रहे थे कि पिछले आवर में उन्होंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल जो लग रहा है पाए में आज फ्रॉम टुडे टिल द 16th of August. तो उनसे अब बात करते हैं डायरेक्टली. हेलो परी, हाउ आर यू?
1: हेलो मनीषमा, बिग हेलो टू ऑल द लिसनर्स. बिल्कुल हम सुपर एक्साइटेड हैं और सारी डिटेल्स तो आपने दे ही दी. हम आ गए हैं SVICC पाए. ये एक होम शॉपिंग कार्निवल है जिसके बारे में हम कितने लंबे टाइम से बात कर रहे थे एंड फाइनली टुडे इज द

0: दे जहां पर यहां शुरुआत हो चुकी है। शॉपिंग के साथ साथ यहां पर और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मनीषमा, लेट मी टेल यू राइट नाउ, आई एम सिपिंग अ चाय, और चाय सिप करते हुए आई हैव टू ब्यूटीफुल पीपल हमारे साथ। सो प्लीज आपका नाम बताएं।
1: अनुराग शर्मा।
0: और आपका नाम मैम?
2: डॉक्टर सारिका।
0: ओके, सो यहाँ पर अनुराग जी है, डॉक्टर सारिका है, और मैं चाय सिप कर रही हूँ, तो आप हमें बताएं कि ये चाय एक भी स्पेशल क्यों है।
1: सबसे पहले नमस्कार मॉरिशियस, हम है ओलिटिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑलिव टी। सो जैसा कि आपने पूछा कि ये चाय इतनी स्पेशल क्यों है, तो आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की चाय सुनी होगी, मसाला चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, बट क्या कभी आपने ऑलिव की चाय सुनी है?
0: कभी नहीं सुनी, और मैं पी भी रही हूँ।
1: तो दैट्स इट। सो द ड्रिंक दैट वी आर हैविंग, ये है दुनिया की पहली ऑलिव के पत्तों से बनी हुई चाय।
0: वाओ।
1: यस, एंड इसके बारे में आगे हमारी पार्टनर बताएंगे।
3: ऑलिव ही क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें है ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इसमें कैफीन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप इसे सोने से पहले भी ले सकते हैं, ये आपकी नींद को बहुत अच्छा कर देगी और आपकी स्किन को, आपके बालों को, सबको अच्छा करेगी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी फ्रॉम सेल टू सेल।
0: ओह नाइस। सो ये इसका कुछ है कि आप दिन में इसको कितनी बार पी सकते हैं, या फिर इट्स जितनी बार आप पीना चाहें आप पिए, कुछ डिटेल्स इसका?
1: एब्सोल्युटली। सो अनलाइक एनी अदर टी, इसमें पीने के बाद आपको किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन या ब्लोटिंग का इशू नहीं होता है। अब जैसे कि हमारे मैम ने बताया, इसके अंदर कोई आपको इफेक्ट नहीं है, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स और टोटली कैफीन फ्री है ये। अगर आप ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े मात्रा में कैफीन होता है। हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल कैफीन नहीं है, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, सो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सबके लिए। हम चाहते हैं जो भी आज SVICC आए तो प्लीज़ हमारे स्टॉल पर आके एक बारी ओलिटिया को टेस्ट करें और अपना एक फीडबैक दे दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा सर।
0: बिल्कुल जी, मजा तो हमें भी आ रहा है। थैंक यू सो मच अनुराग जी, एंड थैंक यू सो मच सारिका जी, यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल्स उन्होंने पहुँचाई। और यस, ये है ओलिव से बनी हुई थी ओलिटिया। सो ये है ओलिटिया। सो आप इनके स्टॉल पर आ सकते हैं, यू कैन सिप द चाय एंड देन यू कैन डिसाइड कि आप इसे लेकर जाना चाहते हैं। एंड वेल दोस्तों, ये हम जानते हैं कि हम इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं, इतने सारे हम जो बूस्टर्स हैं वो लेते हैं, लेकिन कभी कभार आपको नहीं पता होता है कि चाय सिप करने से आपकी बॉडी को कितने सारे फायदे होते हैं। सो ऐसी एक चाय ये यहाँ पर लेकर आए हैं। सो वी हैव द फुल टीम यहाँ पर जो आपको पूरी तरह से गाइड करेगी, और देन यू कैन बाय द चाय। एंड ऑल्सो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हम आपको बता दें 10 से लेकर रात के 9 बजे तक यू कैन कम SVICC पाए। मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल ये यहाँ पर शुरू हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, जैसे हमने देखा कि वेल बीइंग की चीजें हैं, वेलनेस की चीजें हैं, एंड इवन इफ यू आर वांटिंग टू डेकोरेट योर हाउस, या फिर आप घर के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, आप स्नैक्स खरीदना चाहते हैं, आप डेकोरेटिव आइटम्स खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, एवरीथिंग यू आर गेटिंग अंडर वन रूफ। सो द वन स्टॉप प्लेस आपको जहां पर आना है वो है SVICC पाए। अभी आज से लेकर 16 तारीख तक सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक ये शॉपिंग फेस्टिवल चलने वाला है। सो एंजॉय द टाइम, डिटेल्स लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में। बैक टू यू मनीषमा।
3: थैंक यू सो मच पड़ी, फिर से बात करते हैं।
4: RM2 रेडियो मस्ती।
5: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी, काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर, और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
4: RM2 रेडियो मस्ती।

0: हाँ जी हाँ जी ना जी ना जी हाँ या ना में जवाब दो. जैसे कि यहाँ पर स्पेशली दिस सॉन्ग गोज आउट टू ऑल दोज म्यूजिक लवर्स और लवर्स रोमांटिक पीपल. दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू. चल प्यार करेगी अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों के साथ. अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक. ये है लास्ट आवर ऑफ योर मस्ती मॉर्निंग्स विद मी मनीष मा.
1: RM2 Radio Musti. Paré pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point a lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir de 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point a shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
2: RM2 Radio Musti.

0: बस ये हमेशा जुड़ते रहते हैं यहाँ पर आपके चेयर मैसेजेस डेडिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज ट्यूनिंग इन टू आर एम टू रेडियो मस्ती. तो सब बीट को बदल देते हैं, नया गाना है लेकिन रिप्रेजेंटेशन चिनरी चिनरी हो जाए आपके नाम.
1: RM2 Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: ओके जी, 11:45 हो रहे हैं। बोन फुहाश, गुड डे, बन अपेटी फॉर ऑल दोस जो कि अभी लंच करने चल पड़े हैं। वैसे ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पर फंसे हो कोई बात नहीं। ऑल द

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा जी, चलिए इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है। वैसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमेशा, यूं ही तरह अपना अपने जो प्यार है बस आते रहिए और अमेजिंग गानों का साथ निभाते चलिए। यहाँ पर बना पिछे गुजा टू ऑल दो जो कि ये भी अपना लंच करने वाले

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check din ke 12 baje hai. Sunte abhi ke liye sankshipt samachar aapke saath Karuna ji namaskar aapko.
6: नमस्कार मनीष पांच सभी को नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से कुछ घंटे पहले आज नजरें रेट यानी कि नीतिगत ब्याज दर पर टिकी हुई हैं, जो फिलहाल 4.75% हैं। मई में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इकोनॉमिस्ट द्वारा मौजूदा दर बरकरार रखे जाने की संभावना जताई गई है। ये बैठक एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में लगाई जाएगी। महंगाई अभी भी ऊंची बनी हुई है, जबकि आर्थिक विकास की संभावनाएं कमजोर हुई हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस और IMF ने अब 2026 में मॉरिशस की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आजकल मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और गहरा करने के भारत के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अपनी यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन मॉरिशस सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण तथा सैन्य सहयोग सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज वे प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर रहे हैं। मॉरिशस की जिनिसा चकौरी, जिन्हें जीनी के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में आयोजित ग्लैमर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2026 का खिताब जीत लिया। 6 अगस्त को हुए ग्रैंड फिनाले में जेनिसा ने ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। 32 वर्षीय जेनिसा पेशे से हेल्थ एंड सेफ्टी अफसर हैं। वो क्रोमानिया डांस अकादमी से जुड़ी हैं और योग प्रशिक्षक भी हैं। इसी समारोह में एक अन्य मॉरिशस की प्रतिभागी मंजू बंधु ने भी सफलता हासिल की। उन्होंने क्लासिक श्रेणी में मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता। खगोल की बात करें तो आज 12 अगस्त 2026 को वर्ष का एकमात्र पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और दिन के समय कुछ मिनटों के लिए अंधेरा छा जाएगा। लेकिन मॉरिशस और रोड्रिक्स में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। स्थानीय समयानुसार ये ग्रहण रात 7:34 से रात 11:59 तक होगा। दूसरी तरफ पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में नजर आएगा, जिसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। जिम्बाब्वे के लेक कारिबा में एक यात्री नौका के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक 77 लोगों को बचा लिया गया, जिन्होंने झील के एक छोटे से द्वीप पर शरण ली। उधर दक्षिण अफ्रीका में सोमवार रात खदान के मलबे वाला हिस्सा ढहने से कम 14 संदिग्ध अवैध खनिकों की मौत हो गई। हादसा रेस्टनबर्ग के पास नॉर्थ वेस्ट प्रांत में हुआ। इस मामले पर पुलिस जांच

0: पहुंच शुरू कर दी गई है। और एशिया में लगातार तूफानों का कहर देखा जा रहा है। चीन, जापान और फिलीपींस लगातार तीन तूफानों की चपेट में रहे हैं। डॉल्फिन, चानहोम और पेलू के नक्षत्र में एक साथ दस्तक दी है। फिलीपींस में बाढ़ और भूस्खलन से कम 26 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। अवनी क्रेसरेल मोचिदा में 76 साल की 76-year-old रशुनारा बीबी कोडाबुकस पैदाइश नाम इलाही जो फजीला से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे परवेज कोडाबुकस के मकान अवनी क्रेसरेल मोचिदा से निकाल कर दफनाने के लिए मेजिन कौदिमास्का का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फिनरल टुडे एट 2 PM। कौफुखो में 67 साल के 67-year-old श्री दुदला भरोसी जो प्रेम से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके बेटे योगेश भरोसी के मकान कौफुखो फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 30 अवेनी आजाली मोसेलमोसें जॉन काटोबोन में 88 साल की 88-year-old श्री बालकी सुन तिलू जो सुना से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान नंबर 30 अवेनी आजाली मोसेलमोसें जॉन काटोबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए थ्रियानो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 3 PM। और एपस लालमात्सी रुली क्यूपिप में 69 साल के 69-year-old श्री देवानंद मानिक जो बाईदेव से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान एपस लामाल्टी रुली क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती रेट्रो रिदम RM2

0: Retro Rhythm. बारह बजकर 12 मिनट से हुए हैं. वेलकम बैक टू यू आर एम टू रेडियो मस्ती. रेट्रो रिदम में वक्त की गाड़ी एज यूजुअल थोड़ी पीछे जा रही है 70s, 80s और 90s के उस गोल्डन एरा में जहां मेलोडी सिंपल थी, लिरिक्स दिल से आते थे और गाना एक कहानी कहता था. तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए और इन्जॉय कीजिए टाइमलेस क्लासिक्स को जो लाते रहेंगे निलमनी आपके लिए. तो यहीं पर स्टे ट्यून्ड आर एम टू रेडियो मस्ती पर.
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Mustang.

0: एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
1: RM2
2: Radio

0: रेट्रो रिदम।
1: एक लड़की भीगी भागी सी चलती का नाम गारे का आइकॉनिक सॉन्ग है और फिल्म की कहानी भी काफी फनी कियोटिक और एंटरटेनिंग है। तीन भाई, एक गराज, एक लव स्टोरी और ऊपर से फुल ऑन कॉमेडी। किशोर कुमार जी की आवाज में और मधुबाला जी की अदाएं, क्या कॉम्बिनेशन था। ऐसे ही और गाने लाते रहेंगे आपके लिए, वापस उन मेमोरीज को रिवाइव करने के लिए। आप बस यही आरएमजे रेडियो मस्ती पर जुड़े रहना 2 बजे तक। इट्स नलमनी आपके लिए।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे आरम टू वीडियो मस्ती के साथ कौन कौन है इस वक्त घर पर, ऑफिस में, कार में या लंच ब्रेक एंजॉय करते हुए अपनी फेवरेट लोकेशन और साथ में अपना रेट्रो सॉन्ग भी हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो आप 5499124 पर, क्योंकि ऐसे ही गानों के जरिए कनेक्टेड रहेंगे प्यार से, अवेटिंग योर मैसेजेस।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: नज़ारों का तो पता नहीं लेकिन दिल का हाल पता है, क्योंकि मैसेजेस के जरिए आप खुद को बयां कर रहे हैं। फ्लैग से जनाजी जुड़े हुए हैं, गाना डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बेटियों

0: के लिए जनिता शेष तांसनी सिल्विया यूवी कृषि सुसरण फैमिली के लिए आप मांग रहे हैं नेक्स्ट गाना। चेतन जी भी साथ दे रहे हैं, बॉम्बू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुमार सानू का कोई भी गाना अपनी चाची को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। बेटा गुलशन, बेटी नीतिशा, दमाद नीतीश और मनसुख फैमिली की तरफ से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे। फिया जी भी साथ दे रही है, अब्दुल जी सारा बानो जो को भी बिग हेलो, आपकी याद में हो जाए नेक्स्ट गाना आरएमजी रेडियो मस्ती पर ही।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: जिंदगी में आप आए हो गई दुनिया हंसी, सच में रियली ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस। ऐसे ही साथ देते रहिए, कुछ ही देर में होने वाला है संक्षिप्त समाचार, उसके बाद वापस आपके नाम लेकर आएंगे प्यारे प्यारे नगमे आपके ही आरएमजी रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
4: नमस्कार आदाब आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा परिवारों को सौर्य किट्स की ओनरशिप प्रदान की जा रही है परिवारों की छत पर सौर्य पैनल्स हैं जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और योगदान के संदर्भ में इस परियोजना की शुरुआत की गई जन उपयोग और ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादन भी उपस्थित आज दोपहर 3 बजे केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक लगेगी फिलहाल की रेट 4.75% है गए 20 मई को इस दर को 25 अंकों से बढ़ाया गया था अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी के मुताबिक आज की रेट के बरकरार रखे जाने की संभावना है क्योंकि आज की बैठक एक नाजुक घड़ी में लगाई जाएगी मुद्रास्फीति दर बढ़ी है जबकि आर्थिक संभावनाएं कम हो रही हैं 27 अगस्त की पूर्णिमा एक चंद्र ग्रहण के साथ होगी ये ग्रहण 28 अगस्त तक होगा इस पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाई जाएगी लेकिन ग्रहण की वजह से इस साल बहुत सी अनिश्चितताएं हैं इसीलिए मुर्शिद सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने एक प्रेस सम्मेलन के दौरान स्पष्टीकरण दिए आचार्य परिषद से सलाह मशवरा करके और विभिन्न हिंदू पंचांगों को मद्देनजर रखकर MSDTF ने बताया कि 23 अगस्त की उन्होंने कुछ जानकारियां दी हैं और ये भी कहा कि 23 अगस्त को गंगा तालाब में पंचमुखी गणेश के निर्माण के लिए भूमि पूजा की जाएगी और विदेश में जिम्बाब्वे में करीबा झील में एक नाव के उलट जाने से कम 15 लोगों की डूब कर मौत हुई पुलिस के मुताबिक कश्ती पर 90 मुसाफिर थे और 5 क्रू मेंबरान थे जब ये घटना पेश आई ये पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत टिकट बिक्री के मुकाबले ज्यादा लोग कश्ती पर गए थे तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए कॉन्फुको फिनिक्स में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री दुदला बरोसी जो प्रेम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे योगेश भरोसी के घर कॉन्फुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड श्री पोपाया कार्तिक जो आयावेदी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी शुक्रवार को 12 बजे इनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट नून शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है
5: RM2
0: Radio Musti.

0: Retro Rhythm. रेट्रो रिदम में वक्त भले ही आगे बढ़ा हो लेकिन कुछ मेलोडीज दिल में वही ही रहती है। वेलकम बैक रेट्रो रिदम के दूसरे और आखिरी आओ में इट्स नर्मनी। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, कीप स्माइलिंग और म्यूजिक को अपनी कहानी का हिस्सा बनाते रहिए। हियर कम्स अनदर वन आपके नाम
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musti. शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.

0: rhythm.
1: गाना थोड़ा फेमिलियर फेमिलियर सा लगता है ना, वेल वेल यही है वो ओरिजिनल वर्जन ऑफ रूप दी रानी जो आजकल लोग सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं, वो एवरग्रीन क्लासिक मुश्किलों से खेलना है सीखा। लिरिक्स भी मोटिवेशन से भरी हुई है। आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं रेट्रो रिदम के हर लम्हे को वो नलमनी आरएमटी रेडियो मस्ती पर। बिग हेलो टू देव जी जो पेरिस से कनेक्टेड है, अनिश्ता जी भी साथ दे रही है कैथोबोन से, नमस्ते कमलदीप जी, शातु बेनागस से ज्योति जी को भी बड़ा सा हेलो गुड आफ्टरनून। तो चलिए वापस डाइव करते हैं उन यादों के उन प्यारे खजाने की तरफ।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

वैसे गानों में म्यूजिक और अच्छे लिरिक्स हो तो गाना बन जाता है यादगार। अब जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बस वॉल्यूम अप, आईज क्लोज्ड और मेमोरीज को रिवाइंड। दिस इज रेट्रो रिदम हैपनिंग राइट नाउ आपके RM2 रेडियो मस्ती पर। RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: इन म्यूजिक का मतलब रोमांस का वो गोल्डन चैप्टर, चाहे फर्स्ट क्रश हो, फर्स्ट लव हो, या बस विंडो के पास बैठकर गाना सुनना, हर किसी की कोई ना कोई तो 90s म्यूजिकल मेमोरी तो जरूर होगी। अगर है आपके पास तो शेयर करना ना भूले 5499124 पर। आज ही क्यों, कल भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि रोज 12 से लेकर 2 बजे तक रेट्रो रिदम का सफर जारी होता है। आप बस कनेक्टेड रहना और साथ में एंजॉय करते रहिए अमेजिंग रेट्रो गाने आपके ही आरएमजी रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

इसी आखिरी गाने के साथ मैं नीलम मनी आपसे इजाजत लेती हूँ. रेट्रो रिदम में आज का सफर रहा यादों मेलोडीज एवरग्रीन गानों के नाम. उम्मीद है आपने मेरे साथ इस म्यूजिकल जर्नी को एंजॉय किया होगा. मिलेंगे कल फिर से इसी वक्त इसी प्यार और इसी म्यूजिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूजिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखिए. टेक केयर.

0: the latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
1: Time check, exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार आदाब। आज दोपहर 3 बजे केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक लगेगी। फिलहाल की रेट 4.75% है। गए 20 मई को इस दर को 25 अंकों से बढ़ाया गया था। अर्थशास्त्री मनीषा दुकुनी के मुताबिक आज की रेट के बरकरार रखे जाने की संभावना है, क्योंकि आज की बैठक एक नाजुक घड़ी में लगाई जाएगी। मुद्रास्फीति दर बढ़ी है जबकि आर्थिक संभावनाएं कम हो रही हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा परिवारों को सौर किट्स की ओनरशिप प्रदान की जा रही है, जिनके छत पर सौर पैनल्स हैं और जिनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में विकास और योगदान के संदर्भ में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। जनउपयोग एवं ऊर्जा मंत्री पत्रिकासिया वादन भी उपस्थित। 27 अगस्त की पूर्णिमा और एक चंद्र ग्रहण के साथ होगी। ये ग्रहण 28 अगस्त तक होगा। इस पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाई जाएगी, लेकिन ग्रहण की वजह से इस साल बहुत सी अनिश्चितताएं हैं। इसलिए मुर्शिद सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने एक प्रेस सम्मेलन के दौरान स्पष्टीकरण दिए। आचार्य परिषद से सलाह मशवरा किया गया और विभिन्न हिंदू पंचांगों को भी मद्देनजर रखा गया। विदेश में जिम्बाब्वे में करीबा झील में एक नाव के उलट जाने से कम 15 लोगों की डूबकर मौत हुई। पुलिस के मुताबिक कश्ती पर 90 मुसाफिर थे और 5 क्रू मेंबरान जब ये घटना पेश आई। एक पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत टिकट बिक्री के मुकाबले ज्यादा लोग कश्ती पर थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन में 39 साल के 39 years old श्री रविसेन चिलम्ब्रम जो अरुणन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और CWA के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज साढ़े तीन बजे इनके घर विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। CB रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 years old श्रीमती नारायणी और नाचेलम जो पैदाशी नाम नारायण, जो मामा राजीव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे के बेटे राजीव ओना चिलम के घर CB रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
3: NBC Radio.TV. Bombay Talkies.
4: Radio Musty.
0: Radio Musty.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So, well, ladies and gentlemen, 2:06 हो चुके हैं. It's 12th of August and बुधवार का दिन, यानी कि पहुंच चुके हैं मिड वीक तक. And I do hope you are enjoying your Wednesday afternoon हमारे साथ on RM2 Radio Musti. मैं हूं परी आपके साथ. I do hope that you are having a nice time. वैसे mix of music आपके लिए चलता रहता है morning से लेकर रात तक. ऐसे कुछ गाने जिन्हें सुनते हुए आपका दिन भी आप beautifully pass कर सकते हैं. अभी के लिए तो I know हमारे बहुत सारे दोस्त काम में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ. आपकी इस आफ्टरनून में लगाने आए हैं थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का, यानी कि बी टाउन की अपडेट्स और साथ में कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनते हुए आप अपनी आफ्टरनून को एंजॉय कर सकते हैं. सो रिलैक्स करें, चिलैक्स करें हमारे साथ. एंड इफ यू हैव समथिंग टू से, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, या फिर किसी के लिए कोई स्पेशल सा संदेश, यानी कि एक स्वीट सा मैसेज, तो व्हाई नॉट, रहेगा आपका इंतजार ऑन 5499-1294. दैट्स अ मैजिकल नंबर. इसी नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल का हाल और ऑफ कोर्स हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए दोस्तों, यहाँ पर बातें जो हैं वो तो जारी रहेंगी, बी टाउन की खबरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फॉर नाउ वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो कर रहे हैं आपका इंतजार. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स जो कनेक्टेड है हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंजॉय योर आफ्टरनून एंड नॉट टू फॉरगेट, दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों आपके साथ हम कनेक्टेड हैं और म्यूज़िक आप तक हम पहुंचाते रहते हैं मॉर्निंग हो या नाइट, कोशिश यही रहती है दैट आप जो है वो आप हमारे म्यूज़िक के साथ ग्रो कर सके.

चिल कर सके, रिलैक्स कर सके एंड ऑफ कोर्स एट टाइम्स थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील कर सके. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक समझावा. ये था आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. समझाना तो बस यही है दैट यू आर एट द राइट प्लेस. ये है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती. फॉर नाउ मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम जहां पर हम आपसे पूछेंगे एक सिंपल सा सवाल और अगर आप देते हैं हमारा सही जवाब और बनते हैं हमारे लक के विनर, आप जीत सकते हैं कुछ शानदार इनाम. सो लेट मी टेल यू दैट खेले आप एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ एंड स्टैंड अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जेंस लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. सो इसे जीतने के लिए सिंपल सा सवाल. एक फिल्म आई थी दैट वॉज अ ब्लॉक बस्टर फिल्म. इस फिल्म में नजर आए थे विकी कौशल इन अ हिस्टोरिकल वॉरियर अवतार. ये कौन सी फिल्म है और आपके सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499 1294. बात हो रही है विकी कौशल की. एक हिस्टोरिकल वॉरियर अवतार में वो नजर आए थे और ये कौन सी फिल्म है आपके सही जवाब 5499 1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ. इट्स 5499 1294. इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं अपने सही जवाब अपने पूरे नाम और पते के साथ. सो वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स. क्या पता आप बन जाएं हमारे लकी विनर. सो आप भी अपना लक ट्राई करें. ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए सो यहाँ पर सवाल तो हमने पूछ लिया एंड खूबसूरत गानों का कारवां कंटिन्यूज ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों वक्त कम ही मिलता है जहाँ पर आप किसी अपने को ये कह सके कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है. लेकिन लाइक वी से जहाँ पर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं वहाँ पर म्यूजिक स्पीक्स. सो दिस वन गोज आउट फॉर ईच एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड फॉर ऑल योर नियर एंड डियर वंस जिन्हें शायद आप भी ये कहना चाहते हैं. तो बस हमारा साथ दीजिए, गानों को एंजॉय करिए और अभी के लिए डू सेंड मी योर राइट आंसर्स ऑन 5499 1294. तब तक के लिए एंजॉय दिस गाना. लेकर आएंगे आपका सही जवाब थोड़ी ही देर में.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, इट्स 226 एंड यहाँ पर आपसे हमने पूछा था एक सवाल, वो कौन सी फिल्म है जहाँ पर नजर आए थे विकी कौशल और उन्होंने एक हिस्टोरिकल वॉरियर का अवतार प्ले किया था. एंड द राइट आंसर इज छावा, द ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा. दैट्स द राइट आंसर. यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद मिसेज हेमा वेणुगोपाल, आप है अफलाक से और आपने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब और बनती है लकी विनर. तो चलिए, यहाँ पर हेमा जी आप बन गई हैं लकी विनर. खेला आपने एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी. आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट एसबीआई सीसी पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक आप एंजॉय कर सकते हैं बहुत कुछ. सो होने वाला है वहां पर इंटरनेशनल होम शॉपिंग, इंटरनेशनल शोज, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज और साथ ही फैशन शोज, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, कैनमा का शो होगा, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड अ फूड फेस्टिवल एज वेल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. और आप बन गई हैं हमारी लकी विनर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे आपको, जीतने के मौके और भी मिलेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ, प्यारे गानों के साथ हम भी बने हुए हैं आपके म्यूजिकल पार्टनर.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: to Radio Musti. शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
1: Bombay Talkies. Radio Musti.
0: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So that was in the beautiful voices of Sasha Tirupati and Prajakta Shukre. ये गाना था आप सभी के लिए Evergreen song मन क्यों बहकारे बहगा उत्सव फिल्म का ये गाना लेकिन in a different अंदाज़

टू यू एंड कभी कभार मूड ठीक नहीं होता है लेकिन गानों को सुनते ही लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है. यही तो हम हमेशा कहते हैं दैट म्यूजिक इज अ थेरेपी. और म्यूजिक के साथ मूड चाहे कैसा भी क्यों ना हो लेकिन कभी कभार लगता है कि बस अच्छे गाने चलते जाएं एंड फिर सब कुछ ठीक ठाक लगने ही लगता है. सो ऑलवेज कीप लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर हमारी कोशिश यही होती है कि म्यूजिक के साथ हम आपके चेहरे की जो स्माइल है उसे हमेशा बनाए रखे. सो फॉर नाउ प्रीतम जी हमारा साथ दे रहे हैं आप. गाना होगा फॉर ऑल बिटू परिवार एंड फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा. साथ ही यहाँ पर चित्रा जी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं लवली परी. थैंक यू चित्रा जी हमारा साथ दे रही हैं आप और इस वक्त SMPS से हमारे साथ कनेक्टेड हैं. काम खत्म और घर पहुंच गई हैं अपनी चाय की चुस्कियों के साथ. यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स. सो अगला गाना होगा आपके नाम. साथ देने के लिए शुक्रिया. रेडियो मस्ती को चुनने के लिए शुक्रिया. यहाँ पर प्रकाश जी आप भी आए हैं अपना प्यार लेकर और कहते हैं सभी कलीग्स इस वक्त कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ. आप काम कर रहे हैं एट पोर्ट लुइस और काम करते हुए सभी कलीग्स ने ट्यून इन किया है रेडियो मस्ती के साथ. सो काम भी और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी. सो आई गेस दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तभी तो वक्त कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता और काम काज होता रहता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है. सो थैंक यू, साथ देते रहिए. अभी के लिए जो अगला गाना है होगा फॉर योर कलीग्स एंड फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं. दैट्स इन द वॉइसेस ऑफ गुरु रंधावा एंड हीर. आजकल ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा है. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू. और थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर फॉर सम शॉपिंग टाइम. सो आप हमारा साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. स्टूडियो हो या स्टूडियो के बाहर आप तक पहुंचता है 100% एंटरटेनमेंट. एंड वेल अगर आप कनेक्टेड है हमारे साथ तो बस ऐसे ही प्यारे प्यारे गाने आपके लिए. फॉर एवरीवन अगर आप काम पर अटके हुए हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप छुट्टी लेकर शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं या फिर घर पर वर्क फ्रॉम होम लेकर चिल करते हुए काम को कर रहे हैं, जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है दैट्स योर RM2 रेडियो मस्ती. एंड फॉर नाउ मैं हूं परी आपके साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. लेकर देश विदेश की खबरें स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. कम बारिश की वजह से कृषि उद्योग में पानी की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू किए गए. सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सिर्फ सब्जी की खेती करने वाले खेतीहरों को अधिकार हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार सिंचाई करने के लिए उनके खेतों में जल आपूर्ति की जा रही है.

0: एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फागे के अफसर जल संसाधन के संचालन और खेतीहरों की मदद करने के लिए तैनात हैं। मॉरिशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरिशस दौरे का ये मकसद है। पिछली 31 मई को वे इस पद के लिए नियुक्त हुए और मॉरिशस उनका पहला विदेशी मिशन है। मॉरिशस और सेशल के रिश्ते एक नए चरण में प्रवेश कर गए हैं। मॉरिशस में सेशल के पहले उच्चायुक्त निकोला जेरोप्रिया ने आज स्थित हाउस रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र पेश किया। दोनों देश विभिन्न सेक्टरों में अपने संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य रखते हैं, खासतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में। ड्रग ट्रैफिकिंग तथा हिंद महासागर में अवैध ट्रैफिकिंग के खिलाफ संघर्ष करने पर खास जोर दिया जाएगा। विदेश में यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की, तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया। अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो ये तादाद सन 2030 तक करीब 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यूनेस्को का कहना है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता मुल्क है जहां लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और आला तालीम पाने का हक नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। नंबर 50 नंबर 50 एवेन्यू डुआइयन कैथ्रोबोन में 62 साल के 62 years old श्री सतीश तोमू, जो सतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर नंबर 50 नंबर 50 एवेन्यू डुआइयन कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन में 39 साल के 39 years old श्री रविसन चिदंबरम, जो आरुनन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और CWA के कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े तीन बजे इनके घर विक्टोरिया रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। प्लान मान्यों में 72 साल के 72 years old श्री त्रिलोक सिंह रामभरत, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी साबिता देवी रामभरत के घर प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। सिवराज रोड नवीन मिथ्रियोले में 32 साल के 32 years old श्री विवेक रामसरन, जो आवी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी माँ प्रीति रामसरन के घर सिवराज रोड नवीन मिथ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिथ्रियोले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM2 Radio Musti.
1: तो चलिए दोस्तों 3:05 हो चुके हैं एंड लाइक वी प्रॉमिस्ड हमने कहा था कि लेकर चलेंगे आपको स्टूडियो के बाहर जहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे शॉपिंग का मजा. सो लेकर चलते हैं आपको एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो आज से शुरू हो चुका है एट SBICCPI एंड वहां से और भी ज्यादा अपडेट्स हम तक पहुंचाने वी हैव गिनीशा. सो लेट्स टॉक टू हर. हेलो.
2: Very good afternoon to you, Pari. Good afternoon to everyone. आपने तो सुबह सुबह सबको शॉपिंग करा दिया. अब मेरी बारी है परी.
1: Exactly.
2: मैं खुद आ गई हूँ. Actually, I was listening to you in the morning on radio. तो मैंने कहा कि नहीं मुझे भी जाना है तो मैं आ ही गई. So guys, जैसे कि परी ने बोला, it's at the Utsav Mauritius Shopping Carnival happening right now at SBICCPI. आज से शुरू हो चुके हैं. It's going to end till the 16th of August. सुबह खुल जाती है 10 बजे और रात के 9 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए. यानी कि यू can enjoy late night shopping.

अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, सो आई गेस दिस इज द राइट प्लेस यू कैन कम, जहां पे अगर आपको शॉपिंग करना है, अगर आप शायद हो सकते हैं शादी करने वाले हो बहुत जल्द, या घर का रेनोवेशन कर रहे हो, या किसी को गिफ्ट देना है, बीवी का दिल खुश करना है, तो आप बस यहां पे आ जाइए, क्योंकि यहां पे देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स अराउंड द वर्ल्ड जो यहां पे आए हैं अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने के लिए. जैसे कि यू कैन फाइंड फर्नीचर, होम फर्निशिंग आइटम्स, मैट्रेसेस, कर्टेन्स, लाइट्स एंड इवन वाटर प्योरीफायर, किचन यूटेंसिल्स. मैंने देखा है कि टिश्यूज, हर तरीके के टिश्यूज होते हैं. एंड वेल यू कैन गेट पूजा का सामान, बैग्स हैं, मसाज चेयर हैं, अभी तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है शॉपिंग करने के लिए. सो जस्ट सिट यून एंड स्टे कनेक्टेड हमारे साथ ऑन ऑरेंज 2 रेडियो मस्ती. थोड़ी देर में विल बी गिविंग यू मोर डिटेल्स.

0: Well, guys, check your time. 3:15 हो चुके हैं. Thank you so much, Jeeva, for choosing us as your radio partner and you're listening to Ignisha right now. और आज हम स्टूडियो के बाहर हैं. जी हाँ दोस्तों, वैसे जितने भी हमारे शॉपिंग लवर्स हैं, आपको इसी चीज़ का इंतजार था कि आप यहाँ पे आएँ और अपना शॉपिंग करें. Yes, we are live from SVICC Art Park. जी हाँ, ये है शॉपिंग का जो बड़ा सा एक्सपीरियंस आप करना चाहोगे. सो उत्सव मनुष्य शॉपिंग कार्निवल इट्स हैपनिंग. जी हाँ, आज ओपनिंग हो चुकी है. यू कैन डू योर शॉपिंग टिल द 16th of August. तो बिल्कुल जहाँ शॉपिंग मिलेगी आपको, वैरायटी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगे. लेकिन यहाँ पे इतने सारे आइटम्स हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ. बताने के लिए ऑफकोर्स वी डू हैव अनुपम जैन हमारे साथ. गुड आफ्टरनून जी.
1: गुड आफ्टरनून गणेशा, हाउ आर यू?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए. आप तो बड़े खुश लग रहे हैं आज.
1: मैं बहुत खुश हूँ यार. एक तो आप लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आज इट्स अ फर्स्ट डे फॉर द उत्सव, द इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये इवेंट जो है भारत और मॉरिशस के बीच के संबंधों का एक बहुत ही अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल

0: Animal is started in 2023 when we were celebrating 75 years of togetherness for India-Mauritius diplomatic relations. तो उस समय ये शुरू हुआ था और आज हम इसका second edition कर रहे हैं. तो इट्स बहुत ही मज़ा आ रहा है. आज सुबह इसका opening हुआ 11 बजे और आप देख सकते हैं इट्स अ गुड फ्लो और ड्यूरिंग द वीक डेज ऑल्सो. एंड मैं देख रहा हूँ कि लोग फैमिली के साथ मिलके एंजॉय कर रहे हैं. दैट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ ऑलवेज फॉर आर इवेंट्स.
1: एंड ऑफ कोर्स आजकल तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं ना बच्चों के, इसीलिए
0: यस छुट्टियाँ भी चल रही हैं. और इसीलिए तो मैं यही बताना चाहूँगा रेडियो मस्ती पे कि जो जो भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, दिस इवेंट इज बीन ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स और मैनेज बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC. सबसे मेन चीज़ ये कि 12 अगस्त से 16 अगस्त ये जो इवेंट चलेगा इसके अंदर शॉपिंग तो है ही. वी हैव मोर देन 150 कंपनीज अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट कर रही हैं. इंडिया से भी है, मॉरिशस से तो है ही ऑफकोर्स, उसके साथ रियूनियन और ताइवान से भी हमारे पास है, राइट. तो ये सभी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे. आप इनका इंटरव्यू भी लेंगे तो आपको पता पड़ेगा उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी. पर मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक घर की बात है, हमारी एग्रीकल्चर की बात है, हमें गार्डन की बात है, लैंडस्केप की है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, CCTV हो गया, चाय, यू नो, हर्बल्स रिलेटेड मैं देख रहा हूँ. जस्ट हमारे सामने एक बहुत बड़ी कंपनी है ओलिशिया. दे आर वेरी बिग इन टू द ओलिव टी. ओलिव टी, दे आर द वर्ल्ड्स यूनिक ओलिव टी. ओके, दे आर फ्रॉम राजस्थान. दे स्पेशली ग्रो ओलिव टी और नाउ इट इज अवेलेबल इन मॉरिशस ऑल्सो थ्रू द ऑर्गेनिक ओरा लाइफ. जैसे एबलक्स है यहाँ पे लाइटिंग के लिए, वैसे राजस्थान है यहाँ पे फर्नीचर के लिए. ऐसे बहुत सारी आपको कंपनीज मिलने वाली हैं. पर एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: आई वांटेड टू कम ऑन दैट क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शोज क्या क्या होने वाला है वहाँ पे.
0: बिल्कुल, बहुत सारे शोज हैं और सुबह वी ऑलरेडी हैड सम वंडरफुल शो, बट आज शाम इवनिंग से 6 PM से लेके 6 to 7:30 डेली वी हैव अ शो. आफ्टरनून में भी 12 से लेके 2 बजे तक शो हैं डेली. और आज शाम को जो इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट सिंगर हैं परिणय जैन, वो परफॉर्म करने वाले हैं लाइव और साथ में तनुश्री म्यूजिक इंस्टीट्यूट के कलाकार होंगे. कल दिन में इंटरनेशनल मैजिशियन आ रहे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है, मैजिशियन क्रिश. ही इज परफॉर्मिंग अलॉन्ग विद परिणय, आर सिंगर फ्रॉम इंडिया, एंड साथ ही साथ डांस ग्रुप्स होंगे. टुमारो इवनिंग वी हैव सम स्पेशल इवनिंग शोज विद सम अदर डांस ग्रुप्स. और इस तरीके से करके डेली कभी फैशन शो है, कभी टाइमलेस ब्यूटी बॉलीवुड है, कभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15th of August को, तो उस दिन के लिए कुछ स्पेशल शो है. और लास्ट डे इट्स अ ग्रैंड फिनाले फॉर द मॉरिशस डांस आइडल सीजन 4.
1: धर्मेश इज कमिंग,
0: सो एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड फॉर हिम टू सी. तो मतलब ओवरऑल आप देखें तो मैजिक शो भी है, फैशन शो भी है, बॉलीवुड के सिंगर्स भी हमारे साथ होंगे. थोड़ी देर में परिणय विल जॉइन यू फॉर सम लाइव हेयर, बट मजा आएगा आपको.
1: बिल्कुल, यहाँ जब मैंने एंट्री मारी ना तो मैं इतना मतलब ढूंढ रही थी कि हमारा स्टॉल कहाँ पे है. I was so keen to know कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं.
0: सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस बार जहाँ MBC हम लोग बैठे हैं, सो आप पूरा इस बार पूरा विजिट करते हुए आएगा तो आपको एक विजन आएगा कि यार हाँ एग्जीबिशन में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं. सो इट विल बी गोइंग टू बी रियली नाइस.
1: एक और चीज, हाँ, खाने की बात.
0: ओ यस, सो इट्स अ बिग फूड वेंचर फॉर अस ऑलवेज. हम लोग लगभग 350-400 लोगों का बैठने का प्रॉपर फूड कोर्ट है जहाँ पे आपको इंडियन, चाइनीज, मॉरिशन, इटालियन, पेस्ट्रीज, पास्ता, मिठाई भी है, केक्स भी हैं, यू नो, पॉपकॉर्न कैंडीज भी हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला एक ही छत के नीचे. बहुत ही और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने अपने स्टॉल्स को डेकोरेट करके आप सभी के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विसेज, अच्छे फूड आइटम्स भी लेके आए हैं. और किड जोन भी है, पता है आपको, और बहुत ही कमाल का है. इट्स अ रियूनियन कंपनी हु इज हेयर एंड जो बच्चों के लिए स्पेशल तरीके की स्लाइड्स ये सब प्रमोट कर रही हैं. तो बच्चे आ सकते हैं, वैसे 12 साल तक के बच्चों की तो एंट्री फ्री है वैसे भी, और आप किड जोन के अंदर भी, तो बच्चे किड जोन में एंजॉय कर सकते हैं, बड़े लोग जो है शॉपिंग कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, एंड एक्चुअली इट्स नॉट न्यू टू मॉरिशस जो हो रहा है. एक्चुअली यहाँ पे एवरीबडी नोज कि व्हेनेवर वी आर कमिंग टू SBICC फॉर योर शॉपिंग कार्निवल, इट इज समथिंग बिग हैपनिंग और एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. नो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड हम लोग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद RM2, RM1 एंड ऑफ कोर्स MBC टू कोलैबोरेट दिस. और बहुत सारा कुछ होगा यहाँ पे और मजा आएगा. ट्रांसपोर्ट, यस, ऑफ कोर्स वी हैव द फ्री बस सर्विसेज फ्रॉम विक्टोरिया बस स्टेशन.
1: ओके,
0: सुबह 10 बजे शुरू होती है वो और शाम को 7 बजे तक के लिए है. तो जो लोग बस से सफर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं बस में.
1: सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्लेस टू डू योर शॉपिंग, दिस इज द प्लेस.

0: कि आपको यहाँ पे आना है एंड ऑफ कोर्स अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग, खाना पीना, एंटरटेनमेंट शोज, और वो भी इतने बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेगा. सो जस्ट जॉइन अस एंड स्टे ट्यून ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती फॉर मोर डिटेल्स. अभी थोड़ी देर बाद हम लेके आएंगे वन बाय वन एग्जिबिटर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स के बारे में व्हाट दे आर एग्जिबिटिंग, एंड आई कैन अश्योर यू गाइस यू आर गेटिंग द बेस्ट प्राइस हियर.
1: RM2 Radio Musti.

0: खूबसूरत गानों के साथ साथ जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो है आ गया है एट SVICC अटपा, जहां शॉपिंग मिलेगी, वैरायटी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट बेस्ट प्राइसेस में यू कैन एंजॉय योर शॉपिंग। यहां पे तो बैठे बैठे हमें चाय परोसा जा रहा है, थैंक यू सो मच। एंड यस, आई एम गोइंग टू टेस्ट ये जो ऑलिव टी उन्होंने बात की है, तो अभी मैं टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊँगी थोड़ी देर में कितना अच्छा है। सो मॉरिशस के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एग्जिबिटर्स जो हैं, एक ही जगह लेकर आए हैं अमेजिंग प्रोडक्ट्स और एक्साइटिंग ऑफर्स आप सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे RM2 लिसनर्स हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं ब्यूटीफुल फर्नीचर, होम फर्निशिंग आइटम्स, कंफर्टेबल मैट्रेसेस, स्टाइलिश कर्टेंस, प्रीमियम बेडशीट्स, वाटर प्यूरिफायर्स, किचन अप्लायंसेस, क्वालिटी यूटेंसिल्स, ये सब आपको मिलेगा अंडर वन रूफ। लेकिन अगर हम चाय की बात ही कर रहे हैं, सो अभी के लिए ओलिशिया केयर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं, वी हैव अ ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ। गुड आफ्टरनून जी, नमस्ते, आपका नाम?
1: नमस्ते, आई एम डॉक्टर सारिका।
0: ओह, शी इज अ डॉक्टर। डॉक्टर सारिका, आपका स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती। ये जो आपने मुझे चाय दी है पीने के लिए, आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाइए हमारे लिसनर्स को।
1: जी बिल्कुल। सो दिस इज ऑलिव टी, ये ऑलिव के पत्तों से बनाई गई चाय है, इसमें कैफीन बिल्कुल भी नहीं है और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी। कड़वी बिल्कुल नहीं है लेकिन हेल्दी है, और इसमें क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे के सारे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स के इकट्ठा होने के कारण होते हैं। सो जब आप ऑलिव टी पीते हैं तब आपके ये टॉक्सिन्स पूरी तरह से आपकी बॉडी से चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है बॉडी का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो सालों से आपको परेशान कर रही हैं वो इससे क्योर होती हैं, और साथ ही साथ इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्लीप बिकॉज इट डज नॉट हैव कैफीन।
0: आई कैन सी कि ये वाकई में बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैंने तो चखा है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, कड़वा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी गुड, यू फील अ गुड टेस्ट बड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। सो अभी अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं शॉपिंग फेस्टिवल में, सो मैं तो इतना कहूँगी, वन एवर यू एंटर द शॉपिंग फेस्टिवल मेन दरवाजे से यू कम स्ट्रेट टू द एंड, जहाँ पे MBC का स्टॉल, RM2 रेडियो मस्ती का स्टॉल लगा हुआ है, यू हैव टू कम हियर एंड वी आर जस्ट नेबर्स, आप हमारे बगल में ही हैं। तो वैसे यू आर हियर for the first time in Mauritius?
1: No, this is for the second time.
0: Okay, aur Mauritius kaisa lag raha hai?
1: Are bahut sundar hai Mauritius, but very beautiful and I love the people here because they are so cute, itne pyare hain, itna meetha bolte hain, and the best part ki hum hindi sunte hain yahan pe.
0: Exactly, and you can communicate very easily. So ye jitne bhi hamare listeners aa de rahe hain, agar aapko bhi detox karna hai apne body ko, you want to sleep better and have a better health, so why not aap hame join kar sakte hain yahan pe. Yes, this is Olisha K. जयपुर राजस्थान से, द स्टॉल इज जस्ट नेक्स्ट टू द स्टॉल ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। तो बाकी जो हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपको फ्री बस शटल मिल रहे हैं फ्रॉम विक्टोरिया जो बस स्टैंड है पोर्टली से, आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने फैमिली को लेकर, बच्चों के लिए किड जोन है, एंड दे हैव अ फूड फेस्टिवल हैपनिंग राइट नाउ, हर तरीके के खाने

0: So please come and find us. We will also be having free tasting for everyone who's coming. This will start in the next half an hour, and it will be on till Sunday. And also, one new product that I have brought today, we also have carom boards.
1: Okay.
0: Carom boards, very good at very affordable prices.
1: बिल्कुल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इधर उधर वो भागेंगे उधर पता नहीं क्या क्या करेंगे तो बच्चों के लिए आप एक नया चीज ले सकते हो कैरम बोर्ड्स व्हिच इज वेरी गुड मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही
0: एब्सोल्युटली तो नॉट ओनली बच्चों बट आल्सो एडल्ट्स आल्सो
1: साथ में मिलके फैमिली यू कैन एंजॉय योर गुड टाइम टुगेदर ट्रस्ट मी इवन व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू प्ले कैरम विद माय डैड एंड आई स्टिल लव प्लेइंग कैरम इट्स समथिंग दैट यू कैरी विद यू फॉर द होल लाइफ
0: एब्सोल्युटली एंड आल्सो अवे फ्रॉम द फोन इट्स आल्सो स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द पर्सन फेस टू फेस एंड आल्सो वन न्यू प्रोडक्ट दैट आई हैव इज आई हैव अ वेरी स्पेशल नाल अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सो आई हैव फोर पीसेस ऑफ अ नाल which is the best naal in Mauritius and where you're using this fair to sell everything.
1: Exactly, and to introduce to you all these lovely things. So guys, मैं तो बोलती हूँ देरी किस बात की, आप बस जल्दी से आ जाइए. वैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. इट्स सेफ एंड आई नो बहुत सारे जगहों पे बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है. पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, यू कैन जस्ट कम इन एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी स्टॉल. नए नए काइंड के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. और जैसे कि इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योगा अगर आप सीखना चाहोगे सो वैसे इट्स वेरी इजी, घर पे भी आप अपना योगा प्रैक्टिस कर सकते हो. सो व्हाई नॉट यू शुड गेट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप योर योगा मैट.
0: एब्सोल्युटली
1: एग्जैक्टली. तो चलिए जी, वी आर वेटिंग फॉर यू एंड यू आर लिसनिंग टू आवर एंटू रेडियो मस्ती. एंड लेडीज, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको और भी चीज़ें चाहिए घर के लिए, जैसे कुशन कवर्स हैं, बेड शीट्स हैं, किचन के लिए यूटेंसिल्स चाहिए, दिस इज द प्लेस टू बी.
0: एंड गिनिशा, विद योर ब्लेसिंग्स आई वुड लाइक जस्ट टू से big hello to all my former colleagues from
1: MBC.
0: And from MBC, I miss you very much, but it will always be home anyways.
1: Once a family, always a family, bro.
0: Always a family.
1: बिल्कुल. तो चलिए, here Roshan is waiting for you guys. आप family को लेकर आइए, friends को लेकर आइए, and pass on the message to all those जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है radio कि यहाँ पे ये Mauritius का सबसे बड़ा carnival, shopping carnival चल रहा है. So special prices आपको मिलेंगे. उत्सव Mauritius का shopping destination, जहाँ हर shopping trip बन सकती है एक special experience at very affordable prices at SVICC. Bye. Thank you, Roshan.
0: Thank you.

0: Radio Masti.
1: तो चलिए जी, टाइम तो बीता चला जा रहा है, आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती, विच वी आर एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम SVICC अटपाई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आपके घर में फर्नीचर चेंज करना है, बेडरूम को नया लुक देना है, कर्टेंस और बेड जो बेडशीट्स हैं वो आपको चेंज करना है, नए नए डिजाइन

0: आपके लिए परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है. एंड द वेन्यू इज SVICC अटपाई. यहाँ आपको मिल रहे हैं फर्नीचर और होम फर्निशिंग्स, कंफर्टेबल मैट्रेसेस, ब्यूटीफुल कर्टेन्स. आई कैन सी सो मेनी बेडशीट्स एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. और किचन लवर्स के लिए मैंने देखा है स्पेशल शॉपिंग आप कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं एवरी किचन अप्लायंसेस और यूटेंसिल्स. एंड एवरी डे कुकिंग को बनाइए ईजियर और मोर कन्वीनियंट. जी हाँ दोस्तों, हेल्थ और लाइफ स्टाइल के लिए भी वी डू हैव सम वाटर प्यूरिफायर्स. एंड रिलैक्सेशन के लिए मसाज चेयर है, यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं. यहाँ पे एक ट्रायल सेशन भी चल रहे हैं जहाँ पे आप आएंगे अपने फैमिली के साथ. यू कैन ट्राई इट, अगर अच्छा लगे सो वाई नॉट यू कैन बाय इट. और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे यू कैन गेट फैसिलिटी ऑफ पेमेंट्स एज वेल. तो अभी के लिए आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ. व्हाट्स योर नेम?
1: Vanessa.
0: Vanessa, do you speak English or Hindi?
1: English.
0: अच्छा, so Vanessa, you tell me, आप यहाँ पे किस चीज के, किस प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर रहे हैं?
1: So I do organic skin care, hair care products. I also do face yoga, acupressure.
0: यानी कि लोगों को और भी खूबसूरत बनाना है.
1: Exactly, that's my aim. Like okay. When I was studying, I studied in China. I studied medicine in China. So when I was studying, my dad got sick. That's the backstory how I started this. My dad got sick, so I was having a lot of skincare issues like hair fall, acne, and my face was a disaster.
0: Okay. So, you told me, exactly. I have to start fixing myself first. Okay.
1: So, I mean, I couldn't even look at myself in the mirror. I was like a skeleton.
0: And from there you kickstarted it.
1: Exactly.
0: So tell me more about the products that you are selling.
1: So I started with an acne kit.
0: Okay.
1: And from there I did the hair oil. I not only have acne kit. The acne kit has a face exfoliator, you have a mask and a serum. You have the hair oil. I have treatment for melasma.
0: Okay.
1: I have treatment for eczema, psoriasis.
0: Okay. So when you're talking about your treatment, so how long does it take to have a treatment of skin care?
1: It depends. Okay. So I cannot tell you like exactly for one person to another person.
0: It depends on the skin.
1: That will vary. The condition varies. But you will definitely see a difference within 2 days.
0: Okay. And while talking about hair oil, it's about the for hair fall, growth.
1: Hair fall, like I believe, like our skin is made up in a way that you don't have to keep on layering products. Okay. Our hair follicles is in that way. So my oil, I have the toner as well. It stimulates the hair follicles, so your hair follicles strengthen, you get hair growth, anti-hair loss. At the same time, if you're having any kind of scalp issues, it fixes that. So one oil fixes everything.
0: So are you based in Mauritius exactly?
1: Yes.
0: Where?
1: Grandbois.
0: So okay, give details about about your shop or from where you have a salon.
1: I don't have a shop.
0: Yeah,
1: but I do skin consultation.
0: Okay.
1: I am specialized in Chinese traditional medicine.
0: Okay, so it's all about natural. Okay,
1: so I am a Chinese medicine doctor.
0: Okay, so I guess you won't mind sharing your contact number on air.
1: No, I don't mind.
0: So do it right now.
1: So you can contact me via WhatsApp or on Facebook. You can check my page, which is Spring Love Gallo. It's a derivation from my name itself.
0: Okay. And the phone number?
1: And the phone number is 589-4100.
0: 589-4100. Okay. तो चलिए जी, आपने तो सुन लिया, हमारे ब्यूटीफुल लेडी ने आपको बताया कि अगर और भी खूबसूरत आपको बनना है सो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करना है. 5894100 5894100. एंड ऑफ कोर्स अगर हेयर फॉल आपको परेशान हो गया कि बाल गिर रहे हैं, जल रहे हैं, आपको स्किन को और भी खूबसूरत बनाना है सो वाई नॉट यू कैन कॉन्टैक्ट दिस लेडी. तो चलिए जी दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे लगता है इट्स टाइम फॉर द फ्लैश न्यूज़. एंड थोड़ी देर बाद विल बी बैक विद सम मोर डिटेल्स अबाउट all the products exhibiting

0: मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
0: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
0: 96.4
1: सेंटर
0: 99.4
2: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check exactly 4 PM. देश विदेश की खबरों को लेकर स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
4: नमस्कार आदाब. की रेट को 4.75% तक बरकरार रखा गया है. केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया और आज की ये बैठक एक नाजुक दौर में की गई क्योंकि वृद्धि के खतरे हैं. मध्य पूर्व में तनाव की वजह से ऊर्जा क्षेत्र पर भी असर है. इस साल बैंक ऑफ मॉरिशस आर्थिक वृद्धि के लिए 2.8% का अनुमान लगा रहा है. इलेक्ट्रिक स्टेशनों में बायोमास की सप्लाई, संचालन और भंडार के लिए मॉरिशस बायोमास फ्यूल एग्रीगेशन लिमिटेड को कायम किया जाएगा. मकसद ये भी है राष्ट्रीय बायोमास ढांचे के संदर्भ में कार्बन के इस्तेमाल को रोकने की रणनीति का समर्थन करना. पहले बिजली के उत्पादन में वुड चिप्स के इस्तेमाल को 10-15% से बढ़ाया जाएगा. ओमनिकेन ग्रीन ऊर्जा की दिशा में अभी से ही इस परिवर्तन का हिस्सा बन गया है. कम बारिश की वजह से कृषि उद्योग में पानी की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं. सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सिर्फ सब्जी की खेती करने वाले खेतीहरों को अधिकार है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 बार सिंचाई करने के लिए उनके खेतों में जलापूर्ति की जा रही है. फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फागे के अफसर जल संसाधन के संचालन और खेतीहरों की मदद करने के लिए तैनात हैं. विदेश में यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया. अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो ये तादाद सन 2030 तक करीब 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी. यूनेस्को का कहना है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता मुल्क है जहाँ लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और आला तालीम पाने का हक नहीं है. तो अभी के लिए बस इतना ही. थोड़ी देर में शोक समाचार. D1 डाची स्ट्रीट रेजिडेंस शुबेल बुबासे में 53 साल के 53 years old श्री मुर्गाया कोपेन जो नंदा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कर डेर बजे के घर D1 डाची स्ट्रीट रेजिडेंस शुबेल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टू मुराद हॉफ पॉस 1 PM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Radio Musti.
1: RM2.
2: Radio Musti.
3: थैंक यू जी साथ देने के लिए ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती चेकियो टाइम 4:08 हो चुके हैं एंड यस विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम जी सभी लोगों का स्वागत है और बस आपको याद दिला दे दैट वी आर लाइव राइट नाउ एट SVICC एट पाई. जी हाँ दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल इट्स हैपनिंग और इट्स आज सुबह ही खुले हैं यानी कि ओपनिंग आज सुबह हुई है एंड इट्स गोइंग टू एंड टिल द 16th of August जहाँ पे आप लेट नाइट शॉपिंग कर पाएंगे. सुबह खुलेंगे 10 बजे रात के 9 बजे तक. सो वी हैव पार्टिसिपेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो मेनी कंट्रीज से आए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने के लिए एंड जस्ट टू रिमाइंड यू वी हैव अ किड जोन. छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की सो व्हाई नॉट आप यहां पे आ सकते हैं. साथ में आप शॉपिंग करेंगे बच्चों के किड जोन्स को भी एंजॉय करेंगे और वी हैव एन एंटरटेनमेंट सेगमेंट स्पेशली फॉर यू यानी कि बहुत सारे शोज होंगे एंड दे हैव द आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया परिणय जैन जो है इंडियन आइडल का जो एक पार्टिसिपेंट रह चुका है एंड यस बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं. यस यू आर गेटिंग फ्री बस शटल जो है फ्रॉम लागा विक्टोरिया पोर्टली से और आप वहां से ये बस शटल को पकड़ सकते हैं. यू कैन जस्ट कम हियर एग्जैक्टली हियर टू SVICC एट पाई. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर होम फर्निशिंग आइटम्स मैट्रेसेस हैं मिरर्स हैं लाइट्स हैं वाटर प्यूरिफायर किचन यूटेंसिल्स पूजा का सामान भी है और बैग्स हैं मसाज चेयर भी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और पंखाएं भी हैं और मैंने देखा कि बहुत सारे पीलो कवर्स कुशन कवर्स एंड टेबल रग्स टेबल मैट्स एंड इवन यू कैन गेट अ योगा मैट यहाँ पे कैंडल्स भी हैं. तो ये सारे के सारे चीज़ें अंडर वन रूफ. और खाने पीने की बात अगर हम करें वी हैव अ शॉपिंग फूड शॉपिंग फूड फेस्टिवल हैपनिंग राइट नाउ. बहुत सारे टाइप के खाने पीने का सामान है एंड यू कैन जस्ट कम हियर एंड एंजॉय. चाइनीज इंडियन भी हैं एंड चलिए अभी फिलहाल के लिए आप गॉट अ ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ. आपका नाम
4: सुमा.
3: सो सुमा यू आर फ्रॉम
4: इंडिया.
3: आप इंडिया से कहाँ से?
4: साउथ इंडिया.
3: ओके सो टेल मी मोर अबाउट योर प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग यू आर एग्जिबिटिंग हियर.
4: आदिवासी हेयर ऑयल.
3: ओके तभी तो बाल इतने लंबे हैं इतने घने बाल हैं आपके. तो टेल मी अबाउट द ऑयल द प्रोडक्ट एंड कैसे इस्तेमाल करना है और अगर मॉरिशस में यू आर बेस्ड यू हैव अ शॉप जहाँ पे लोकली लोग भी यहाँ खरीद सकते हैं तो टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट.
4: ये तेल है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल. 108 प्रकार की जड़ी बूटी से बनाया गया है. ये तेल लगाने से 3 दिन में आपका हेयर फॉल डैंड्रफ रुकावट होएगा.
3: ओके
4: महीना में रीग्रोथ करेगा.
3: ओके
4: साइड इफेक्ट नहीं होता है. 100% रिजल्ट है मैडम. जेंट्स लेडीज कोई भी लगा इस्तेमाल कर सकते हैं.
3: ओके और जैसे कि मैंने देखा है कि इसका पब्लिसिटी तो हर जगह है और जेंट्स भी आजकल बिलीव करते हैं कि बाल लंबे लंबे रखना है तो व्हाई नॉट. अभी आई हैव जस्ट सीन समवन हियर एक आदमी था जहाँ से गुजर रहा था उसके बाल बहुत ही लंबे और काले भी बहुत थे. सो दैट्स वेरी गुड. और ये जो प्रोडक्ट हैं आप मुझे बताइए आपका स्टॉल नंबर क्या है?
4: 55
3: और स्टॉल का नाम क्या है?
4: श्री कावेरी हर्बल्स आदिवासी हर्बल्स.
3: आदिवासी हर्बल्स. तो चलिए जी मुझे लगता है कि आपने ये पब्लिसिटी बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर. अगर आपको ये ऑयल चाहिए सो दिस इज द राइट प्लेस टू बी जहाँ पे आप आ सकते हैं एंड यू कैन बाय दिस ऑयल फॉर यू एंड ऑफ कोर्स लेडीज के लिए भी. और अगर आपकी बीवी चाहते हैं कि बाल लंबे लंबे आप चाहते हैं कि वो और भी खूबसूरत दिखे और बाल लंबे करे सो व्हाई नॉट. सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे वी आर वेटिंग फॉर यू द एंटायर आरएनटी रेडियो मस्ती टीम. जी हाँ दोस्तों दिस इज द उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल हैपनिंग एट SVICC at Paya.
5: Aaja aaja hai sajan mainu lut le gaya hai. Aaja aaja hai
2: sajan mainu lut le gaya. Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों लाइव फ्रॉम उत्सव मॉरिशस

शॉपिंग फेस्टिवल इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल गिनीशा है वहां पर, लेकिन यहां स्टूडियो में हम एक गेम आपके साथ खेलने वाले हैं। अगर आप भी इस उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जीत सकते हैं 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जैन लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर पाएंगे इस शॉपिंग कार्निवल में। और ये गेम आप तक पहुंचाया जा रहा है MBC और राजस्थान वर्क्स के द्वारा। सो वेल, यहां पर आपके लिए जो सवाल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। शाहरुख खान द फेमस बॉलीवुड एक्टर, उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है और आपको हमें बताना है कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है। इज इट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या फिर ग्रीन चिलीज एंटरटेनमेंट? दो ऑप्शंस है आपके पास। बात हो रही है शाहरुख खान के प्रोडक्शन कंपनी की। इज इट रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या फिर ग्रीन चिलीज एंटरटेनमेंट? योर सही जवाब 1549912945499124 पर इंतजार हो रहा है आपके सही जवाबों का। ऑल द वेरी बेस्ट।

और चलिए यहां पर हमने आपसे पूछा था सवाल कि शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी का क्या नाम है. द राइट आंसर इज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब. लकी ड्रॉ के बाद राजकुमार पुरुषोत्तम आप है ब्रह्मस्थान से बनते हैं लकी विनर. कांग्रेचुलेशंस, आपने जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स अ लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC. 12 अगस्त यानी कि आज से लेकर 16 अगस्त तक RSVICCPI 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. सो आपको आना होगा MBC. फटाफट आ जाइए. बस 16 तारीख तक ये जो फेयर है वो लगा है. सो आप यहाँ पर आकर अपना इनाम कलेक्ट करिए और यू कैन गो एंड एंजॉय. सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक आप वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं. टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आपको आना होगा MBC अपने ID के साथ और सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 PM तक यू कैन कम एट दी MBC. अपने इनाम को लेकर जाइए. और चलिए आपको बता दिए दैट आपको वहाँ पर और भी बहुत कुछ मिलने वाला है. इट्स गोइंग टू बी इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, साथ ही स्पेशल अपियरेंस बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का होने वाला है. कैनवा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल एज वेल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. सो वंस अगेन राजकुमार पुरुषोत्तम जी आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेकर चलते हैं बैक आपको एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल एट SBICCPI. एंजॉय करें और स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: RM2 Radio Masti.
1: वेल गाइस, स्टूडियो टाइम, स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली ना स्टूडियो की नहीं, हमारे मोबाइल की घड़ी में 4:20 हो चुके हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. इट्स मेगनेश ऑन द माइक एंड वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम SVICC अटपाई. जी हाँ दोस्तों, फॉर द उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल. एंड वैसे टाइम को अगर आप देख के सोच रहे हैं कि काफ़ी देरी हो चुकी है, हम यहाँ पे आएंगे तो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे लेट नाइट शॉपिंग आप कर सकते हैं रात के 9 बजे तक. सो डिफरेंट कंट्री से आए हुए पार्टिसिपेंट्स और एग्जिबिटर्स लेकर आए हैं अपने एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स, न्यू चॉइसेस और स्पेशल कार्निवल प्राइसेस पर. तो एक एक शॉप में घूमने की टेंशन छोड़ दीजिए, आइए आप इस उत्सव में एक्सप्लोर कीजिए प्रोडक्ट्स, कंपेयर कीजिए चॉइसेस और अपनी शॉपिंग कंप्लीट आप कर लीजिए अंडर वन रूफ. मॉरिशस इस शॉपिंग कार्निवल को मिस मत करना, क्योंकि ये है स्पेशली आप लोगों के लिए और साल में एक ही बार आता है. सो दिस इज द टाइम. आज ओपनिंग हो चुकी है सुबह और इट्स गोइंग टू एंड टिल द 16th of August एंड सुबह खुल जाती है 10 बजे रात के 9 बजे तक. यू आर गेटिंग योर फ्री बस शटल, जो है यानी कि ट्रांसपोर्ट आपको मिल रही है फ्रॉम पोर्टविस यानी कि लागा विक्टोरिया से. सो यू कैन गेट योर बस देयर एंड डू कम हियर डायरेक्टली. और फूड फेस्टिवल भी हैं और तय करके कि क्विजिन आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं. बच्चों के लिए बर्गर्स, चिप्स एंड चाउमिन, बड़ों के लिए अगर आपको चाहिए इंडियन खाना तो यहाँ पे आपको मिठाइयाँ भी मिलेंगी. तो ये सारे की सारे चीज़ें अंडर वन रूफ. छुट्टियां चल रही है बच्चों की, अरे टेंशन क्यों लेते हो मेरी जान, आप यहां पे आ जाइए क्योंकि वी हैव अ किड जोन फॉर योर किड्स. बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इसे बोलते हैं मैनेज. सो व्हाई नॉट, यू कैन जस्ट कम हियर एंड एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर किड्स. और एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे शोज भी चल रहे हैं. वी हैव आवर इंडियन आइडल पार्टिसिपेंट परिणय जैन, ही इज राइट नाउ एट द कार्निवल वेटिंग फॉर यू. और शाम को 6 बजे एग्जैक्टली उनका शो होने वाला है विद तानुश म्यूजिक एंड डांस इंस्टीट्यूट का जो पार्टिसिपेंट है, दे आर ऑल हियर फॉर अमेजिंग धमाकेदार शो के लिए. और अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं तो बारी बारी से बात करा रहे हैं हमारे एग्जिबिटर्स से जो दुनिया के कोने कोने से आए हुए हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. मॉरिशस में अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स कहाँ पर मिलेंगे, हमें ये चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए एंड एवरीथिंग. सो वाई नॉट, अभी के लिए वी हैव ऋषि लोक लिमिटेड से अभ्यास का जो इट्स एन इंस्टीट्यूट राइट एग्जैक्टली. सो वी हैव हमारे साथ नीरज. सो नीरज जी, आपका स्वागत है नाउ ऑन टू रेडियो मस्ती. गुड आफ्टरनून.
2: Good afternoon, Ganesha ma'am. First of all, I would like to thank you and MBC and also
1: thank you.
2: Rajasthan Works for this carnival, amazing carnival. तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस से आता हूँ.
1: वो क्या है एग्जैक्टली?
2: ये एक NGO है जो कि योग के माध्यम से, हमारे एंशियंट प्रैक्टिसेस के माध्यम से मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग के सोसाइटी के लिए काम करता है. सो जैसे कि मैंने जब मेंटल वेलबींग की बात की तो एक सेक्टर है जो लोग जेल में हैं.
1: Okay.
2: वो भी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं.
1: बिल्कुल.
2: हमारे इंस्ट्रक्टर्स वहाँ भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ हम वहाँ पे काम करते हैं.
1: So in Mauritius you guys are doing that. Oh, that's good.
2: और फिर हम ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं. बहुत सारे स्पेशली एबल्ड स्कूल बच्चे हैं, वहाँ पे भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं और उनको मदद करते हैं योग के माध्यम से, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के माध्यम से.
1: Okay, so when you talk about Abhyas jo institute hai, it's based in Mauritius for since long time?
2: It's been there since 2021, hum 2021 se hain. और अभ्यास की जो फिलॉसफी है वो हमारे मन और शरीर पर है, बॉडी एंड माइंड पर है. इफ़ देर इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड तो हम एक बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं. और अगर
1: आप लोग ये बैलेंस कराते हो.
2: जी बिल्कुल.
1: ओके.
2: तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो अगर हमने आयुर्वेद को छोड़ दिया, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो कभी भी वो बैलेंस नहीं आ सकता है. इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, है ना, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी. तो इसीलिए आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से हम बैलेंस करते हैं. और यहाँ पे हमारा स्टॉल है जहाँ पे हम कुछ ऑयल्स हैं जो कि पेन रिलीफ के लिए हैं, मतलब स्किन डिजीज के लिए है, फिर हमारे बालों के लिए है. इनफैक्ट

0: We have also a pamphlet that we can share. जो हमारे डॉक्टर हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, who is very good at, you know, joint pain और psoriasis. तो वो भी हम
1: a kind of free consultation भी दे रहे हैं यहाँ पर.
0: यहाँ पे consultation नहीं दे रहे हैं. I can share the pamphlet so that somebody can, you know, get in touch with them.
1: Okay. Yes, yes. और वैसे आपने कहा कि आप मॉरिशस में based हो, तो कहाँ पे?
0: हमारे दो सेंटर्स हैं. एक लालोरा सैपिया में है अभ्यास के नाम से, और एक काथरबोन बासे में है अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस के नाम से. हम योगा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं. उसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं. तो कोई भी किसी को भी योगा सीखना हो, और हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऑब्वियसली उनके उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, और वो भी जो पैसा है वो बहुत ही नेक काम में यूज़ होगा उनका. जैसे कि हम अगर ड्रग रिहैबिलिटेशन के काम को कर रहे हैं, हम जेल में जाते हैं, हम स्पेशली एबल्ड स्कूल बच्चों के लिए काम करते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू नो ट्रेन पीपल एंड वी आर ट्रेनिंग देम, एंड फॉर दैट वी नीड अ रेवेन्यू. सो ऋषिलोक इज हेल्पिंग इन दैट वे टू अभ्यास.
1: दैट्स वेरी गुड. सो आर यू गाइस ऑन सोशल मीडिया?
0: Yes, we are with the name again Abhyas. We have our website abhyas.mu, abhyas.mu.
1: और फेसबुक पर
0: जी हम फेसबुक पर भी हैं.
1: Easier to find, I'm just trying to help people.
0: जी जी फेसबुक पर भी हैं हम, और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं.
1: Okay, any contact number?
0: Yes, it's 5274-5555.
1: ओके. सो आई गेस नीरज जी आपने सब कुछ कह दिया जो कहना चाहिए था, एंड आई गेस कि इट्स वेरी क्लियर इन एवरीवन्स माइंड नाउ कि आपको अगर ये चीज़ें चाहिए, वो ये फैसिलिटी चाहिए, यू वुड लव टू लाइक जैसे बोलते हैं ना क्लीप, जैसे हम बोलते हैं क्लीन अप योर माइंड. सो व्हाई नॉट, दिस इज द प्लेस टू बी. हम आपका इंतजार कर रहे हैं ऑन देयर सोल विच इज नंबर
0: 78.
1: ओके, ऋषिलोक.
0: नो इट्स 70. ओके,
1: 70A. Okay, so do come here and meet us. And yes, aapko yaad dilaya de, we are broadcasting live from SVICC at Pai, jahan pe you can enjoy the Utsav Mauritius shopping carnival happening right now. So guys, abhi thodi der baad hum lautenge kisi aur exhibitors ke saath for some more updates and details about the products exhibiting here.

0: Colorim 2
1: Radio Musti. शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग शॉकिंग शॉपिंग की बात कर रही तो माय गॉड मैं यहाँ पे घूम रही हूँ एंड आई एम गेटिंग अमेज्ड. जी हाँ दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे एग्जीबिशंस में लगे हुए हैं. वी आर एट SVICC एट पाई फॉर द मॉरिशस यानी कि उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल के लिए जो आज शुरू हो चुकी है. इट्स गोइंग टू एंड टिल द 16th of August सुबह खुल जाती है 10 बजे और हाँ जी शेयर रात के 9 बजे तक. यू कैन डू द लेट नाइट शॉपिंग. जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आना चाहोगे सो व्हाई नॉट, यू कैन जस्ट जॉइन इन विद योर फैमिली और बच्चों को लेकर अगर आप यहाँ पे आना चाहोगे सो व्हाई नॉट. वी हैव अ किड जोन, वी हैव अ फूड फेस्टिवल हैपनिंग राइट नाउ. और जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और फर्नीचर, होम फर्निशिंग, मैट्रेसेस, कर्टेंस, बेडशीट्स, वाटर प्यूरिफायर्स, किचन अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, बहुत कुछ आपको मिलेगा अंडर वन रूफ.

0: पूजा सामान चाहिए तो वो भी मिलेगा, ऑलिव टी चाहिए, इन्फ्यूजन्स चाहिए आपको वो भी मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड जो ऑयल मसाज हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो क्रीम्स हैं फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारे की सारे चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। सो घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कैंडल्स और बहुत सारे होम फर्निशिंग आइटम्स भी हैं। एवरीडे यूज़ के लिए यू कैन गेट सम लवली बैग्स, आई हैव सीन देयर। और लेडीज़ अगर आपको जैसे साड़ी के साथ कैरी करने के लिए क्लचेस चाहिए, आपको अपने डेली यूज़ के लिए बैग्स चाहिए, सो व्हाई नॉट यू कैन गेट इट विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट कलर्स भी आपको मिलेगा। सो शॉपिंग करके अगर आपको भूख लगी, सो एग्जैक्टली आप सोचते हैं कि कहाँ पे जाएंगे आप खाना खाने के लिए, सो यू कैन गेट अ फूड फेस्टिवल विद अकोमोडेशन ऑफ बोलते हैं कि कम से कम 150-200 लोगों का जो एकोमोडेशन के लिए उन्होंने कुर्सियाँ ये सब का इंतज़ाम किया है। सो यू कैन जस्ट जॉइन इन अगर डिनर के टाइम आप यहाँ पे आ रहे हो, सो यू कैन एन्जॉय सम यम्मी यम्मी फूड फ्रॉम अ लिटिल जेंट्स ऑफ इंडिया। वैसे उत्सव में एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट प्राइस शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पेशल कार्निवल डील्स आपको मिलेंगे। तो जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, सो डेरी की इस बात की फैमिली को बोलो चलो उत्सव पे, फ्रेंड्स को बोलो चलो आते दिस फेस्टिवल, और खुद भी आप आ जाइए और उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो है इट्स हैपनिंग। परी जी का मैसेज आ रहा है बार बार हमें, जी हाँ परी मुझे पता है आप भी आएंगे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। सो यस उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल SVICCR पे कम एंड एन्जॉय। बाद में मत बोलना कि आपने नहीं सुना था, हम बार बार इसलिए आप लोगों को याद दिला रहे हैं ऑन रेडियो ताकि आपको मौका मिले यहाँ पे आने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हैं फ्रॉम लागव विक्टोरिया फ्रॉम पोर्टविस एंटरटेनमेंट के लिए। आज शाम को 6 बजे एग्जैक्टली यू विल बी हैविंग तनुश्री म्यूजिक एंड डांस Institute, they are going to perform, and Parinay Jain, the Indian Idol singer, is here to perform tonight. So, aap bas aa jaiye apno ke saath at SVICC at Pai. Set your day every single day. Best mix of music. Radio must be soon. Tera hai. RM2 Radio Musti.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: So well, ladies and gentlemen, अभी के लिए it's time for your latest sports updates. Studio में आ गए हैं हमारे sports guru अरविंद जी अपने सारी updates के साथ. So hello and good afternoon.
5: Good afternoon आपको. Good afternoon सभी लोगों को. वैसे अभी गिनीशा खाने की बात कर रही थी तो खाने के साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स भी.
4: Exactly.
5: Alright. So UEFA Super Cup serious match is starting आज. ये पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच होगा यूईएफए सुपर कप। जो चैंपियंस लीग जीतता है उसका मुकाबला यूरोपा लीग जीतने वाली टीम से है। पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला, इनकी तैयारियां उतनी अच्छी नहीं रही, कुछ खिलाड़ी अभी हाल ही में आए वर्ल्ड कप में खेलने के बाद, तो काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा मैच हो, पर ऐसे मैच अक्सर पिछले साल की तरह पेनाल्टी पर भी जा सकता है। पेरिस सेंट जर्मेन जो लगातार दूसरी बार के लिए यूईएफए सुपर कप में है, पिछली बार उसने हराया था टोटनहम हॉटस्पर को, जबकि एस्टन विला काफ़ी समय बाद यहां पर आया है और उन्हें एमरी ये कप जीतकर सीजन की शुरुआत अच्छी तरह से करना चाहेगा। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के तहत आज कई मैच हैं। कोपेनहेगन का मुकाबला डिब्रेकेन से है, कोपेनहेगन फर्स्ट लेग में 3-0 से आगे। फिर JKS कैटोविस खेलेगा अपोएल तेल अविव के खिलाफ, अपोएल की टीम 2-0 से आगे। रैपिड वियना अगेंस्ट पाई द टीम 4-0 से रैपिड वियना आगे। क्लब फ्रेंडलीज में आर्सेनल वर्सेस कोमो, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स, डिपोर्टिवो रियल मैड्रिड, यानी फ्रेंडली मैच में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इधर पेरिस एफसी का मुकाबला ओसीएस से होने वाला था, ये कैंसिल हो गया। न्यूकासल यूनाइटेड खेलेगा एवर्टन के खिलाफ। कुछ अन्य मैच, नॉटिंघम फॉरेस्ट बाई 0-4, फिर मलागा फुलहाम नापोली आरिस। सीरियस मैच शुरू क्योंकि और 2 हफ्तों में प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। स्कॉटिश चैलेंज कप के लिए भी एक मैच, हैमिल्टन का मुकाबला सेल्टिक से, ये लीग स्टेज है, सेल्टिक अभी आगे हैं। तो ये सब आज के मैच। कल के मैचों में यूईएफए यूरोपा लीग के मैच खेले जाएंगे। काफी मैच हैं इसमें और ये सेकंड लेग के मैच हैं, इसके बाद ड्रॉ निकाले जाए।

0: आएंगे, पता चलेगा यूरोपा लीग में किसका मुकाबला किससे होगा। जबकि प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने वाला है बहुत जल्द, खिलाड़ियों की आवाजाही जारी है। चेल्सी ने स्पैनिश लेफ्ट बैक पेप शवारिया को रायो वालेकानो से साइन किया, उन्हें 5-year कॉन्ट्रैक्ट। क्रिस्टल पैलेस ने एवान गुसेन को फिर से साइन किया है फ्रॉम एस्टन विला, सीजन लॉन्ग लोन। और मैनचेस्टर सिटी ने अर्जेंटीना के गोलकीपर जेरोनिमो रूली को साइन किया है फ्रॉम मार्सेई। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों माइल्स लेविस केली को साइन करना चाहते हैं, तो देखते हैं अभी इन आने वाले दिनों में क्या होगा। खबर है पेड्रो नेटो चेल्सी छोड़ भी सकता है। चेल्सी में काफ़ी खिलाड़ियों को निकाला जाएगा क्योंकि बहुत नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं चारों तरफ। अगर बात करें टेनिस की तो इसमें जोडा जो अभी एक रिकॉर्ड तोड़ सकता है फॉर द फर्स्ट फास्टेस्ट राइज इन टू टॉप 10, द टीनेज सेंसेशन राफेल जोडा वो टॉप 10 में आ सकता है। ऑस्ट्रिया फिस को अगर वो हराएगा तो सेमीफाइनल कैनेडियन ओपन। 19 साल का राफेल जोडा उसने फ्रेंचमैन फिस को 7-6, 7-5, 6-3 से हराया था, अभी 11th हैं। सो अगर वो सेमीफाइनल जीतता है एंड दैट विल बी अगेंस्ट ब्रांडन नकाशीमा तो वो टॉप 10 में आ जाएगा। सो आज देखना है कोई रिकॉर्ड बनेगा या नहीं। इधर वर्ल्ड नंबर 1 यानी सिनर सिनसिनाटी ओपन में भाग नहीं लेगा, जबकि साबालेंका और नूरी कैनेडियन ओपन के लास्ट 16 से बाहर हो गए हैं। सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आपको बता दें कि इस संडे को इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेटॉक टूर्नामेंट के फाइनल होने वाले हैं और इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट के चैंपियन आमने सामने होंगे। ये होगा घोकायू में, घोकायू के वहां पर जो पेटॉक कोर्ट हैं वहीं पर। विल बी अपडेटिंग यू विथ ऑल द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हमारा साथ इसी तरह देते रहिएगा, राइट?
1: थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अपडेट्स।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: और अभी भी ये मैसेज आया है, वी आर वेटिंग फॉर द कुसाफा अंडर 20 क्वालिफिकेशन अफकन 2027 के जोनल क्वालिफायर्स के लिए। तो मॉरिशस को निकाला गया है ग्रुप ए में, ये ड्रॉ आज निकाले गए। मॉरिशस के साथ है नामीबिया, मोजाम्बिक और सेशेल्स। तो ग्रुप ए में नामीबिया, मोजाम्बिक, सेशेल्स, जो मॉरिशस की टीम है उसका कोच सरजू गारुसंका कर रहा है। तो मॉरिशस की टीम का पहला मैच होगा 18 सितंबर को ये नामीबिया के खिलाफ। आज जोहान्सबर्ग में ड्रॉ निकाले गए। सो ग्रुप ए में मॉरिशस, नामीबिया, सेशेल्स, मोजाम्बिक। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, लेसोथो, अंगोला, एस्वातिनी। ग्रुप सी में जाम्बिया, मलावी, कोमोरो आइलैंड्स, बोस्टवाना। तो इसमें मॉरिशस के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पर जिजुत्सु में मॉरिशस की नशिता अजारी सिंह अंडर 14 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनी। नशिता अजारी सिंह जो वर्ल्ड टाइटल जीतती हैं जिजुत्सु में, ये अबू धाबी में लगा। सो मॉरिशन स्पोर्ट्स फ्लाइंग हाई इन दिनों, हमारे नौजवान कमाल कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट और हम हौसला बढ़ाते रहेंगे।
1: RM2 Radio Masti.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आराम से गाड़ी चलाना, बस अपना रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस वक्त के लिए यस आई हैव समवन वेरी स्पेशल जो हमारे बगल में बैठे हैं. वैसे कहते हैं ना कि जब आवाज़ में टैलेंट और सुरों आवाज़ में टैलेंट हो और सुरों में दिल की बात हो तो म्यूज़िक सीधा दिल तक पहुँच ही जाता है. और आज हमारे सामने एक ऐसा ही टैलेंटेड सिंगर बैठे हैं जिन्होंने इंडियन आइडल के प्रेस्टीज स्टेज पर अपनी सिंगिंग से अपनी पहचान बनाई है. उनकी आवाज में मेलोडी है, परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस है और म्यूजिक के लिए एक ब्यूटीफुल पैशन भी है. सो मॉरिशस, गेट रेडी फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद सोलफुल म्यूजिक एंड अमेजिंग एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज शाम को 6 बजे ही इज गोइंग टू परफॉर्म एट द उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल एट SVICC एट पाय. लेकिन फिलहाल के लिए ही इज गोइंग टू बी लाइव हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो दोस्तों, आप बस यूं ही साथ देते रहे, क्योंकि वी हैव जो हमारे ये बहुत ही टैलेंटेड परिणय जैन हैं. सो आपका स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: A very good afternoon to you, Parinaya.
1: Thank you so much. Thank you for having me. It's a lovely, lovely pleasure to be here. And what a beautiful vibe it is here. And I think Mauritius has a very, very special place in my heart because it's my third time here in this country. I've got so much love, so much support from the people here. And I think I'm a fan of the people here. So.
0: And we are a fan of you. I remember
1: that's
0: so
1: sweet.
0: मैं आपको बता रही थी पिछले साल जब अनुपम ने शेयर किया था उनके शेयर करने से पहले ही सब लोग पहचान लिया था कि ये अनुपम का ही जो परिणय जैन वो लेके आए थे लास्ट टाइम उनके ही टैलेंटेड जो फैमिली मेम्बर हैं सो वी वर शेयरिंग योर वीडियो ऑल अराउंड मॉरिशस हमने बोला था कि ही इज सच अ ग्रेट टैलेंट वेल अभी के लिए आप लाइव ऑन रेडियो मस्ती बात करने से पहले आई एम प्रीटी मच श्योर कि जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं दे वुड love to hear something from you to aap bas shuru kar lijiye
1: are bhai all right so I think I can dedicate a few lines to my beautiful beautiful Mauritians
0: thank you
1: let's start off with some songs all right

0: इतने सारे लोग फिदा हो गए. Well, clap. I can't stop myself.
1: Thank you so much,
0: Parineet. That was so lovely to have you on our Rain 2 Radio Masti. And looking forward to come and see you at 6 PM. You're going to perform live at the Utsav right now. तो चलिए जी, बाकी जो हमारे listeners हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप भी हमें join करना चाहोगे तो जल्दी से आ जाइए ना. देरी किस बात की. Just join us right now, क्योंकि Parineet Jain जो है Indian Idol singer is going to be live on stage. And yes, अभी के लिए और भी डिटेल्स लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू जितने भी हमारे एग्जिबिटर्स हैं. बारी बारी से आ रहे हैं आप लोगों का साथ देने के लिए एंड टेलिंग यू अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल. लेकिन अभी के लिए वी आर गोइंग टू प्लंच इन द संगीत की दुनिया में विद यू Parineet. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर.

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे 6 बजे की समाचारों की ओर, और उसके बाद ऑफ कोर्स विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट द उत्सव. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती.

तो चलिए दोस्तों 5:10 एंड इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स बैक टू स्टूडियो, जहां पर आपके लिए गुड म्यूजिक कंटिन्यू हो रहा है। स्टूडियो के बाहर हो या फिर स्टूडियो के अंदर, कोशिश यही रहती है कि रेडियो मस्ती की टीम आपके लिए 24/7 गुड म्यूजिक पहुंचाती रहे। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम, जहां पर आप जीत सकते हैं एक शानदार इनाम। सो ये गाना था फ्रॉम दिल से, एक्चुअली ये एक कवर वर्जन था लेकिन ओरिजिनली टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल से, जिसमें नजर आए थे शाहरुख खान, मनीषा कोइराला, म्यूजिक बाय A.R. रहमान। आपके लिए सवाल है, दैट इस फिल्म में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू किया था, ऑलमोस्ट हर फर्स्ट मूवीज, एंड ये एक्ट्रेस बॉलीवुड की काफी फेमस एक्ट्रेस बन गई, जहां पर उनकी डिम्पल्ड स्माइल जो है वो हर किसी को दीवाना बनाती है। सो आपको हमें उस एक्ट्रेस का नाम बताना है जिन्होंने अपना डेब्यू किया फ्रॉम द फिल्म दिल से। सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर, 5499-1294 पर, अपने पूरे नाम और पूरे पते के साथ। अगर आपका पूरा नाम नहीं है, अगर आपका फुल एड्रेस नहीं है, तो हम आपको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। सो दिल से मूवी के साथ कौन सी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया था, सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294 एंड जीत सकते हैं 40 मिनट्स हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। डिटेल्स देंगे आपको थोड़ी ही देर में। बस अभी के लिए सिंपल सा सवाल, दिल से फिल्म के साथ कौन सी एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू किया है, सही जवाब आप हम तक पहुंचाइए ऑन 5499-1294 पूरे नाम और पूरे पते के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।

0: सवाल क्वेश्चन पूछा था आपसे, कौन सी वो एक्ट्रेस है जिन्होंने दिल से फिल्म के साथ अपना डेब्यू किया था, एंड द राइट आंसर इज प्रीति जिंटा, द ब्यूटीफुल डिम्पल्ड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, दैट्स द राइट आंसर। और यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब। लकी ड्रॉ के बाद वी ऑल्सो गॉट अ लकी विनर, और आप है डेविना माल्या ऑफ न्यू ग्रोव, कंग्रेचुलेशंस। सुवेल देविना जी, दिया है आपने हमें बिल्कुल सही जवाब, और आपने जीता है 40 मिनट्स हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। एंजॉय कर सकते हैं डीप क्लेंजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सीरम इन्फ्यूजन एंड हाइड्रा ग्लो मास्क, ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंट। योर ग्लो स्टार्ट्स एट प्राणा। सो ये आपको मिला है एक शानदार इनाम। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और नहीं जीते कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जैसे हम कहते हैं, जीतने के मौके तो मिलते रहेंगे आपको ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स, जहां पर अगर आप अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, नॉट टू वरी, वी हैव अ गुड म्यूजिक आपको अकंपनी करने के लिए। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, एंड अगर आप भी कनेक्टेड हैं, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Paré pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h à soir. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: And well friends, after a long day, अभी तो time मिलता है जहाँ पर आप travel करते हुए गानों को सुनते हैं. काम के बाद good music ही तो सहारा होता है, यानी कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए music ऐसा हो जिसे सुनते सुनते आप घर तक पहुँच जाए. सभी के लिए I know that everyone who's connected Radio Musti के साथ, अभी आपको भी घर पहुँचने की जल्दी है, लेकिन आराम से drive करें, destination पर safely पहुँचें. मैं ऊपरी आपके साथ, it's time for your रफ्तार vibes and the good music आप तक हम पहुंचा रहे हैं 24/7. कोशिश तो बस यही रहती है, आपके messages, आपके dedications लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में on 54991294. तब तक के लिए we have this one, लेकिन with a twist, that's a humma for everyone जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. साथ दे रहे हमारे सभी listeners, have a wonderful evening, drive safely and reach safely.

0: RM2 रेडियो मस्ती फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। So well, after Zubi, time for some fashion tips. आपके लिए फैशन का पहला रूल तो यही है, जो पहनो उसमें कंफर्टेबल लगो और अनफॉर्गेटेबल भी। आउटफिट सिंपल हो तो एक्सेसरीज को हीरो बनाओ, और आउटफिट हैवी है तो एलिगेंस को जीरो मत होने दो। व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स वार्डरोब की जो एवरग्रीन लव स्टोरी है वो तो यही है। It never goes out of style, it never goes out of fashion. A white shirt, a blue denim, हमेशा ही एक क्लासिक हिट रहता है। हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं दोस्तों, जो ट्रेंड आपकी पर्सनालिटी को सूट करे वही आपकी रियल स्टाइल है। कपड़े सिर्फ बॉडी को कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी वाइब को बिफोर यू स्पीक। सो बस एक सिंपल सा फैशन हैक यही है, एक ब्राइट दुपट्टा या फिर कलरफुल स्टोल आपके बेसिक आउटफिट को एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश बना सकता है। और जैसे हम कहते हैं, फुटवेयर को इग्नोर कभी भी मत करो। कभी कभी लुक का असली जो प्लॉट ट्विस्ट है वो शूज ही होते हैं, और मैचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। कलर्स को फाइट नहीं फ्लर्ट करने दो। सो अपने लुक को हमेशा स्टाइलिश रखो और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखो। कुछ फैशन टिप्स आपके लिए, स्टे स्टाइलिश, स्टे मैजिकल एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
0: And well, जब आप स्टाइलिश लगेंगे तो हमें आपके लिए ये गाना ही पड़ेगा। This one goes out for all the beautiful ladies जो हमारा साथ दे रही हैं। अभी के लिए तो it's evening time, connected हैं आप रेडियो मस्ती के साथ और मैं हूँ परी आपके साथ। चलिए सो ये हो जाए आप सभी के नाम जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, स्पेशली फॉर ऑल द ब्यूटिफुल गॉर्जियस लेडीज।

सो वेल फ्रेंड्स इट्स 5:55 थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचार बुलेटिन की ओर एंड म्यूजिक यहां पर कंटिन्यू हो रहा है ऑन RM2 रेडियो मस्ती अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ टिल 7 PM सो वेल यहां पर डेडिकेटिंग ब्यूटीफुल गाना फॉर बिलेवड हबी रवीन उतिया उनका आज स्पेशल दिन है और जांजिबार से हमें सुन रहे हैं उनके लिए लोड्स ऑफ लव दैट्स कमिंग फ्रॉम किरण उतिया और आप भी जांजिबार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दैट्स रियली स्वीट और थैंक यू सो मच स्पेशल डेडिकेशन ये है फॉर योर हबी रवीन गाना उनके नाम और आपके नाम एज वेल साथ ही यहाँ पर जो अगला गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर शहनाज जोगी ऑफ रिवर जोगांपा एंड कहती हैं एक प्यारा सा गाना मेरे नाम भी बिल्कुल जी सारे गाने यहाँ पर हम आप ही के नाम डेडिकेट कर रहे हैं सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं एंड यहाँ पर रोशनी हो गई है खुश जूबी जूबी गाना सुनकर सो ये था स्पेशली फॉर यू रोशनी किचन में है और हमारे साथ कनेक्टेड है सो आई एम श्योर दैट आप हमारे साथ गुनगुना रही हैं एंड थोड़ी देर में हम बढ़ रहे हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे एंड गुड म्यूजिक कंटिन्यूज आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए स्टे वेल ट्यून्ड स्टे वेल कनेक्टेड एंड ऐसे ही मैसेजेस डेडिकेशन सब तक पहुंचाते रहिए नंबर तो सेम ही है इट्स 5499 1294

0: सबसे पहले आज की सुर्खियां सब्जी की के खेतीहरों को खेतों में सिंचाई करने के लिए हफ्ते में तीन बार पानी मिल रहा है फागे के अफसर उनकी मदद करने के लिए तैनात की रेट को 4.75% पर बरकरार केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया आज की बैठक एक नाजुक दौर में की गई क्योंकि वृद्धि के खतरे हैं फौजल आवाल की तीर्थ यात्रा गणेश चतुर्थी और वेंकटेश्वरा पूजा की तैयारियों के संदर्भ में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक लगी डॉक्टर नवीन राम गुराम ने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात और उनके प्रस्ताव सुने मॉरीशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरीशस दौरे का ये मकसद है और यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया नमस्कार और आदाब इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार सबसे पहले आपको बता दें कि की रेट को 4.75% पर बरकरार रखा गया केंद्रीय बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया आज की बैठक एक नाजुक दौर में की गई क्योंकि वृद्धि के खतरे हैं मध्यपूर्व में तनाव की वजह से ऊर्जा क्षेत्र पर भी असर हैं इस साल बैंक ऑफ मॉरीशस आर्थिक वृद्धि के लिए 2.8% का अनुमान लगा रहा है फौजल आवाल की तीर्थ यात्रा गणेश चतुर्थी और वेंकटेश्वरा पूजा की तैयारियों के संदर्भ में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक लगी डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके प्रस्ताव सुने अवसर पर CWA, CB और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दौरान सबसे जिम्मेदारी और अनुशासन बरतने की मांग की तथा उन्होंने कहा कि अच्छे संचालन और सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए प्रधानमंत्री को सुनते हैं
1: L'objectif ici, c'est garantir que ces trois fêtes religieuses-là déroulent en toute sérénité et en toute sécurité. Nous pouvons assurer aussi qu'il y a un approvisionnement de l'eau malgré la sécheresse qui peut taper au nous là et que l'électricité. Et nous pouvons assurer aussi qu'il y a un service médical sur place avec une ambulance 24/24 et aussi présence la police. L'essentiel, ce qu'ils m'ont dit là, c'est

0: discipline, sens de responsabilité. Par exemple, pas être banne serviette papier, banne bouteille plastique, banne sac plastique. Et la banne bin, c'est pas de n'importe où. Ça sert à banne bin là. Mais surtout, ça sens de responsabilité là.
1: मॉरिशस और भारत के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के औपचारिक मॉरिशस दौरे का ये मकसद है। पिछली 31 मई को वे इस पद के लिए नियुक्त हुए और मॉरिशस उनका पहला विदेशी मिशन है। सागाउनु गीता सुनारान।
2: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 10 से 13 अगस्त तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य नेशनल कोस्ट गार्ड के साथ सहयोग को और मजबूत करना है। इसमें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हमें आशा है कि मॉरिशस के इस दौरे से दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत होगी, शुरू किए गए कार्यों में तेजी आएगी और अन्य नए क्षेत्र शामिल होंगे। सहयोग की नई संभावनाओं की उम्मीद करते हैं जो दोनों देशों और उनकी जनता के हित में हो।
3: And explore new avenues for partnership that would do good service to both our nations and our peoples.
2: भारतीय नौसेना प्रमुख मॉरिशस सरकार को एक साइट स्कैन सोनार सिस्टम और नए अपडेट किए गए समुद्री नक्शे सौंपेंगे। इन उपकरणों से मॉरिशस की समुद्री सर्वेक्षण क्षमता और समुद्री यातायात की सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये दौरा मॉरिशस में पिछले भारतीय नौसेना प्रमुख की यात्रा के 11 साल बाद हो रहा है।
1: कम बारिश की वजह से कृषि उद्योग में पानी की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू किए गए। सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए सिर्फ सब्जी की खेती करने वाले खेतीहरों को अधिकार हैं, लेकिन हफ्ते में 3 बार सिंचाई के लिए उनके खेतों में जलापूर्ति की जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फागे के अफसर जल संसाधन के संचालन और खेतीहरों की मदद करने के लिए तैनात हैं। किशन सिचिया, गीता सुनारान।
2: कड़ी धूप में बिस्वादत रोज की तरह सोलिट्यूड में अपने खेतों में काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन और कुछ घंटों के लिए ही सिंचाई का पानी मिल रहा है। उनके लिए आने वाले कुछ महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 5 दिन पानी मिलता था, अब 3 दिन मिलेगा। ये काफी नहीं है। अक्टूबर नवंबर में गर्मी होगी, जमीन तैयार हो चुकी है। सीजन के चले जाने के बाद हम तरबूज नहीं रोप सकेंगे। टापू के इस उत्तरी इलाके में करीब 100 किसान हैं जो सब्जियों की खेती के लिए मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं। बिसुंदत नमा कहते हैं, ड्रिपिंग के अलावा और कोई समाधान नहीं है। हमें खेती कम करनी होगी क्योंकि कम पानी मिलेगा, पैदावार 50% से घटेगी। यहाँ बारिश का पानी जमा करना काफी मुश्किल है और आसपास जल स्रोत न होने से समस्या और गंभीर हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए फागे के अधिकारी किसानों को उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सलाह दे रहे हैं। फागई खेतों में कम पानी इस्तेमाल करने के टेक्निकों का सुझाव दे रही हैं। इसके उपनिदेशक अखिल आनंद जी गुलुब कहते हैं, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे ड्रिपिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पर्याप्त पानी इस्तेमाल करती हैं, जड़ के पास इन्हें लगाते हैं। बारिश का पानी जमा करने के लिए एक स्कीम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। खेतीहर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 50% ग्रांट मिलता है। ये प्रणाली बिठाने के लिए जमीन में अन्य पदार्थ डाल सकते हैं जो जड़ों के पास पानी रहने देते हैं।
4: 50% ग्रांट vous êtes monde de système de captage. Nous avons aussi ben les autres produits qui nous capables mettre dans la terre et ça produit là les gouttes de l'eau près que de racine là, comme ça le fréquence d'arrosage aussi ou capable espacer l'eau plus grand les temps.
2: सूखे के इस दौर में खाद्य उत्पादन को बनाए रखने के लिए प्रभावी सिंचाई और पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: 1,000 परिवार अब उपचारिक रूप से सौर पैनल्स के मालिक बने।

0: गए हैं। सीबी के प्रोग्राम के इन लाभार्थियों को आज बैन में अपनी डीड्स मिले। कुछ परिवारों के यहाँ करीब 10 सालों से ये पैनल्स लगाए गए हैं, जिनसे हर महीना वो अपने बिजली बिल पर बचत कर पाते हैं। मुशर्रस में सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए अधिकारियों के लक्ष्यों में शामिल ये एक कदम है। अनाबेल वुल्बिया, गीता सुनारान।
1: लगभग 1000 परिवार अब आधिकारिक रूप से सीबी द्वारा लगाए गए सोलर पैनलों के मालिक बन गए हैं। कुछ परिवारों के घरों में ये सोलर पैनल करीब 10 साल से लगे हुए हैं। इन सोलर पैनलों की मदद से उन्हें हर महीने बिजली के बिल में बचत होती है। आज इन ग्राहकों को सीबी की ओर से अपने सोलर पैनलों के मालिक होने का प्रमाण पत्र मिला। फिलहाल मॉरिशस में करीब 12,000 लोग सोलर पैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संख्या सीबी के नेटवर्क से जुड़े 4,00,000 से ज्यादा ग्राहकों की तुलना में अभी भी काफी कम है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 2029 तक सोलर पैनलों की संख्या बढ़ाकर 80,000 करना है। सीबी के अनुमान के अनुसार जब सोलर पैनलों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो लाभार्थियों को बिजली के बिल में हर महीने 580 रुपए तक की बचत हो सकती है। 1000 लाभार्थियों को इन सोलर पैनलों के मालिकों को प्रमाण पत्र देना 2026-2027 के बजट में घोषित उपायों का हिस्सा है।
0: जन उपयोग और ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन को सुनते हैं।
2: Findon asaban du monde là qui panneau aux autres la case, un premier batch de 1000 autres agreements, autres papiers qui deviennent propriétaires de ça. Ça veut dire que du monde qui est dans salle sur la case, d'abord sur bill courant pour baisser parce que tout courant qu'il peut produire, il peut tirer ça sur le bill. Et une madame, elle dit elle est là. Ce bill maintenant 13 roupies. Peut-être ce bill tire 11 roupies, 200 roupies, 800 roupies, il y a une vie 13 roupies. Le président Trump, dès la guerre est commencée, prix l'a monté. Là, il dit à la guerre, de droit de mots ouvert, prix l'a baissé. Alors, il fait que ce qui se passe, c'est que CIB fait une augmentation de 15% qui nous fait pour permettre à CIB à monter sa bancoula. Il n'y a pas d'actualité, augmentation de CIB encore, mais seulement, nous avons fait tout pour nous diversifier nos bouquets énergétiques.
0: कल फैसला सुनाया गया। इक्विडिया पॉक मामले में करप्शन के लिए मनीष गोबिन पर मुकदमा चलाया जाएगा। डीपीपी दफ्तर ने औपचारिक रूप से सुप्रीम अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के सामने उन पर इल्जाम दर्ज किया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पोका के तहत पुराने अटॉर्नी जनरल के साथ साथ पुराने पीपीएस राजा नादालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स के पूर्व चेयरमैन हरिदत्त रामनारायण पर मुकदमा चलाया जाएगा। अन्य खबरों में मॉरिशस और सेशल्स के रिश्ते एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। मॉरिशस में सेशल के पहले उच्चायुक्त निकोला जेगोप्रिया ने आज स्टेट हाउस कैजुई में गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र पेश किया। दोनों मुल्क कई सेक्टरों में अपने रिश्तों को मजबूत करने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में। हिंद महासागर में गैर कानूनी तस्करी के खिलाफ संघर्ष करने पर खास तवज्जो देने पर भी बात की गई। कोयल सीतल, अशिता रघु।
3: निकोला जेगोप्रिया मॉरिशस में सेशल्स के पहले उच्चायुक्त हैं। स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा पर जोर दिया। सहयोग के कई क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, खासकर समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। मॉरिशस में सेशल्स के उच्चायुक्त ने कहा, द्विपक्षीय संबंधों के वास्ते एक जॉइंट कमीशन है। हम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मुख्यतः समुद्री सुरक्षा पर ज्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच विकास की बहुत संभावनाएं हैं, जिससे हिंद महासागर में गैर कानूनी तस्करी को रोका जा सके। सेशल्स की सेशल्स कोस्ट गार्ड्स की सहायता से हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर मॉरिशस के साथ भी सहयोग करेंगे, जिससे मॉरिशस भी हिंद महासागर को एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बना सके, जहाँ ड्रग तस्करी इत्यादि न हो। ये नई नियुक्ति दोनों द्विपक्षीय देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करना है।
0: ग्रेट ब्रिटेन में ग्लूकोमा के इलाज में महारत रखने वाले न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर पैट्रिक और सिंथिया यू वाई उमान मोशन डास्पोरा का वो हिस्सा हैं जो अपनी जन्मभूमि के मरीजों को अपनी सेवा देना चाहते हैं। इस हफ्ते दोनों वापस मॉरिशस आए। न्यू आई अस्पताल मोका में उन्होंने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया जिन्हें आंखों की बीमारी है। उनमें कई ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। इस हफ्ते भी दोनों भाई बहन मरीजों का मुआयना करेंगे और लेजर से सर्जरी भी करेंगे। जरूरत पड़ने पर दोनों डॉक्टर मरीजों को मुफ्त में माइक्रो इम्प्लांट्स भी देंगे। काविंता पेसो, गीता सुनारान।
1: विवेकानंद चमन 61 साल के हैं और ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। ये आंखों की एक बीमारी है जिससे धीरे धीरे नजर कमजोर हो सकती है। समय के साथ उनकी एक आंख की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। अपनी नजर को ज्यादा से ज्यादा बचाए रखने के लिए उन्हें सर्जरी करवानी होगी। आंखों की नसें कमजोर पड़ गई हैं। एक आंख में लेजर से इलाज करवाया था, दूसरी से कम दिखाई देता है। अब डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विवेकानंद चमन की जांच प्रोफेसर पैट्रिक यू वाई मान ने की। मॉरिशस में जन्मे न्यूरो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर पैट्रिक यू वाई मान इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता और कंसल्टेंट हैं। अपनी बहन प्रोफेसर सिंचा यू वाइमान के साथ, जो लंदन के किंग्स कॉलेज में कंसल्टेंट आंखों की सर्जन और ग्लूकोमा विशेषज्ञ हैं, दोनों का एक ही उद्देश्य है मॉरिशस में ग्लूकोमा के मरीजों के इलाज और देखभाल को बेहतर बनाने में योगदान देना। दोनों डॉक्टर मॉरिशस के उन मरीजों के लिए माइक्रो इम्प्लांट लेकर आए हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। ये उपकरण मरीजों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर सिंचा यू वाइमान कहती है, हम 10 इम्प्लांट्स लाए हैं, एक की कीमत करीब 1000 पाउंड स्टर्लिंग की है। मॉरिशनों को हम मुफ्त में दे रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए विदेश जाना पड़ता है। इम्प्लांट एक छोटा पाइप जैसा है। जिन लोगों की आंखों में तनाव है, आंखों में ज्यादा पानी है, ये पाइप उस पानी को बाहर निकालता है ताकि आंखों का तनाव कम हो। इस सप्ताह प्रोफेसर पैट्रिक और सिंचिया यू वाइमान ग्लूकोमा से पीड़ित कुछ मरीजों पर लेजर से इलाज भी करेंगे।
0: और अब विदेश की खबरें। यूनेस्को के मुताबिक सन 2021 से जब से तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू की तब से लेकर आज तक करीब 2.4 मिलियन लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा से दूर रखा गया। अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो ये तादाद सन 2030 तक करीब 4 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यूनेस्को का कहना है कि पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता मुल्क है जहां लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा और आला तालीम पाने का हक नहीं है। जिम्बाब्वे में करीबा झील में एक नाव के उलट जाने से कम 15 लोगों की डूबकर मौत हुई। पुलिस के मुताबिक कश्ती पर 90 मुसाफिर थे और 5 क्रू मेंबरान जब ये घटना पेश आई। एक पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत टिकट बिक्री के मुकाबले ज्यादा लोग कश्ती पर सवार थे। आस्था गोमिंचतामन।
4: जिम्बाब्वे की करीबा झील में बड़ा नाव हादसा। यात्रियों से भरी नाव तेज लहरों की चपेट में आकर पलट गई। कम से कम 15 लोगों की मौत, 27 लोग अभी लापता बताई जाती हैं। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब नाव करीबा से आसपास के द्वीपों और मछली पकड़ने वाले इलाकों की ओर जा रही थी। नाव में 90 लोगों को ले जाने की क्षमता थी लेकिन इसमें तय संख्या से काफी ज्यादा लोग सवार थे। अधिकारियों के मुताबिक 114 वयस्क और चालक दल के 5 सदस्य नाव में थे। चालक दल के एक सदस्य का कहना है कि नाव में कुल 153 लोग सवार थे। नाव के रवाना होने के करीब 30 मिनट बाद उसमें पानी भरने लगा। तेज लहरों के बीच नाव पलट गई। हादसे के बाद कुछ लोग पलटी हुई नाव के ऊपर बैठकर मदद का इंतजार करते दिखाई दिए। उन्हें बचाने के लिए कई नावें भेजी गई। बुधवार को भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। लापता लोगों की तलाश के लिए पानी के अंदर खोज करने वाली विशेष टीमें भी भेज दी गई हैं।
0: आज यूरोपीय मुल्कों की आबादियां सूर्य ग्रहण देखेंगी। खासतौर पर उत्तरी स्पेन में दिन दहाड़े में रात का नजारा होगा। विस्तार गीता सुनारान के साथ।
1: आज यूरोप के कई इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप से 2006 के बाद पहली बार पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। ये खगोलीय घटना जीएमटी समय के अनुसार शाम करीब 5 बजे रूस के उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र से शुरू होगी। इसके बाद चंद्रमा की छाया ग्रीनलैंड और आइसलैंड से होते हुए स्पेन पहुंचेगी। वहां सूरज 2 मिनट से भी कम समय के लिए पूरी तरह ढक जाएगा और कुछ समय के लिए पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं कनाडा अमेरिका के उत्तरी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ इलाकों में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए पूरे यूरोप में लाखों लोग जुटे हुए हैं। इसे सुरक्षित तरीके से देखने के लिए लोगों ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए विशेष रूप से सुरक्षा वाले चश्मे का इस्तेमाल किया।
0: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम

मौसम की पेशगोई आज रात पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू में रह रहकर हल्की बारिश होगी बाद में मौसम अच्छा होगा सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की वर्षाएं होंगी कल सुबह आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा बाद में दोपहर बाद को पश्चिम सेंट्रल प्लेटू में बादल घिर आएंगे और रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा रात के दौरान हवा पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा और 2 मीटर 50 ऊंची लहरें उठेंगी इसी वजह से आज रात दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त की जा रही है तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 15 से 18 अधिकतम 22 से 25 साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण मुर्शस से कोई ताल्लुक नहीं रखता है कल सुबह 6:33 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:56 पर सूरज ढल जाएगा

तो ये थी आप तक की खबरें, आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार और सूचनाएं सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब। NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री रोड पुंफासले में 89 साल की 89 years old श्रीमती गायत्री बुदाई, श्रीमती गायत्री बुदाई पैदाइशी नाम रामसरन, जो कुसमी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 2:15 बजे, कल दोपहर बाद 2:15 बजे इनके बेटे रामोतर बुदाई के घर लाल बहादुर शास्त्री रोड पोंफासले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:15 PM। नंबर 10, नंबर 10 किंग्सवे लंदन यूके में 61 साल के 61 years old श्री जय कृष्ण सिंह भोकुरिया, श्री जय कृष्ण सिंह भोकुरिया, जो धीरेन राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी शुक्रवार को एक बजे इनकी माँ वेदा वाइट के घर लंदन यूके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। कौसामी मोका में 62 साल के 62 years old श्री पेरुमाल पीले इयारू, श्री पेरुमाल पीले इयारू, जो राजन इंस्पेक्टर काजिनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी राइना इयारू के घर कौसामी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। सीते लाग्रीमों सैंपियर में 73 साल के 73 years old श्री एलाना अपादू, श्री एलाना अपादू, जो दास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर सीते लाग्रीमों सैंपियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टों सैंपियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 87 साल के 87 years old श्री पोपाया कार्तिक, श्री पोपाया कार्तिक, जो आयावेदी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी शुक्रवार को 12 बजे इनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट नून। सीबी रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 years old श्रीमती नारायणी ओनाचेलम, श्रीमती नारायणी ओनाचेलम, पैदाइशी नाम नारायण, जो मामा राजीव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी बेटे राजीव ओनाचेलम के घर सीबी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। धनेश्वर स्यूराज रोड नवियनमील थ्रियोली में 32 साल के 32 years old श्री विवेक रामसरन, श्री विवेक रामसरन, जो आवी

0: के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10:30 बजे इनकी माँ प्रीति रामसरन के घर दानिशवक सिवराज रोड नवियमिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तियामिनुस थ्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। कूटो स्ट्रीट प्लेन मान्यो में 72 साल के 72 years old श्री त्रिलोक सिंह राम भरत जो राम भरत के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12:30 बजे कल दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी साबिता देवी राम भरत के घर कूटो स्ट्रीट प्लेन मान्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। 50 एवेन्यू डॉयन कैथोबोन में 62 साल के 62 years old श्री सतीश तोमू जो सतीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर नंबर 50 एवेन्यू डॉयन कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। D1 दाचिए स्ट्रीट रेजिडेंस शुबेल बोबासे में 53 साल के 53 years old श्री मोगाया कोपेन जो नंदा के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे इनके घर D1 दाचिए स्ट्रीट रेजिडेंस शुबेल बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शुबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:01 PM। पेलग्रैन रोड सेबास्टोपोल में 61 साल के 61 years old श्री ऋषि कुमार गोपुल जो ऋषि के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके पिता हरिदत्त गोपुल के घर पेलग्रैन रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेबास्टोपोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बानू लेन नोत्रोदाम में 69 साल के 69 years old श्री लेखराज हरबंस जो रमेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी पत्नी विंती हरबंस के घर बानू लेन नोत्रोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोत्रोदाम की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. RM2, Radio Mastin.

वेल फ्रेंड्स, शाम के 6:30 और वेनसडे इवनिंग कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. अब रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती हुई एंड ट्रैफिक टाइम भी अब थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ, लेकिन म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती, जहां पर गुड म्यूजिक आपके लिए हमेशा कंटिन्यू होता रहता है. सो अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ टिल 7 PM. और ये जो नेक्स्ट गाना है हमारे सभी लिसनर्स के नाम, टू गेट यू इन द इवनिंग मूड. अब इस कनेक्टेड हैं, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं. सो मैसेजेस डेडिकेशन 5499-1294 पर.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: And well friends, कुछ गाने हमेशा ही खास रहते हैं. कुछ ऐसे soulful songs होते हैं जिन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिंदगी जो है वो थोड़ी सी ठहर गई है. जिंदगी के इस chaos में अगर कुछ सुकून देता है तो वो बस ऐसे ही गाने होते हैं. And I don't know that after a long day of work, आपको भी थोड़ा सा सुकून चाहिए. So this one goes out उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. स्पेशली फॉर यू विशाल भैया, हमेशा हमारा साथ देते हैं आप. एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. जैसे हमने कहा कि हमेशा तो थैंक यू बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम भी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू, फरीना भाभी एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.

तो चलिए दोस्तों, अभी तो शाम का टाइम है, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने कहा कि आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होता रहता है, बिकॉज ये है आपका अपना आर एम टू रेडियो मस्ती। फनाओ स्टूडियो से बाहर एक बार फिर

0: शहर आपको लेकर चलते हैं एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो लगा है एट SBICC पाई, जहां पर वी हैव गिनीशा हम तक पहुंचा रही है कुछ अपडेट्स. हेलो,
1: Once again, a very good evening to you, Pari, and good evening to everyone just saath de rahe hain on RM2 Radio Masti. Ji haan, we are still live from SVICC at Pai, Mauritius. Ke jitne bhi hamare pyare pyare listeners hame sun rahe hain, they were all waiting for this moment to attend this Utsav, Mauritius Shopping Carnival. It's happening. Ji haan, dosto, aaj se shuru ho chuki hai. Till the 16th of August, 10 baje khul jati hai subah, raat ke 9 baje tak, yaani ki you can come here and enjoy your late night. शॉपिंग एक ही जगह पर मिलेगा, शॉपिंग का धमाका, अमेजिंग सेल्स और एक्साइटिंग ऑफर्स. डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए डिफरेंट एग्जिबिटर्स लेकर आए हैं यूनिक प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल आइटम जो है, फैशन होम प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ. वैसे शॉपिंग के साथ साथ फन ऑन एंटरटेनमेंट, स्पेशली बच्चों के लिए भी एक्साइटिंग किड जोन बनाया गया है, प्लस डिलीशियस ऑप्शंस एट द फूड कोर्ट जो आप एंजॉय कर पाएंगे अपनों के साथ. सिटिंग अरेंजमेंट भी है फूड कोर्ट में, तो फैमिली को लेकर आइए, फ्रेंड्स को बुलाइए और हम तो कहते हैं कि एंजॉय कीजिए इस शॉपिंग फेस्टिवल को, खाने को और फन एंटरटेनमेंट को भी. इट्स ऑल हैपनिंग अंडर वन रूफ फॉर यू एट SVICC एट पाई. जी हाँ दोस्तों, और दिन के टाइम आपको मिलते हैं ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पोर्ट लुइस फ्रॉम लगाव विक्टोरिया. एंड अभी के लिए, अभी जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, सो एट द मोमेंट वी हैव परिणय जैन, द इंडियन आइडल सिंगर. ही इज हियर इन द हाउस, ही इज सिंगिंग राइट नाउ, ही इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. तो अभी 6 बजे से शुरू हो चुका है एंड इट्स गोइंग टू एंड बाय 9 PM. तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं टू एंजॉय ऑल दिस अंडर वन रूफ. तो जल्दी से आएगा जरूर एंड अपने फैमिली को भी जरूर ले आना. एंड वैसे मैंने आपको डेट तो बता दी है, दैट्स गोइंग टू एंड ऑन द 16th of August. तो जरूर आना शॉपिंग करने के लिए अपनों के साथ एट द उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल हैपनिंग at SVICC at Pai.
0: वेल, सो थैंक यू सो मच गिनीशा, आप है वहाँ पर. एंड जैसे हमारे लिसनर्स इतने दिन से आप सुन रहे हैं दैट इस शॉपिंग कार्निवल के बारे में हम बात कर रहे थे, फाइनली आज वो शुरू हो चुका है. सो यू कैन गो एट SVICC पाई सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. लेट नाइट शॉपिंग भी आप एंजॉय कर पाएंगे. 16 तारीख तक ये फेस्टिवल वहाँ पर लगने वाला है, जहाँ पर होम शॉपिंग के साथ साथ फूड कोर्ट्स भी है, फूड फेस्टिवल भी है और बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. सो स्टे कनेक्टेड, यहाँ पर लाइव अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे. अभी के लिए इट्स म्यूजिक टाइम फॉर ऑल द लिसनर्स जो कनेक्टेड हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

So, चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. इतना प्यार आप हमेशा हम तक पहुंचाते हैं. ऑन 5499 1294 कहते हैं नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल स्टाफ ऑफ लक इंडियन ऑयल वर्किंग राइट नाउ. सो लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल. इंडियन ऑयल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक. अगला गाना आपके नाम वृंदा बंगारू सा दे रही हैं रोजबेल से और कहती हैं कि आज बेटी सेलिब्रेटिंग हर वेडिंग एनिवर्सरी, प्लीज एक गाना उनके नाम. ये है फ्रॉम फुल फैमिली, उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रैक है सभी अपाडू परिवार जो हमेशा साथ देते हैं. सो अगला गाना आपके नाम सीता गीता बोलू राम साथ दे रहे हैं शातो बनारस से. गाना आपके नाम एंड आई एम विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम. और चलिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि एवरीडे स्पेशल, लेकिन कुछ दिन होते हैं जो थोड़े से और खास होते हैं. सो आज की तारीख इट्स 12th of August एंड इट्स अ स्पेशल स्पेशल डे एंड इट्स अ स्पेशल सेलिब्रेशन. माला रघुनंदन फ्रॉम वाकवा, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे आज. सो ऑन योर स्पेशल डे वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. स्पेशल विशेज कमिंग फ्रॉम हस्बैंड प्रिय, साथ में है आपका ग्रैंडसन यशवीर सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू. साथ ही लवली विशेज कमिंग फ्रॉम टू डॉटर्स यशिली एंड यशीना. वे आपके लिए विशेष लेकर आए हैं विकी विशाल सभी सन्हाई रघुनंदन एंड जूसरी फैमिलीज. हमारी ओर से भी स्पेशल विशेष पूरी RM2 टीम आपको विश कर रही है वेरी हैप्पी बर्थडे. स्पेशल विशेष टू ऑल दोस जो आज ऑन 12th of August मना रहे हैं अपना जन्मदिन. दिस वन गोज आउट फॉर यू माला जी, हमारा साथ दे रही हैं आप. सो हैप्पी बर्थडे टू यू.

So, चलिए आपका जन्मदिन है और इसे बना रही हैं स्पेशल विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन. ये गाना आपके नाम. Once again, Mala Raghunandan celebrating her birthday. Aaj special wishes from all her near and dear ones. Have a great one.

And well, friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. मेरे बाद आ रही है दिव्या लेकर आपके लिए कुछ और beautiful romantic tracks. आपकी इस शाम को सजाएंगी वो उनके wonderful choices के साथ. So उनका साथ निभाइए. मुझे दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी कल आपसे और बातें तो होती रहेंगी. गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे. For now, we have this beautiful track. और इसी गाने के साथ परी signing off. Take care, keep smiling and have a great night.

देखिए हमें भी एक बात नहीं बल्कि बहुत सारी बातें करनी होती हैं, इसलिए हम आ जाते हैं RM2 रेडियो मस्ती की लहरों पर कुछ और खूबसूरत बातें करने के लिए और इस समा को, इस माहौल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए. वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. तो थैंक यू सो मच एडवांस में, आपको दिल से शुक्रिया टू ऑल दोस्त जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ. एंड यकीन मानिए आपके मैसेजेस शो के शुरू होने से पहले ही मिल जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. और

0: साहब के मैसेजेस को देखकर हम तो मन ही मन ऐसे ही मुस्कुराने लग जाते हैं. सो टू ऑल दोज जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, बस अगर आप लोग काम पर हैं, बोन कुराज इफ़ यू हैविंग योर डिनर, बोन अपेटी, शुभ आहार. और अगर आप लोग इस वक्त ड्राइव करके अभी घर वापस जा रहे होंगे तो आपसे हम कहेंगे प्लीज़ ड्राइव सेफली एंड केयरफुली. अभी बहुत ही कूल म्यूज़िक चलने वाले हैं तो उसके रफ्तार के हिसाब से ही आप गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़िए. स्लोली बट श्योरली आप घर तक और अपनी मंजिल की ओर पहुँच ही जाएंगे. चलिए अभी के लिए तो आपको यह एहसास दिलाना है कि ज़िंदगी में एक मंजिल है जो सबको पाना है और वो है प्यार की मंजिल. और प्यार की मंजिल को अगर आपको हासिल करना है तो सफ़र को आपको प्यार भरा ही बनाना है. तो चलिए यहाँ पर प्यार भरा सफ़र आप लोगों के साथ काटना है टिल 9 PM और साथ में आपके मैसेजेस का भी इंतज़ार रहेगा ऑन 5499-1294. Don't forget it's your evening lounge जहाँ पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: 7:15 हो चुके हैं। चलिए कुछ प्यार भरी बातों के साथ साथ यहाँ पर गाने भी सुना रही हैं और गानों के साथ साथ हम आपको स्टूडियो के बाहर लेकर जा रही हैं। यस यस, कहाँ पर एक्चुअली आज SVICC पाई है जहाँ पर लग रहा है मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल और ये चलेगा टिल 16th August और आज से शुरू हो चुका है। तो चलिए हम और भी जानकारी गिनिशा से हासिल करेंगे। हेलो गिनिशा, गुड इवनिंग टू यू।
1: Good evening to you, my lovely Divya. How are you, Divya?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बारे में तो पूछूंगी नहीं, because I know जहाँ पर शॉपिंग होता है आप खुशी होते हैं।
1: तभी तो मैंने पूछा तुम्हें जलाने के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ शॉपिंग फेस्टिवल में। Yes, you said it right. जो उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल है, it's happening right now. सुबह खुल जाती है 9 बजे और रात के सुबह 10 बजे खुल जाती है और रात के 9 बजे तक लेट नाइट शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। टू ऑल आवर डियर एंड लवली लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, मॉरिशस के जितने भी शॉपिंग लवर्स हैं, बस रेडी हो जाइए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आ गया है उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल 12 से 16 अगस्त SVICC एट पाया। एंड डिफरेंट कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर, अमेजिंग कलेक्शंस और एक्साइटिंग सेल ऑफर्स भी हैं यहाँ पर। सो शॉपिंग के साथ साथ मिलेगा आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट किड्स के लिए, सुपर फन किड्स जोन और टेस्टी ट्रीट्स के लिए, यानी कि दे आर हैविंग देयर फूड कोर्ट। तो इस बार शॉपिंग सिर्फ शॉपिंग नहीं है, इट्स शॉपिंग मस्ती, फूड और एंटरटेनमेंट ऑल इन वन प्लेस। वैसे इफ यू आर लुकिंग सम लवली आइटम्स अपने घर के सजावट के लिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आई सीन ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, चाहे आपको टेक वुड का जो वेल इंडिया से आए हुए हैं लोग जो अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट कर रहे हैं, दे हैव वेरी डिफरेंट एंड यूनिक काइंड ऑफ फर्नीचर, होम फर्निशिंग आइटम्स हैं, मैट्रेसेस हैं, कर्टेंस हैं, लाइट्स, झूमर हैं, वाटर प्योरीफायर है, एंड किचन यूटेंसिल्स एंड किचन आइटम्स हैं, एंड पूजा का सामान भी हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड बैग्स हैं फॉर ब्यूटीफुल लेडीज, मसाज चेयर भी हैं जहाँ पे आप आके ट्राई भी कर सकते हैं, दे आर हैविंग द ट्रायल सेशन, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड हियर, एंड फैंस, कैंडल्स भी हैं, सो मेनी थिंग्स एक्चुअली रिव्या, सो मेनी थिंग्स आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। एक्चुअली बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, एंड येस दिस पीपल आर सेइंग कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर द लास्ट डे फॉर द टू पुट अ क्लियरेंस सेल। एक्चुअली हम लोग पहले दिन से ही यहाँ पे अपने क्लियरेंस सेल्स लगा चुके हैं, सो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और एन्जॉय कीजिए दीज लवली धमाकेदार सेल जो हो रहा है एट उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल 12 से 16 अगस्त एट SVICC पाई में। फैमिली को लाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ और शॉपिंग का फुल ऑन मजा उठा लीजिए, एंड डोंट मिस दिस वन। और बाकी जितने भी लिसनर्स बस में आना चाहेंगे कल दिन में, सो जस्ट रिमाइंड यू, यू कैन गेट सम ट्रांसपोर्टेशन फ्री फ्रॉम लागा विक्टोरिया एट पोर्टवेस। एंड जैसे कि एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, येस जस्ट रिमाइंड यू, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग राइट नाउ, परिणय जैन ऑन स्टेज फ्रॉम इंडियन आइडल का जो सिंगर है, एंड तनुश्री डांस ग्रुप भी है यहाँ पे आज अभी चल रहा है एंटरटेनमेंट शो। और कल के लिए ये ऑन थर्सडे 13th of August मैं आपको बताती हूँ कि कल थ्रू आउट द डे कौन से शोज होने वाले हैं। सो शो टाइम ग्रुप जो है, जो ग्रुप्स आने वाले हैं वो क्रुमाना डांस अकेडमी, दे आर गोइंग टू परफॉर्म एट नून, एंड परिणय जैन अगेन इंडियन आइडल सिंगर, एंड देर विल बी अ मैजिशियन फ्रॉम इंडिया, मैजिक शो होगा, एंड शाम को 6 बजे हाई स्टेप परिवार डांस ग्रुप एंड परिणय जैन अगेन द इंडियन आइडल सिंगर विल बी परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू टुमारो। तो छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, और आप भी अगर फ्री हो तो

0: जल्दी से आ जाइएगा अपनों का साथ, यहाँ पे आप खूब एंजॉय कर सकते हैं. सो जस्ट डू कम एंड मीट अस एट उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल एट SBICC अटपाल.
1: थैंक यू सो मच गिनीशा फॉर ऑल दीज अपडेट्स एंड डिटेल्स. एंड चलिए अगर आप भी SBICC पाई जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास टाइम ही टाइम है. एंड ये तो चलता रहेगा 16 अगस्त तक. बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घर वापस आते हैं थके हारे काम से, तो क्या प्लान्स बनाते हैं, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्लान्स टर्न आउट टू बी द बेस्ट. तो अगर आप काम से वापस घर आते हैं तो आप बच्चों और बीवी को खुश करने के लिए बस अनएक्सपेक्टेडली ये भी कह सकते हैं कि चलो भाई जाकर देखते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि एक ही छत के नीचे आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट.
2: इवनिंग लाउंज
3: RM2
2: रेडियो मस्ती.

0: चले कुछ आपके खूबसूरत मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. हेलो जी, गुड इवनिंग. और आप कहती हैं कि आई एम कमिंग इन योर RM2 शो एंड दैट्स रियली स्वीट. सुया बिहारी जी, आप हैं कुंगुमा से, थैंक यू सो मच. और वहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है. दो तीन बार तो वहाँ पे मैं गई भी हूँ एंड वाओ, व्हाट अ व्यू. एंड आप कितनी लकी हैं, आप बहुत ही खुशनसीब हैं सुया जी कि आप वहाँ पर रहती हैं. और आसपास में जितने भी सारे माउंटेन्स हैं, शाम को तो कितना खूबसूरत लगता होगा. एंड जब वॉक पर जाना भी, वाओ, आप कितनी लकी हैं. तो चलिए, आपको बहुत बहुत सारा प्यार. एंड साथ में अगला गाना खास तौर से हम दरकेज करेंगे, हम करेंगे गीता सीता भोलू राम अवशा. तो बिना गैस नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर यू मॉम भगवंती एंड आपके पूरे परिवार के लिए भी. साथ में नेक्स्ट गाना गुज आउट टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच गाइज, दिल से आपको शुक्रिया एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए. एंड ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिएगा. एंड आपके मैसेजेस एक बार फिर से हम वेट कर रहे हैं ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: That was a beautiful gana and it was taken from the movie Pardesi Babu. And चलिए आपको हमारा एतबार तो करना ही पड़ेगा और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे स्टूडियो के बाहर, मिलवाएंगे एक बार फिर से गिनिशा के साथ. And trust me, अगर आपको मौका मिल रहा है so please don't lose this opportunity to go at मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो शुरू हो चुका है आज से और चलता रहेगा 16 अगस्त तक. और एक ही छत के नीचे आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है और आंखों देखा हाल. चलिए गिनिशा से ही हम सारा डिटेल हासिल कर पाएंगे. वंस अगेन हेलो गिनिशा.
1: A big hello to you, Divya, and a big hello to all our listeners जो साथ दे रहे हैं. बिल्कुल जैसे आपने ठीक कहा है, like everyone was waiting for this opportunity to come and do their shopping, was waiting for this Utsav to happen, and yes, it's happening. Utsav Mauritius Shopping Carnival happening at SVICC at Pai, and आपने तो बोल दिया है तारीख भी 12 से 16 of August. सुबह खुल जाती है 10 बजे और शाम को बंद हो जाती है रात के 9 बजे, यानी कि you can do your late night shopping. जी हाँ दोस्तों, and आपको free बस शटल मिलता है रोज फ्रॉम लागाव विक्टोरिया पोर्टवी से. और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने अच्छे तरीके से सोच के रखा है कि इट्स हॉलीडेज, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, सो किड जोन भी का इंतजाम किया गया है विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द किड्स. और एंटरटेनमेंट शोज भी चल रहा है रोज, एंड वी हैव फैशन शोज, दे हैव मैजिक शोज, दे हैव डांस शोज, एंड स्पेशली दे हैव परिणय जैन, देयर गेस्ट जो है स्पेशल गेस्ट फ्रॉम इंडिया, जो एक सिंगर है फ्रॉम इंडियन आइडल. यस, तानुश्री डांस ग्रुप भी है, क्रोमानिया डांस ग्रुप भी है, एंड हाई स्टेप परिवार ग्रुप भी है. ऑल दीज दे आर अप टुगेदर फॉर सम अमेजिंग एंटरटेनमेंट शोज एवरी डे. यस, दिन के 11 बजे शुरू हो जाता है उनके शोज 1 बजे तक, और उसके बाद शाम को 6 बजे से शुरू हो जाती है. सो गाइज, अगर आप फिलहाल शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आपको शॉपिंग करना है, आपकी शादी है, तैयारियाँ चल रही हैं, अगर आपके घर का रेनोवेशन चल रहा है, या बिल्डिंग अ न्यू हाउस, या सिंपली आपको कुछ चीज़ें चाहिए घर के लिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वी हैव एग्जिबिटर्स अराउंड द ग्लोब जो आ गए हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस उत्सव. जी हाँ, यानी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए. यू कैन फाइंड सम गुड फर्नीचर, होम फर्निशिंग आइटम्स, मैट्रेस हैं, कर्टेंस हैं, लाइट्स हैं, झूमर हैं, और जो वॉल हैंगिंग्स हैं, आई कैन सी लॉट ऑफ पेंटिंग्स, भगवान जी के बहुत सारे पेंटिंग्स भी हैं, बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं, एंड आई कैन सी ब्यूटिफुल हैंड बैग्स फॉर लेडीज. अगर आपको क्लचेस भी चाहिए, वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस दे आर सेलिंग इट. एंड वाटर प्यूरिफायर है यहाँ पे, यू कैन फाइंड अ स्पेशल टी डिटॉक्स जो है ऑलिव टी, इट्स अ लवली टी फ्रॉम इंडिया जो जयपुर से है. आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट इट इवन माई डियर. सो किचन यूटेंसिल्स, किचन आइटम, टिश्यू पेपर्स, पूजा का सामान भी हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं. वैसे भी अगर आप अपने हेड को लेकर थोड़ा सा परेशान हो, यू हैविंग सम हेयर फॉल, आपके कुछ प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज को लेकर आई हैं इंडिया से विद देयर डॉक्टर्स जो आपको कंसल्ट भी कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग टू यू एंड एनालाइजिंग योर स्किन एंड एवरीथिंग, और आपको बहुत सारे एडवाइस भी दे रहे हैं कि कौन से आप हर्बल एंड नेचुरल

0: प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। पंखे मिलेंगे आपको, कुशन कवर्स मिलेंगे आपको, ब्लैंकेट्स मिलेंगे आपको, कुशंस पीलोज भी मिलेंगे, बेडशीट्स मिलेंगे, इतने सारे आइटम है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। सो प्लीज अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो सो दिस इज द राइट प्लेस टू बी विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड योर किड्स टू एंजॉय All under one roof. जी हाँ, ये है आपका उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल हैपनिंग एट SVICC अटपाई। अब हम खाने की बात पे आ जाते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ पे जाते हैं तो भूख तो लग ही जाती है ना, तो इसीलिए हमेशा मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है जब मैं शुरू करती हूँ खाने की बात। दे हैव फूड कोर्ट एंड दे हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट फॉर 200 से 300 लोगों के लिए। और अगर आप इंडियन खाना को बहुत ही दिल से पसंद करते हो, यू लव ईटिंग दोज यम्मी फूड, जैसे कि कचौरियाँ हैं, शाही थाली हैं, समोसे हैं, पाव भाजी हैं, जो दही भल्ले हैं, एवरी काइंड ऑफ चाट, आपको इंडियन मिठाई अच्छी लगती है, आपको वेज चाउमीन अच्छा लगता है, व्हाटएवर, इतने सारे खाने हैं एक्चुअली। अगर आपको अच्छा लगता है, यू वुड लव टू कम हियर एंड एंजॉय विद योर फैमिली, सो व्हाई नॉट यू कैन कम डू योर शॉपिंग। साथ में बच्चे भी एंजॉय करेंगे किड जोन में, और आप सब फैमिली जो है अच्छे प्राइसेस में बैठ के यहाँ पे अच्छे यम्मी यम्मी खाना खा पाओगे। सो गाइस, आई गेस आई सेड इट ऑल, एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, रेडियो मस्ती का जो टीम है एवरी डे विल बी लाइव फ्रॉम हियर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक हम रहेंगे आप लोगों का साथ देने के लिए, टू जस्ट गिविंग यू, विल बी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हियर, और कौन से आइटम बेच रहे हैं, और बहुत सारे जो एग्जिबिटर्स हैं दे आर कमिंग ऑन अवर स्टॉल एंड बी ऑन एयर आप लोगों के साथ, जस्ट टू लेट यू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट इन डिटेल। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड throughout the whole day and you will know on Radio Masti yahan pe Mauritius jo shopping carnival hai yahan pe kya kya chal raha hai. So thank you so much Divya, back to you to the studio, aur baki hamare listeners ko main to rendezvous dena chahungi kal shaam ko 4 baje, of course in your Raftar vibes. Tab tak ke liye enjoy the good music with Divya in your evening lounge.
1: थैंक यू सो मच गिनीशा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा कुछ डिटेल में बताया, एंड खाने के बारे में तो माय गॉड क्या ही कहीं। तो चलिए, अगर आपको भी इन खूबसूरत गीतों के साथ साथ खूबसूरत आइटम्स का पूरा फ़ायदा उठाना है, एक ही छत के नीचे आपको गाने भी मिल रहे हैं, एंटरटेनमेंट, और साथ में आपको फूड फेस्टिवल के बारे में भी शायद आपने सुना ही होगा, मैजिक शोज होगा, फैशन शो होने वाला है, और साथ में घर के इतने सारे आइटम्स आपको मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ये मौका गंवाना है। सो प्लीज़ प्लीज़, हम भी आपको रेंडेवू दे रहे हैं एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले, कभी ऐसा होता है ना कि आपका काम 5 बजे ख़त्म हो जाता है, 6 बजे, अगर 7 बजे भी आपका काम ख़त्म होता है तो आपको रात्रि के 9 बजे तक टाइम ही टाइम मिलेगा टू बी एट द मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, और वहाँ पर जाइए, पूरा पूरा इसका फायदा उठाइए।
2: इवनिंग लाउंज,
3: इवनिंग लाउंज,
4: RM2,
2: रेडियो मस्ती।

0: कितना सुकून कितना आराम है इन गानों में और इन गानों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आधी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाए तो प्यार का बसेरा तो होगा ही होगा। अभी देखिए चारों तरफ दुनिया में कितनी सारी तकलीफें हैं और इन तकलीफों को भुलाकर हमें थोड़ा बहुत मौका मिलता है इन गानों के साथ जुड़ जाने के लिए और गुड म्यूज़िक के साथ जो भी जुड़ जाता है वो हमेशा मेंटली फिट होता है। और वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबसे बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होता है द माइंड एक्सरसाइज। बॉडी को हम ट्रेन कर लेते हैं जिम जाकर बॉडी बनाना या फिर बॉडी को ट्रेन करना, लेकिन माइंड को ट्रेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। इट्स द टफेस्ट एक्सरसाइज जो कोई कर पाता है, क्योंकि अगर हम आपसे कहेंगे कि 10 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए ही सही आप कुछ भी ना सोचें तो ये इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अपने माइंड को फ्रेम करना और इसको ट्रेन करना थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स को इतना सोचने लग जाते हैं कि इनडायरेक्टली हम अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं तो यू विल अग्री विद मी कि हम जितना अच्छा सोचते हैं उतना ही अच्छा हमारे साथ होता रहता है। सो इसीलिए यू हैव टू रिसीव इट, यू हैव टू अफर्म, यू हैव टू क्लेम जो आपको अभी तक नहीं मिला है। अगर आप हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे तो जिंदगी में आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल, द बेस्ट एटीट्यूड इज़ ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, ये हमेशा याद रखिएगा। और हम तो हमेशा जब आते हैं तो ये बात कहना कभी नहीं भूलते हैं कि दिल से आपको हम शुक्रिया कहते हैं, आप हैं तो हम हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ देते रहते हैं। एंड 9 बजे तक आई एम श्योर कि मैसेजेस आते रहेंगे। सो चलिए, आई नो आप अपने मैसेजेस का इंतज़ार होते करते रहेंगे। एंड चलिए, यहाँ पर किसी ने कहा है कि नो न्यू सॉन्ग्स, बिल्कुल नए गाने तो हैं लेकिन 2 से 4 बजे आप सुन सकते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आपको नए गाने मिलेंगे। अभी के लिए तो हम कुछ नए गीतों से आपको एंटरटेन कर रहे हैं और कुछ कूल म्यूज़िक रोमांटिक ट्रैक्स के साथ भी आपको एंटरटेन कर रहे हैं। सो टोनी जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू ईच एंड एवरी वन जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। एंड अगर आपका भी मन हो रहा है हमें याद करने के लिए तो बिल्कुल आप अपने मैसेजेस को ड्रॉप इन कीजिए ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

शुक्र मना हुआ तकदीर आदा, हमेशा आपको शुक्रगुजार ही होना है। आपकी तकदीर और आपकी ज़िंदगी जैसी है अच्छी ही है, और इसको और भी खूबसूरत बेटर बनाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टे कनेक्टेड विद गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।

0: चलिए दोस्तों, टू ऑल दोस जो इस वक्त हमें सुन रही हैं और हमें सुनते सुनते आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, आई नो आप लोग बेसब्री से अपना इंतजार कर रही हैं अपने नाम का. सो चलिए करिश्मा के लिए अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे. ऑल्सो वी हैव जान एंड फॉर लव मोनू, जो हमेशा उनके मैसेजेस आते रहते हैं. एंड अभी ये वैन ड्राइव करके शायद घर वापस जा रहे होंगे या फिर काम पर हैं. आपको बोंकुहाज. और हमारी प्यारी सी शालिनी जी कल की तरह आज भी आ गई हैं. एंड आप हैकाटोबोन से यू वॉन्ट टू डेडिकेट अ ब्यूटिफुल गाना टू योर हबी यश ड्यापेमाल और आपकी बहन है किरण इतवौया, आपकी बेटी है मोहिशा और आपका कज़िन ब्रदर है केविन रामचरण हु केम फ्रॉम यूके और आज रात वो आपके यहाँ ही ठहर रहा है. एंड आई जस्ट होप कि आपको मौका मिले टू रिवाइव सम ब्यूटिफुल मेमोरीज, बचपन की यादों को ताज़ा करना, इसका मज़ा ही कुछ और होता है. आजकल जिंदगी लाइफ इज़ नो मोर द सेम विथ टेक्नोलॉजी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप उन पलों को याद करेंगे अपने कज़िन ब्रदर के साथ, उन पलों को जिस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करता था, सब लोग एक साथ मिलकर खेला करते. So you having a lovely, lovely time all together. Thank you so much, Shalini ji. And I just hope ki Radio Masti ke saath you having a great time. और साथ में यहाँ पर एक और मैसेज आया है नेहा, ऑल द वे फ्रॉम Puerto Pima connected with us. Thank you so much, Neha, हमारा साथ देने के लिए. कहती हैं, can you please dedicate a special song for my dad? Of course. And एक साल हो गया on 9th August जब से वो आप लोगों को छोड़कर चले गए. But I'm very sure कि आपके dad आपको ऊपर से देख रहे हैं and he's now your guardian angel. To dad Manand in heaven, we miss you a lot. Special thoughts from wife Devika. आपकी बेटियां हैं Neha, Deepa, grandson है Shrey. और आपके दामाद हैं नितिन एंड शैलेश की तरफ से. एंड साथ में नेहा कहती है कि भले ही आप हमारे बीच ना ही नहीं रहे, बट वी नो दैट यू आर इन अ बेटर प्लेस और हमें बहुत ही प्यार से देख रहे हैं ऊपर से, कीपिंग अस सेफ विद योर ग्रेस डेफिनेटली. सो चलिए नेहा, आपके प्यारे पापा मानन के लिए अगला गाना और साथ में, एंड कहते हैं ना कि बाप बेटी का रिश्ता ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे अनोखा होता है और सबसे खूबसूरत भी होता है. तो चलिए आपके पापा के लिए और उन खूबसूरत यादों के लिए ये खूबसूरत सा गाना आपके नाम.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती.
0: सो चलिए नेहा, दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू एंड बेटी दीपा की तरफ से भी एंड फ्रॉम योर होल फैमिली.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: थोड़ी देर में तो सब लोग यही कहते हैं कि बस काश ये पल ऐसे ही ठहर जाए और हम ऐसे ही बैठे रहे, प्यार में डूबे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, ये वी नीड टू गो विद द फ्लो एंड इस फ्लो में बहते चले जाइए। अपने जज्बातों को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी बचे कुछ गाने हैं ना, उनको सुनने के बाद एक बार फिर से आपको थोड़ा और प्यार हो जाएगा। 8:41 already and it's a beautiful gana taken up from the movie Half Girlfriend. Divya ka saath hai your evening lounge till 9 p.m. कभी ऐसा होता है ना कि एक लम्हा ऐसा आता है कि आपको मिलता है अपनों के साथ स्पेंड करने के लिए, और मन ही मन आप यही कहते हैं कि तू थोड़ी देर और ठहर जा।

0: RM2 Radio Musti.
1: हम तो इसी इंतजार में रहते हैं कि आप कब आएंगे और अंगना फूल खिले. एंड थैंक यू सो मच बार बार रेडियो मस्ती की गली में आने के लिए. 8:52 ऑलरेडी. एंड ये गाना हमेशा बहुत सारे लोगों को बटरफ्लाइज देता होगा. टाइम टू टेक यू बैक टू सम डाउन मेमोरी लेन, जहां पर आपको कुछ खूबसूरत ऐसे पल मिलेंगे जिनको आपको एक बार फिर से जीने का मौका मिलेगा. यस, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी अंगारे. छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल गाना. हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल रात्रि के 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच. तब तक दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभ रात्रि.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से. संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के. पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना. कैसा ये इश्क है

डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। नीतु आपके साथ, सुप्यार भरा नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। यस, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव, सो साथ निभाते हुए लेट मी वेलकम यू ऑल इस खूबसूरत सफर, इस रोमांटिक सफर में। हाँ जी, रोमांटिक तो हम सब हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जो रोमांस है वो उभर कर आ ही जाता है। लेकिन जब बॉलीवुड सॉन्ग्स की बात होती है तो इतने सारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जिनका असर कभी ना कभी दिख ही जाता है। सो आज इस खूबसूरत लेट नाइट ग्रूव्स में आपके इन पलों को खूबसूरत रोमांटिक बनाते हुए शुरुआत करते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा से ही दिल की भाषा रहे हैं। जब शब्दों से जज्बात बयां करना मुश्किल हो जाता है, तब गीत और संगीत प्यार की कहानी कह देते हैं। बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। ये गाने कभी पहली नजर के प्यार को याद दिलाते हैं, तो कभी बिछड़ने के दर्द को भी मधुर बना देते हैं।

जमाने के रोमांटिक सॉन्ग्स की बात तो कुछ और ही थी, है ना? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी या फिर किशोर कुमार जैसे महान गायकों की आवाजों में प्यार एक इबादत बन जाता था।

सारे गाने, ओ माय गॉड, लिस्ट तो इतनी लंबी है, आज भी दिल को उतनी ही गहराई से छू जाते हैं। इन गीतों में सादगी तो थी, शर्मीली मुस्कान तो थी, और एक ठहराव भी था जो आज के तेज दौर में भी सुकून दे जाते हैं।

चल पड़ी है रोमांटिक सॉन्ग्स की, तो 1950s से 1960s का दौर नजाकत और शायरी का दौर था। इस दौर में प्यार, इज्जत, शर्म और तहजीब के साथ पेश होता था। गीतों में कम शब्द, गहरे जज्बात और लाजवाब शायरी होती थी। एंड सिंगर्स लाइक मुकेश और साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मदन मोहन, इन सब गीतकारों और संगीतकारों ने प्यार को इबादत बना दिए।

70s की बात करें देन रोमांस में ठहराव और गहराई थी। इस दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा मचो और इमोशनल हो गए। प्यार के साथ जुदाई, इंतजार और दर्द भी शामिल हुए। आर डी बर्मन के संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने रोमांस को नया रंग दिया। रूप तेरा मस्ताना या फिर तेरे बिना जिंदगी जैसे गाने प्यार के गहरे पहलू दिखाते हैं। तो उधर मेलोडी का संकट पर जज्बात का जिंदा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s। ये दौर थोड़ा अनिवन रहा पर फिर भी कुछ यादगार रोमांटिक गाने आए। म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट हुआ, सिंथ का इस्तेमाल बढ़ा, रोमांस थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक हो गया पर भावना बनी रही। हमें तुमसे प्यार कितना ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे गाने इस दौर की पहचान बने।

समय के साथ रोमांटिक सॉन्ग्स का अंदाज बदला, पर उनकी रूह वही रही। कुमार सानू और कयाग्निक उदित नारायण, इनके युग में प्यार थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, पहला नशा, बाहों के दरमिया जैसे गाने मोहब्बत की नशीली दुनिया में ले जाते हैं। ये गाने सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि हर प्रेमी जोड़ी की यादों का हिस्सा बन गए। 90s रोमांस का गोल्डन कमबैक। 90s में रोमांटिक सॉन्ग्स ने फिर से दिल जीत लिया। मेलोडी, लिरिक्स और आवाज का परफेक्ट संगम हुआ। नदीम शवन हो, अनु मलिक या फिर जतिन ललित, इनका मैजिक चला ही चला और प्यार मासूम, सपनों जैसा और दिल से जुड़ा हुआ।

आज के दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स में मॉडर्न टच है, पर भावना वो ही है। वी हैव अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह ने तो अनाउंस कर ही दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। श्रेया घोषाल, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे कलाकारों ने प्यार को नई आवाज दी। तुम ही हो राबता अगर तुम साथ हो, तुमसे ही जैसे गाने दर्द, इंतजार और मोहब्बत को एक साथ पिरो देते हैं। इन गीतों में जज्बात की गहराई है जो सीधे दिल तक पहुँचती है।

में बॉलीवुड म्यूजिक इंटरनेशनल साउंड से प्रभावित हुआ। वी हैव ए रहमान, उन्होंने रोमांस को सुकून और रूहानियत दी। तुम से ही, तेरे बिना, कल हो न हो जैसे गाने अब उन प्यार की कहानी सुनाते हैं, थोड़ा रियल थोड़ा पोएटिक। देन वी हैव 2010 से अब तक इमोशन ड्रिवन और सोलफुल लव। आज के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव हो गए हैं। कुछ मैशअप्स, कुछ रेमिक्सेस, कुछ अलग तरीके से ही गाने बनाए जा रहे हैं। प्यार के साथ साथ वल्नरेबिलिटी, हार्ट ब्रेक और लॉन्गिंग ज्यादा दिखती है। आज के जो गायक हैं, उन्होंने रोमांस को दिल की गहराइयों से जोड़ दिया। रिलेशनशिप के सच्चे, कभी कभी टूटने वाले पहलू भी दिखते

वन ऑफ बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स की खूबसूरती तो यही है कि हर पीढ़ी को जोड़ देते हैं। ये गाने वक्त, उम्र और दूरियों की सीमा को पार कर जाते हैं। जब कोई पुराना रोमांटिक गाना बजता है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ जाते हैं।

कभी किसी के साथ खामोशी में बैठकर कभी सुकून मिले शायद इस वक्त, लेकिन खामोशी में भी कुछ न कुछ सुनाई देती है। क्या है वो? शायद आपके दिल की धड़कने, शायद किसी के अनकहे अल्फाज। तो समझ लीजिएगा कि वो ही आपका हमसफर है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

जिंदगी है एक सफर सुहाना, लेकिन जब साथ हो कोई अपना तो ये सफर भी सिर्फ सुहाना नहीं यादगार बन जाता है। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ रात्रि के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए। एंड बोंकोगाज टू ऑल दोज एट वर्क।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: में से कहते हैं कि मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता, ये तो बस एक एहसास है जो कभी भी कहीं भी किसी के लिए हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, कभी कभी ये तुक्का मार जाता है लव एट फर्स्ट साइट और जिंदगी भर का प्यार बन जाता है, लेकिन कभी कभी प्यार धोखा भी दे जाता है, तकलीफ भी दे जाता है और दिल भी टूट जाता है। तो आप अपने प्यार को संजो कर रखें, आपके पास है उनको समेट कर सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार करते रहें।
1: ओ गुड़िया गुड़ किन खा लिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जी दा नाना किन खिचया।

रोमांटिक सॉन्ग्स हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी होता है। ये गाने खामोशी को अल्फाज देते हैं और दिल के कोने में छुपे जज्बातों को आवाज बन जाते हैं। शायद इसीलिए चाहे जमाना बदल जाए पर बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा अमर रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की तरह। दैट्स व्हाई रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स का इवोल्यूशन एक सफर जैसा है। शर्म से शुरुआत, जज्बात से गुजर और सच्चाई पर आकार रुकता हुआ। सुर बदले, अंदाज बदला, पर प्यार की रूह हमेशा जिंदा रही। टेक केयर, बाय बाय, प्रणाम।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। RM2 रेडियो मस्ती।